0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: नेहा यादव जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में कोई कष्ट आता है या हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं और वो पूर्ण नहीं होता तो स्वयं की भक्ति पर संदेह होने लगता है कि
2: अच्छा पता नहीं हमारा। एक हमें ये बात बताओ, भक्ति पर संदेह की बात नहीं, इसमें समझना है कि हम प्रभु से जो मांगते हैं वो क्या मांगते हैं, हमें बताओ।
3: कष्ट आते हैं महाराज।
2: नहीं, हम केवल इतनी बात करें, हम प्रभु से क्या मांग सकते हैं? नाशवान, परिवर्तनशील, दुख में संसार का कोई एक बात, कोई एक समस्या। हमारी पुकार प्रभु तक कब पहुंचती है ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर फोन नंबर ना मिले तो आप लाख बात करते रहो और फिर उसको अश्रद्धा करो या तो तुम्हारा नंबर नहीं मिला ना। नंबर मिला ध्रुव जी का, अटल पदवी पे बैठे हैं। नंबर मिला प्रहलाद जी का, आज उनका यश गाया जाता है। हमारा चित्त आर्त भाव से जब प्रभु से जुड़ता है, आपने प्रभु को क्या माना है अपना? कुछ नहीं माना। आप अपने प्यारे से क्या मांग सकते हैं? मान लो आपका पति हो, आपका पुत्र हो, आपका कोई भी मित्र हो, आपका जो भी प्यारा हो, अगर आपको प्यार है तो आप क्या मांग सकते हो? यही मांग सकते हो कि सदैव आप हमारे आंखों के सामने रहे और सुखी रहे। अगर आपको थोड़ा भी प्यार है, पुत्र से, पति से, प्रीतम से, मित्र से, किसी से भी अगर थोड़ा भी प्यार है, जैसे हमसे कभी किसी ने, अपने जनों ने पूछा कि हम आपको गिफ्ट में क्या दें, जो जैसे जन्मदिन वैराग्य का होता है ना, तो उसमें क्या दें, तो हमका आप सदैव प्रसन्न रहो और भगवत चिंतन परायण रहो, ये दे दो। सदैव प्रसन्न रहो और भगवत चिंतन परायण रहो, क्या दिया? आपका परम सुख, आप भगवत चिंतन परायण रहो और आप प्रसन्न रहो, ये गिफ्ट हमें दे दो। इसे कहते हैं प्यार। क्या भगवान से आपने मांगा कि आप प्रसन्न रहो और आपके स्मरण में मैं मस्त रहूं, ये मुझे दो, क्या मांगा? तो इसका मतलब प्यार तो नहीं ना। प्यार देह से है और प्यार जगत के भोगों से है। अब जगत के भोग जो है ये प्रारब्ध के अनुसार आते हैं। शुभ कर्म जितना जोर का होगा उतना ही आएगा। सबको भगवान ने ध्रुव पदवी तो नहीं दे दी? ध्रुव जी ने जब 6 महीने ऐसा तप किया कि ब्रह्मांड की वायु को रोक दिया, अपनी वायु रोक करके, तो भगवान को विवश होकर आना पड़ा। ऐसा आपने कौन सा साधन किया? भगवान के लिए आपने कौन सा तप किया जो भक्ति में संदेह होने लगता है? आपकी भक्ति का क्या स्वरूप है? कितने दिन आप अन्न जल त्यागे रहे? कितने दिन आप भगवान के लिए रोए? कितने दिन आप निरंतर भगवान का जप करते हुए भगवान के सामने बैठे रहे? क्यों भगवान दे दे? केवल मांगने मात्र से दे दे? आप विचार करके हमें बताइए। फिर तो क्या तुम ही प्यारे हो? ये सब नहीं प्यारे हैं, सबकी मांग पूरी ना कर दे। लेकिन मांग उसी की पूरी होती है जो उसके अनुसार साधना करता है। अनुष्ठान करो, और अगर अनुष्ठान नहीं करना तो मांग नहीं करना, फिर घर वाले बन जाओ। घर वाले बन जाओगे तो योगक्षेमं वाहम्यहम्। उनकी केवल एक मांग है, अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्यस चिंतयन्तो माम। तो कह रहे योगक्षेमं वाहम्यहम्, तो ठेकेदार वो हो गए तो फिर मांगने की जरूरत क्या? आगे से आगे व्यवस्था होगी। अब हमारी बात को समझ पाओ तो समझ पाओ, घर वाले बन जाओ। और अगर घर वाले नहीं बने, निज परिकर नहीं बने, तो फिर उतना हिसाब दो। घर की दुकान में 100 ग्राम चीनी नहीं मांगी जाती है, पाने जा रहे जरा चीनी देना, वहां ग्राम नहीं, वहां मूल्य नहीं, चीनी देना। चीनी लिया अपना घर से, क्यों?
1: घर वाले बनने के लिए महाराज जी क्या करना?
2: हाँ, घर वाले तन वांग मनोभी रमले सोहम तो वास्ता, शरीर से, मन से, वाणी से मैं आपका बिका हुआ दास हूं। अब बिका हुआ दास तो घर का हुआ घर जाया दास, तो फिर वो योगक्षेमं वाहम्यहम्, फिर भगवान सामने देखते हैं। एक भी चीज मांगनी नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मालिक हो मुनिम है, मालिक आप हो मुनिम हम है, तो मुनिम ने पर्चा बनाया, मालिक ने फौरन भर दिया। और अगर आप दुकानदार की तरह कि प्रभु मुझे ये दे दीजिए, तो आप दीजिए क्या है आपके पास बदले में? तप दीजिए, भजन दीजिए, आपके पास क्या है? बोले हमारे पास तो कुछ नहीं। तो बोले फिर पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारा बच्चा है, तुम ही थोड़ी हो। दो बात में समझो, अगर ऐसे भगवान से मांगोगे तो दुकान में मांग रहे हो, मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता, हिसाब भरिए, जो चाहिए वो चीज ले ली, समझ रहे ना? आप भगवान से क्या संबंध रख करके मांग रहे हैं? हम आपसे जैसे प्रश्न कर रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं, क्या बन करके मांगने के समय क्या बने और पूरे जीवन में आप क्या हैं, तो चतुर शिरोमणि से चतुराई नहीं चलेगी है। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तो मांग किसके लिए रहे हो? आरती में लिखे थे वो एक मिनट के लिए गा दिया और देखो प्रभु हमारी इस समस्या का समाधान हमारी ऐसा, वो कह रहे क्या लागे मेरा। अगर भक्ति का स्वरूप है कुछ भी मानना, आप अपने लड़के को सुंदर से सुंदर पदार्थ पवा रहे हो और कोई पूछे कि इसका फल क्या चाहोगे तो आप दबका दोगे, मेरा बेटा है मेरे सामने चैन से खा रहा है, यही मेरा फल है और क्या फल फूल है। और भगवान, भगवान को ऐसे भोग लगाते हो, भगवान को क्या देखते हो आप? अरे बोले वो बहुत बड़े हैं, उनको क्या खवाना पियाना, तो तुम किसके हो? बहुत बड़े के हो तो तुमको क्या चाहिए? इतने बड़े के हो तुम अभी उनसे अभी समझ नहीं पाए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बहुत चतुराई हरि से करोगे तो भले की ले।
1: मार जी ये तो आप जैसे समझन अभी समझा रहे हैं, हमें सुलझा रहे हैं, बट अन्य ऐसे होता है कि मतलब सकामता से ही आपके
2: अनुष्ठान करना पड़ेगा, केवल तुम्हारे मांगने से नहीं मिल जाएगा। दुकान में जाके मांगोगे मिल जाएगा क्या? मेरे मालिक का पूरा विश्व ब्रह्मांड है, चराचर जगत भगवान का जन है, उसके लिए तुम्हें कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा कि मैं भगवान, आज तक कहीं भी पूरे शास्त्र में पढ़ के देख लेना, जिसने भगवान से मांग रखी है उसको उतना तप करना पड़ा। बढ़िया दुल्हन चाहिए तो 10,000 वर्ष तक तपस्या करी तो महाराज मन की पुत्री देवहूति जी करदम जी को मिली कि नहीं मिली? बढ़िया आप जैसा पुत्र चाहिए तो देख लो तपस्या की महाराज नाभि ने, तो अग्निद्र पुत्र नाभि, नाभि पुत्र भगवान ऋषभ देव जी, मनु शत्रुपा जी ने तपस्या की तो सियाराम जी।
1: मर जी अभी तो ऐसा होता है कि हे बिहारी जी आप एक मनोकामना पूरी कर रहे हो, 56 भोग लगाएंगे।
2: तो बिहारी जी को समझे क्या यार, विश्वात्मा पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला भोग बिहारी जी का जानते हो कैसे लगाया जाता है? जैसे हम कई बार समझाया है कि एक पिता अपने 4 पुत्रों को एक एक सेव ला के दिया, अब उनमें से 3 तो खाने लगे और एक दौड़ के आया पिता के मुख में ऐसे, उसी के द्वारा दिया हो, अब उस पिता को कैसा लगेगा? वो उसके हाथ से सेव लेकर के अपने हाथ से पवाएगा और गोद में दुलार करेगा, सबसे ज्यादा प्यारा पुत्र वो होगा, ऐसे भोग ले। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, हम अपनी वस्तु मानकर प्रभु को कैसे दे, हमारी तो बेईमानी पहले ही हो गई, प्रभु की दी हुई वस्तु, दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। भक्ति की बात जो है वो अभी समझ में नहीं आया, जैसे लोग कहते हैं श्रद्धा हमारी खत्म हो गई, मैं केवल मांग भर की श्रद्धा, केवल मांग भर की, तू समझा क्या बिहारी जी को? माँ से हम अपनी कोई बात मांगते हैं और माँ अगर ना दे तो क्या माँ से श्रद्धा खत्म हो जाएगी? अगर दूसरा कहेगा कि यार तूने मांगा दिया नहीं तो लड़ जाएगा, यार देखो ये मेरी पर्सनल विषय है, यार मूड नहीं था नहीं दिया, पर माँ तो मेरी माँ ही है ना, तो क्या ऐसा तुम प्रभु को मानते हो? अगर ऐसा मानते हो तो ये शब्द कैसे आ जाएगा कि मेरी भक्ति कम हो गई? तो हम किसी भी तरह ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप प्रभु से मांगने के अधिकार को पुष्ट कर सकते हैं, किस तरह पुष्ट कर सकते हैं? आपको भगवान ने मानो दे दी, आपको भगवान ने सारी सुविधाएं दी, आपने भगवान के लिए क्या किया? हमारी बात, सुंदर आंख दी अंधे बना देते, सुंदर कान दी बहरे बना देते, वो बना देते कर्मानुसार बना भी देते, हमें सब कुछ सर्वांग पुष्ट किया, भगवान ने हमें सब कुछ दिया नहीं दिया है, हमने भगवान के लिए क्या किया हमें बताओ? इतने का हमने क्या भगवान के लिए किया? आप यहां बिजली का बिल देते हैं सरकारी, मकान का किराया देते हैं, इसका किराया किसको देते हैं? जो हमारे भगवान ने गर्भ में सृजन करके तुम्हारा इतना सुंदर रूप दिया, क्या इस मानव देह का किराया नहीं है? आप विचार करो, हर श्वास नाम जप करो, यहां ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी की पत्नी, एक माया का नाटक है, अपने को सेवा का कर्तव्य रोल जो मिला है स्वांग वो करते हुए नाम जप करते हुए निकल जाओ। मांग ऐसे रखी जाती है, हमने अभी एक दो दिन पहले एकांतिक में बात कही थी, मांग ऐसी रखी जाती है कि स्वामी आप घर के मालिक है और मैं आपका नौकर हूं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी। प्रभु इस घर गृहस्थी में बहुत सी आवश्यकताएं होती है, आप सर्वज्ञ हो, आपसे हम क्या कहें, फल रहा नहीं जाता, इसलिए आपसे कहते हैं कि अगर ये व्यवस्थाएं ऐसे चलती तो नाथ आपके भजन चिंतन में भी हमारा मन लगता और सुखपूर्वक जीवन कट जाता। पर प्रभु यदि आप ये समझे कि जो हम मांग रहे हैं वो देंगे और हम माया में फंस जाएंगे, तो नाथ मत देना। जिससे आपका सुमिरन हो और जिससे मंगल हो वही आप करना, तो कभी भक्ति कमी नहीं होगी। और हमें लगता है भक्त के भी कभी कमी नहीं होगी, ना भक्ति की कमी होगी और ना भक्त के कमी होगी, ये पक्का विश्वास कर लो। हम लोग भगवान को कुछ अपना नहीं मान रहे, फिर मांग रखते हैं तो भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, बिना मांगे उन्होंने बहुत कुछ दे दिया है, उसी का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। आप विचार करो, एक पिता 100 रुपया अपने पुत्र को दे, अगर वो सही ठीक प्रयोग कर ले तो बिना मांगे 1,000 वो देने की हिम्मत कर लेगा, अगर 1,000 का प्रयोग कर ले तो 1,00,000 दे देगा। हम लोगों को भगवान ने बिना मांगे इतना दिया कि हमने उसका दुरुपयोग किया, अब हम क्या मांग कर प्रभु से। तो हमें तो लगता है कि हमें प्रभु के सामने रोना चाहिए कि हमारी थोड़ी बुद्धि शुद्ध कर दो, हमें थोड़ा भजन दे दो, थोड़ा अपना प्रेम दे दो, थोड़ा नाम जप दे दो। संसार की वस्तुएं क्यों मांगे, वो तो कर्मानुसार मिल ही जाएंगी, अगर मांगना ही तो फिर आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, फिर वैसे जप करो, नाम जप करो। कितनी सकामता पूर्ण करने के अनुष्ठान है, बड़े बड़े व्रत हैं, अनुष्ठान, उनका पालन करो और फिर भगवान को वो दे कि ये हम फल चाहते हैं, ये साधना देते वो मिल जाएगा, करना पड़ेगा, नहीं तो होना पड़ेगा। 2 में 1 है, हो सकते नहीं और कर सकते नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। तीसरी बात है, या तो करना पड़ेगा या होना पड़ेगा और नहीं फिर रोना पड़ेगा। ऐसे भक्ति भी चली जाएगी और हमारा भाव भी चला जाएगा, नहीं चला जाएगा क्यों, आप बताइए, हमारी बात समझ में आ रही नहीं आ रही जी। प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारा जन्म हुआ है प्रभु की प्राप्ति के लिए, लेकिन कहीं भगवत प्राप्ति की बात नहीं कोई पूछता, हमारा काम कैसे बन जाए। क्या एक काम बनने से आपके काम बन जाएगा, हजारों काम आपके हैं, हजारों कामनाएं आपकी हैं, हजारों बातें आपकी हैं, एक वासना की पूर्ति से काम चल जाए तो हम कोशिश कर सकते हैं। एक आदमी एक जिंदगी के लिए एक बात मांग ले, इसके बाद कभी कुछ कोई चाह नहीं रहेगी, एक बात मांग लो दोबारा कुछ मांगना हो रहा जाए जीवन में, तो वो केवल भगवान है जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी ले रहता, और वो कोई मांग नहीं रहा, वो कोई नहीं मांग रहा। कैसे समस्या का समाधान हो, और ये पता नहीं कि ये समस्याएं कैसे आई, मूल इनका कारण क्या है, भगवान की विमुक्ता। हर समस्या, हर दुख, हर दुविधा, हर विपत्ति का कारण क्या है, भगवान को भूल जाना। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरल भजन लोई। अब सुमिरल भजन तो कोई मांग नहीं रहा है भगवान से कि नाथ मुझे अपना सुमिरन, यही बड़ी दुर्दशा जीव की है, बड़ी विचित्र दशा है। अच्छा मान लो भगवान और भक्ति में अश्रद्धा हो गई, तो जो कुछ हमसे बन पा रहा था वो भी गया ना, भगवान का क्या बिगड़ जाएगा, बिगड़ तो मेरा जाएगा ना। भजन छूट गया, भक्ति छूट गई, श्रद्धा चली गई, तो हमारा मन और वैसे ही कुमार्गगामी, जब भजन में बैठते हैं तब कुमार्गगामी होता है और जब भजन नहीं करेंगे तब तो कुमार्ग में ले ही जाएगा। इसलिए भाई जैसी भी परिस्थिति दुख सुख की हो भोग लो, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमें दुख सुख सहने की सामर्थ्य दो और भजन करने की बुद्धि दो कि हम खूब भजन करें। और जब भजन है ना तो रुपया पैसा सम्मान सब तुम्हें घेरे फिरेगा, मान लीजिए। और भजन नहीं है तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, भजन नहीं तो कोई नहीं पूछेगा ना इस लोक में ना लोक लोकांतर में, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमें लगता है भजन मांगो, भजन खूब, नाम जप करो खूब, भगवत चिंतन करो। देखो अभी माया मारी घूमेगी, मारी घूमेगी, ये बिल्कुल विश्वास कर लो, हमारी बात को मान लीजिए, जितना भजन करोगे उतना ही वैभव तुम्हारे चरण चूमेगा, पर पहले भजन तुम्हारे पाप नष्ट कर दे, तब पहले पाप नष्ट होने दो भजन के बल से, फिर देखो क्या नहीं प्राप्त होता है। अरे तो भगवान अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रच दिया है, किसी कारीगर की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर भगवान जब हमारे स्वामी है, हम उनका नाम जप कर रहे हैं तो कमी क्या रहेगी। धैर्य पूर्वक श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे, कई कई दिन भोजन नहीं मिला सुदामा जी को, और एक दिन जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी, समझ रहे हो। थोड़ा जप करो, थोड़ी निष्ठावान रहो, थोड़ा कष्ट सहो, परिणाम बहुत बढ़िया आ जाएगा। भक्ति को मत बिगाड़ना, नाम जप मत छोड़ना, कामनाएं पूर्ण हो चाहे ना हो, काम बने चाहे बिगड़ जाए, इसकी बात समझ ले।
1: महाराज जी जैसे आचार्य जन कहते हैं हरिवंश महाप्रभु की, जोई जोई प्यारो करे सोई मई भावे, स्वामी हरिदास जी जोई जोई तुम राखत हो तो तो रहियो तोहरी, आप जैसे महापुरुष जन भी कहते हैं कि उनसे कुछ मांगो नहीं, उनकी राजी में राजी रहो, इसका भावार्थ महाराज क्या, हम कुछ मांगे ना उनसे
2: नहीं। देखो जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसको अकल ही नहीं मांगने की, तो चिंता माँ करती है कि नहीं करती, कब उसको दूध पिलाना है, कब उसको नहलाना है, कब उसको क्या पवाना है, कब उसको शयन कराना है। ऐसे बन जाओ अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे छोटा सा चिड़िया का बच्चा घोंसले में है, अभी पंख नहीं निकला, वो केवल उस माँ के सहारे रहता है, ऐसे हम केवल भगवान का सहारा, वो हर व्यवस्था हमारे आनंद के लिए करेंगे, भोग के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवद आनंद के लिए करें। भगवान का हर विधान बड़ा मंगलमय होता है, बड़ा मंगलमय होता है। अब ये कि भगवान से चित्त जोड़ो, देखो प्यार की बात है। एक दिन एक पति जो सरकारी ऑफिसर था वो घर पहुंचा तो उसने कहा, जी आप आज 40 मिनट लेट क्यों हो? रोज तुम ऑफिसर की तरह हमको डांटती हो 40। अरे हमारा डिपार्टमेंट है, कभी किसी से बात की कभी। अब उसने पिस्तौल निकाली, गोली भरी और पत्नी की कनपट्टी में रखी। उसने कहा, जी हटाए ये दूसरों को धमकाना। बोले क्यों, गोली असली है पिस्तौल? बोले मुझे पता है कि आप हमारे प्रीतम है, मार नहीं सकते, मुझे पता है ये सब तुम्हारी बाहरी धमकी, समझ रहे ना। प्रहलाद जी डरे क्या नरसिंह भगवान से, जाके गोद। ऐसे ही भक्त के सामने जब भयावह दृश्य भगवान प्रकट करते तो कहता है दूसरों को डरवाला, हमें तो पता है प्यारे आपका हर विधान मंगल होता है, आप मंगल भवन है या मंगल कर ही नहीं सकते। जैसे सूर्य भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधेरा करके दिखाओ, तो जब तक सूर्य रहेंगे अंधेरा दिखा ही नहीं सकते। तो अगर विनोद की भाषा में हम कहें कि भगवान की ताकत नहीं किसी का मंगल कर दे, जिनको मारा उनको वो गति जी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने साधना के द्वारा प्राप्त करने की चाह की। पूतना स्तन में जहर लगा के भगवान को मारने जा रही, कौन सी पदवी दे रहे जो यशोदा मैया को धाय को मिलनी चाहिए। भगवान अमंगल कर ही नहीं सकते, ये किसी का मंगल फिर वो कैसे कर सकते। या तो ये करो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, घर वाले बनो, और या फिर साधना करो और फिर मांग करो, अगर पूरी ना हो जाए तो हमें बताना, बीच में बात नहीं। बीच में किसी की पूरी हो जाती है तो तुम्हारे कर्म का पूर्व जो पुण्य है उसके अनुसार हो गई। भगवान तभी पूर्ण करेंगे, दो बातें मान लो, या तो तुम भगवान के हो जाओ तो पूर्ण है, तुम्हें पूर्ण कर देंगे, और या फिर भगवान के लिए साधन करो कि प्रभु हमने ये साधन किया और इसका फल मुझे, क्योंकि सरकारी कानून है सब भगवान के हैं, अब वो तुम्हें ज्यादा भी देंगे तो भी है कि देखो इसने साधन किया है। अगर ध्रुव जी को अटल पदवी दी है तो साधना की, नहीं तो कितने प्रश्न खड़े हो जाते, पर भाई आप करो साधना, 6 महीने में इतनी बड़ी साधना करो तो अटल पदवी आपको भी मिल जाएगी। तो भगवान वही विधान करते हैं जो कानून है, जो शास्त्र सम्मत है, ऐसे मनमानी कभी नहीं है। कि हाँ हम ऐसा भी मान सकते कि एक तुलसी दल चढ़ाने में वो पूरे कानून को बदल सकते हैं कि भाई इसने एक तुलसी, एक सीत लिया बटुलोई से जो धोके बटुलोई द्रौपदी ने रख दिया और पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया, दुर्वासा आदि फूल करके भाग गए वहां से। वो थोड़े में भी वाहन कर सकते, पर करना पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, साधना अनुष्ठान करना पड़ेगा।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल सिरी में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमलश्री कमलश्री कमलश्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमलश्री कमलश्री कमलश्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
13: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
14: श्रोतागण, ई प्रातःकालीन बेला में स्वागत बा रउआ सबके प्रोग्राम आपन दे आपन देखभाल में। तो दोस्त लोग रउआ त जानत ही बानी कि ई प्रोग्राम लेके आवेली राव रेडियो दोस्त दीपाली। तो सबसे पहले रउआ सबके सुप्रभात प्रणाम। लोग हर बार की तरह ई बार भी हमरा पास पर रोज स्वास्थ्य की संवारे खातिर बहुत सारा हेल्थ टिप्स। तो चलिए शुभ आरंभ कर जाओ आज के कार्यक्रम के। दोस्त लोग, आज जानल जाए सबसे पहले चना के शक्तिशाली गुण के बारे में। नाश्ता खातिर एक मुट्ठी काला देशी चना पानी में डाल के रख दी। सुबह एक एक कच्चा या उबाल के या तवा पर थोड़ा भून के मसाला मिला के खूब चबा चबा के खाएं। चना के साथ किशमिश खा सकता नहीं और ये कोनो मौसमी फल भी खा सकता नहीं। केला के पानी से धो के छिलका सहित गोलकार टुकड़ा में काट ली और इस छिलका सहित चबा चबा के खाएं। नाश्ता में अन्य कौनो चीज ना ली। भोजन में भी रवा चना के इस्तेमाल कर सकता नहीं, जैसे रोटी के आटा में चोकर मिलल होखल होके और इस सब्जी या दाल में चना के चुनी यानी चना के छिलका मिलल होखल होके तो ये आहार बहुत ही सुपाच्य और ये पौष्टिक हो जाला। चोकर और ये चना में सब प्रकार के पोषक तत्व होला, चना गैस ना करेला, शरीर में विषाक्त वायु होके तो अपान वायु के रूप में बाहर निकाल देला। ऐसे पेट साफ और हल्का रही, पाचन शक्ति प्रबल बनल रही, खाल पियल अंग लागी, जैसे शरीर चुस्त दुरुस्त और शक्तिशाली बनल रही। कमजोरी, गैस, मधुमेह, हृदय रोग, बवासीर, भकंदर आदि रोग ना हुई। चना के आटा के उपटन शरीर पर लगा के स्नान करे से खुजली रोग नष्ट होला और ये त्वचा उजला होला। पूरा परिवार चना के नियम पूर्वक सेवन करे तो घोड़ा की तरह शक्तिशाली, फुर्तीला, सुंदर और परिश्रमी बनल रह सकेला। जैसे में गेहूं, चना और जौ तीनों समान वजन में जैसे तीनों दो दो किलो लेके मिला ली और मोटा पिसवा के चाले बिना यानी चोकर सहित आटा की रोटी खाइल शुरू कर दी। एके बेजड़ या मिक्सी रोटी कहल जाला। चना के गरीब के भोजन भी कहल जाला, लेकिन एके ताकत के हमनी के अनदेखा कर देनी सर। सस्ता भी है और सरल सुलभ भी। ऐसे हमनी के पथ्य यानी सेवन करे योग्य आहार के रूप में चना के सेवन करके स्वास्थ्य लाभ अवश्य प्राप्त करे के चाहिए। दोस्त लोग ई तरह है चना के घरेलू नुस्खा। चलिए अब जान लिया जाओ रंगीन आहार सेहत के आधार एकरा बारे में। वैज्ञानिक लोग ई पौले बा कि अलग अलग रंग के खाद्य पदार्थ रोवा शरीर के अलग अलग हिस्सा के फायदा पहुंचावेला। तो चलिए जानल जाओ कि कौन सा रंग शरीर के कौन अंग के मित्र है। सफेद यानी आलू लहसुन सफेद मशरूम आदि रउआ फेफड़ा खातिर फायदेमंद होला। नारंगी रंग लीहा के सलामती खातिर नारंगी रंग के चीज खाइल फायदेमंद होला। विटामिन सी तो होला ही कुछ मात्रा में विटामिन ए भी होला जौन प्लीहा खातिर अच्छा होला। हरा फल सब्जी में लूटीन व इंडोल नामक फाइटोकेमिकल्स होला जौन लीवर की रक्षा करेला अतः हरा रंग की चीज खूब खाई। जामुनी यदि रउआ अपना मस्तिष्क के सलामती चाहतनी तो जामुनी फल सब्जी के अपना आहार में शामिल करें। इमें हा अंगूर प्याज जामुनी रंग के पत्ता गोभी बैगन आदि शामिल करें। दोस्तों यूं काला रंग लोग के कम ही पसंद होला खास तौर पर खाए पिए के मसाला में, लेकिन यकीन मानी काला रंग की आहार रउआ गुर्दा खातिर बहुत लाभकारी हुई। अतः मुनाका काली चौला फली काला जैतून आदि खाई करी। लाल यदि रउआ दिल के रक्षा करे के चाहतनी तो लाल रंग के चीज खाई। लाल रंग के फल सब्जी में फाइटोकेमिकल्स पावल जाला तरबूज अमरूद टमाटर आदि ई श्रेणी में आवेला। एस्ट्रॉबेरी रसबेरी और बीटरूट में एंथोसाइनिन पावल जाला। ई फाइटोकेमिकल्स के ही एगो समूह है जौन उच्च रक्तचाप के नियंत्रित करेला और ये डायबिटीज से जुड़ल समस्या से बचाव करेला। तो दोस्तों अब हम बताएं दूध से निखरत कोमल सौंदर्य के घरेलू नुस्खा। दूध के गुलाब जल में मिला के लगावे से त्वचा के रंगत निखरेला। दूध में थोड़ा सा नमक मिला के चेहरा पर सुबह शाम लगावे से मुहासा दूर होला। बादाम बेसन गाजर के रस दूध में मिला के उबटन की तरह लगावे से त्वचा में कमनीयता आवेला। दूध के पूरा शरीर पर लगा के रगड़े से त्वचा में चमक आवेला। नाखून की सुंदर बनावे खातिर कुछ देर दूध में भिंगा के रखी। बर्तन साफ करे से हाथ खुरदुरा हो जाला। ते ए पर दूध में नींबू के रस मिला के लगावे से राउर हाथ सुंदर हुई। होठ के कलापन दूर करे खातिर दूध के होठ पर प्रतिदिन लगाई। आधा चम्मच काला तिल और आधा चम्मच सरसों के बारीक पीस के दूध में मिला के मुहासा पर निरंतर लगावे से फायदा होला। चिरौजी के दूध के साथ पीस के लगावे से त्वचा चमकदार बनेला। लोग अब जानल जाई जब पेट में दर्द होके तक का करे के चाहिए। पेट के ऊपरी भाग में दर्द की स्थिति में 3 बूंद पिपरमेंट ऑयल, 2 बूंद क्लोव ऑयल, 1 बूंद यूकेलिप्टस ऑयल के मिश्रण में 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल मिला के मालिश करे से लाभ होला। दर्द यदि पेट के निचला हिस्सा में होके तो 2 बूंद जिरेनियम ऑयल, 2 बूंद रोजमेरी ऑयल, 1 बूंद जिंजर ऑयल में 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल के दर्द वाला भाग पर हल्का हाथ से मालिश किया जा सकेला तो इसे दर्द में राहत मिली। तो दोस्त लोग ई रहला आज के घरेलू नुस्खा जी में हमने के जननी हसन चना के घरेलू नुस्खा और रंगीन आहार के बारे में ओकरा साथे साथे दूध से निकलल कोमल सौंदर्य के बारे में। तो अब वो वक्त आ गई बा जी में दीपाली ली है रवा से जाए के इजाजत। तो रखी रवा आपन सेहत के ख्याल, रही खुशहाल, नमस्कार।
15: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
16: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
17: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
18: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
19: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
17: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
16: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
17: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
19: कॉल करें 87-894-18744।
20: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
21: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
17: बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
19: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
17: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
19: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
17: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
19: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
17: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
19: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
17: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
19: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
22: आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन।
23: नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। कल के एपिसोड में आपने हमारे साथ सुना शिव रक्षक है, शिव हर हाल में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब आगे
24: कितना पेट्रोल डालना है?
25: फुल टैंक अंकल। कैश नहीं है, कार्ड लेते हैं ना?
24: हाँ लेते हैं, एक मिनट। संजय, संजय बेटा, स्वाइप मशीन लेके आना।
26: पापा मैं काम कर रहा हूँ, आप खुद क्यों नहीं ले लेते?
24: एक मिनट बेटा, स्वाइप मशीन हमारी शॉप में है, मैं अभी लेके आता हूँ।
25: अब कोई बात नहीं अंकल, मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे पानी भी खरीदना है, साथ में ही पे कर दूंगा।
24: ठीक है,
25: एक पानी की बोतल देना। हेलो बॉस, आपसे बात कर रहा हूँ।
26: पापा, ये पानी का बोतल दो ना उनको।
0: हाँ देता हूँ। पता नहीं वो फोन में ऐसा क्या है, हमेशा उसी से चिपका रहता है।
25: ये कार्ड
0: बेटा, ये कार्ड स्वाइप कर दे।
26: खुद क्यों नहीं करते?
0: तुझे पता है ना बेटा, मुझे कार्ड मशीन समझ में नहीं आती। आपको आता ही क्या है?
26: एक काम करो, बाहर गाड़ी आई है, जाकर पेट्रोल भरो, मैं पेमेंट लेता हूँ।
0: सब काम मुझे ही करना पड़ता है।
25: तुम अपने पापा से ऐसे बात क्यों करते हो?
26: मेरे पापा हैं, मेरी मर्जी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
25: हाँ, पर तुम्हारे पापा तुमसे बड़े हैं और बुढ़ापे में तुम उनसे ये सब काम करवा रहे हो।
26: काम करके करी क्या लिया, मुझे अमेरिका तक तो भेज नहीं पाए, खुद तो बिना कुछ पढ़े यहाँ फंसे हैं और मुझे भी फंसा दिया।
0: मैं क्या करता बेटा, मैंने जितने भी पैसे बचाए सब तुम्हारी पढ़ाई में ही लग गए।
26: हाँ, अब सब कुछ ना मुझ पर ही डाल दो। मैं तो अमेरिका से MBA करना चाहता था, पर आपने पैसे तो चाचा पर लुटा दिए और मुझे ये छोटा सा लोकल कॉलेज में पढ़ाया। अगर उस समय चाचा को आपने पैसे नहीं दिया होता ना, तो अब मैं अमेरिका में डॉलर्स में कमा रहा होता, डॉलर्स में। और आपको भी तो ऐसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती ना।
0: अरे, तेरे चाचा को पैसों की जरूरत थी उस समय। रहने दे, कस्टमर के सामने क्यों बहस कर रहे हो? सॉरी बेटा, तुम्हारे सामने हम लोग।
25: नहीं नहीं अंकल, कोई बात नहीं। संजय, तुम्हारे पापा ने तुम्हें MBA तक पढ़ाया है ना, फिर भी तुम उन्हें ही ब्लेम कर रहे हो।
26: लोकल कॉलेज से MBA और अमेरिका से MBA में कितना फर्क होता है तुम्हें क्या पता? तुम्हें देखकर लगता है ना कि तुम सिर्फ बिना काम के ही घूमते रहते हो।
0: संजय, कस्टमर है, तमीज से बात करो। सॉरी।
25: कोई बात नहीं अंकल। वैसे मैं ना एक कहानी पढ़ रहा था, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो आपसे शेयर कर सकता हूँ।
0: कहानी? कैसी कहानी?
25: गणेश और कार्तिकेय की कहानी।
26: मुझे नहीं सुननी कोई कहानी वानी।
25: अरे यार सुन लो ना, तुम्हारा शायद मूड चेंज हो जाए।
26: अरे अजीब जबरदस्ती है।
25: जबरदस्ती ही सही। आप तो जानते ही होंगे कि गणेश और कार्तिकेय शिवजी और पार्वती जी के बेटे थे। वो सब कैलाश में ही रहते थे। एक दिन शिव और पार्वती कैलाश के सुहाने मौसम का मजा ले रहे थे कि तभी
1: कितनी शांति है इस पर्वत पर।
2: हाँ पार्वती, आज का मौसम भी बहुत शांत है।
3: नहीं, मैं सबसे श्रेष्ठ पुत्र हूँ।
4: गणेश, मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ।
3: भैया, मैं आपसे अधिक बुद्धिमान हूँ इसलिए मैं ही आपसे श्रेष्ठ हूँ।
4: तो तुम क्या मुझे बुद्धिहीन कह रहे हो? तो ठीक है, बुद्धि नहीं तो मेरी शक्ति दिखाता हूँ तुझे। रुक, अभी दिखाता हूँ।
3: मैं भी दिखाता हूँ।
4: संभाल के गणेश। ये ले, वाह।
2: अरे अरे, इतना शोर।
1: ओहो, ये गणेश और कार्तिकेय एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं।
2: किस बात की लड़ाई हो रही है इनमें?
1: क्या पता महादेव, ये तो हर दिन एक नए कारण से लड़ते रहते हैं।
3: माता, मुझे भैया मार रहे हैं।
1: कार्तिकेय, अपने छोटे भाई को मारना अनुचित है।
4: किंतु माता, इसने मुझे बुद्धिहीन कहा है।
2: गणेश, किसी को भी बुद्धिहीन नहीं कहना चाहिए पुत्र।
3: किंतु पिताश्री, भैया बोल रहे हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ पुत्र है।
4: हाँ, तो इसमें मैंने क्या अनुचित कह दिया? मैं शक्तिशाली हूँ और तुमसे बड़ा भी हूँ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ।
3: माता, क्या यह सच है? क्या भैया मुझसे अधिक श्रेष्ठ है?
1: नहीं नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है।
4: तो आपका अर्थ है कि गणेश सबसे श्रेष्ठ है?
1: नहीं नहीं, मेरा मतलब।
2: कार्तिकेय, गणेश, हमारे लिए तुम दोनों ही सर्वश्रेष्ठ पुत्र हो।
4: नहीं पिताश्री, हम दोनों सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। आपको ही बताना होगा हम में से कौन सर्वश्रेष्ठ है।
2: सभी माता पिता के लिए अपने सारे पुत्र श्रेष्ठ होते हैं।
5: नारायण नारायण।
1: आइए नारद मुनि।
6: प्रणाम नारद मुनि।
5: अरे, पूरा परिवार एक साथ, क्या बात है।
4: नारद मुनि, आप ही बताइए, मुझमें और गणेश में कौन सर्वश्रेष्ठ पुत्र है?
5: ये मैं कैसे बता सकता हूँ?
3: नहीं मुनिवर, आपको बताना ही होगा, हम में से सर्वश्रेष्ठ पुत्र कौन है?
5: गणेश, कार्तिकेय, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल आपके माता पिता ही दे सकते हैं।
4: देखा पिताश्री, नारद मुनि भी कह रहे हैं कि आपको ही चुनना पड़ेगा,
1: आपसे तो यही आशा कर सकते हैं नारद मुनि, बच्चों को समझाने के बदले आप।
5: मैंने तो बस वही कहा देवी जो मुझे ठीक लगा, बाकी नारायण नारायण।
1: कोई भी माता पिता इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते हैं, आप ही बताइए।
5: तो क्यों ना गणेश कार्तिकी की परीक्षा ली जाए।
1: क्या परीक्षा? भाइयों में कैसी परीक्षा?
4: हाँ माता, परीक्षा लीजिए हमारी, इससे पता चल जाएगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ।
7: तो ठीक है कार्तिकेय, गणेश, परीक्षा ही ली जाए। तुम दोनों में जो सबसे पहले इस पूरे संसार के तीन चक्कर काट कर कैलाश लौटेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। क्या तुम दोनों को ये परीक्षा स्वीकार है?
1: ये आप क्या कह रहे हैं महादेव, ऐसी परीक्षा भाइयों के बीच भेदभाव उत्पन्न कर सकती है।
7: कभी कभी बच्चों को सबक सिखाना आवश्यक होता है पार्वती। तो पुत्रों, परीक्षा आरंभ की जाए।
4: ये दौड़ तो मैं सरल से जीत जाऊंगा, मेरी गति के सामने वो मोटा गणेश कुछ भी नहीं है। हाँ सहमत है पिताश्री,
3: ये दौड़ तो भैया कार्तिकेय ही जीतेंगे।
7: क्या हुआ गणेश, क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें इस परीक्षा से कोई आपत्ति है?
4: हाँ गणेश, क्या हुआ, परीक्षा के नाम से ही डर गए? अगर ऐसा है तो अभी हार मान लो, वैसे सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ।
3: नहीं नहीं, मैं नहीं डरता, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दौड़ शुरू करते हैं।
7: तो ये दौड़ प्रारंभ करो।
5: नारायण, कार्तिकी कितना गतिवान है।
1: परंतु गणेश ने तो अभी तक दौड़ आरंभ ही नहीं की।
5: गणेश तो अभी निकला ही नहीं और कार्तिकी ने त्रिलोक का एक चक्कर भी काट लिया। अरे ये क्या, गणेश तो लौट रहा है।
1: गणेश तुम क्यों लौट आए, अभी तक तो तुमने त्रिलोक का एक चक्कर भी पूरा नहीं किया है पुत्र।
3: माता, पिताश्री ने कहा कि संसार के तीन चक्कर काटने हैं, किंतु मेरा संसार तो आप और पिताश्री ही है, इसलिए आप दोनों के चक्कर काटना संसार के चक्कर काटने के समान है।
5: सत्य है, बुद्धि में गणेश को कोई नहीं हरा सकता।
4: मैं आ गया पिताश्री, मैं जीत गया।
3: आइए भैया, आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे हम।
4: प्रतीक्षा? पर तुम्हें तो मैंने दौड़ में देखा ही नहीं।
7: गणेश ने दौड़ में भाग लिया और तुमसे पहले कार्य पूरा भी किया। इस परीक्षा का विजेता गणेश है कार्तिकेय।
4: क्या, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो गणेश दौड़ता हुआ भी नहीं दिखा, मुझसे पहले कैसे पहुंच सकता है?
5: गणेश ने तुम्हारे माता पिता के चक्कर काटे थे, उसके लिए माता पिता ही उसका संसार हैं।
7: हाँ कार्तिकेय, तुम सर्वश्रेष्ठ कहलाने के जोश में ये भी भूल गए थे कि एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र होता क्या है। पर गणेश ने सदा हमारा सम्मान करते हुए श्रेष्ठ पुत्र का कर्तव्य निभाया।
1: कार्तिकेय, क्या तुम्हें अब भी इस बात पे कोई संदेह है?
4: नहीं माता, मैं मानता हूँ गणेश ही सर्वश्रेष्ठ पुत्र है।
7: गणेश, कार्तिकेय मेरे पुत्र, माँ बाप अपनी संतानों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते, कोई चुनाव नहीं कर सकते। माँ बाप का प्रेम अपने बच्चों के लिए निर्वर्त होता है और बच्चों का भी अपने माँ बाप के प्रति प्रेम ऐसा ही होना चाहिए।
25: कभी कभी हम सक्सेसफुल होने के चक्कर में अपनों को ही पीछे छोड़ देते हैं। क्यों संजय, तुम्हारे पापा ने तुम्हें पाला पढ़ाया पर तुम्हारे लिए वो काफी नहीं था। क्या अमेरिका जाने से ही लोग सक्सेसफुल होते हैं?
8: आई एम सॉरी नील, मैं कितना सेल्फिश था, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था।
25: सॉरी मुझे नहीं, अपने पापा को बोलो।
8: सॉरी पापा, मैं अपने फेलियर्स के लिए आपको हमेशा ब्लेम करता रहा।
9: नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे अमेरिका नहीं भेज पाया।
8: नहीं नहीं पापा, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, मैं आपके ही साथ रहूंगा।
25: पर तुम कहां फेलियर हो, तुमने MBA किया है यार, तुम्हारे इसी बिजनेस को सक्सेसफुल क्यों नहीं मनाते?
8: हाँ तुम सही कह रहे हो पापा,
26: आज से हम दोनों मिलकर बिजनेस चलाएंगे और इसे सक्सेसफुल बनाएंगे, और उसके बाद मैं आपको अमेरिका ट्रिप पर लेके जाऊंगा।
9: अरे अरे, तुमने तो अभी से सपने देखना शुरू कर दिया।
25: सपने देखने चाहिए अंकल, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं।
9: थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपकी वजह से मेरा संजय मेरे पास लौट आया।
25: अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो किया शिवजी ने किया।
26: शिवजी ने? वैसे तुम हो कौन और जा कहाँ रहे हो?
25: मैं नील हूँ, महादेव के घर जा रहा हूँ।
26: महादेव के घर?
25: हाँ वही अमरनाथ।
26: ओ ओ पापा, आप हमेशा बोलते हैं ना आपको वहाँ जाना है।
9: हाँ बेटा, इस जन्म में एक बार अमरनाथ जाना है।
26: तो फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा वहाँ।
25: अरे वाह, तो फिर मिलते हैं वहीं।
26: ऑफ कोर्स मिलते हैं।
25: हर हर महादेव।
23: कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि माँ बाप ने कुछ नहीं दिया। माँ बाप एकदम शिव की तरह भंडारा है, वो दिया बहुत कुछ, तू ले नहीं सका। क्या लिया तूने? अरे जो माँ बाप दिया वो तो कोई नहीं दे पाएगा। तेरे को जान दिया, तुझे जीवन दिया। श्रवण कुमार की कहानी सुनिए क्या, किधर तू भी पढ़ा था मैं। करे मात पिता की सेवा यहां, श्रवण से अब लाल कहा। एक उस श्रवण का कहानी सुना था और एक तू। अब समझा क्या बिड़ू? शिव ने भी अपने बच्चों को यही सिखाया। शिव इज्जत और प्यार करना सिखाता है, शिव परिवार से प्यार और उनकी इज्जत करना सिखाता है। हर हर महादेव।

0: ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
0: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388 8947 या 9198 8693।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003। 62042434003।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की हुई बैठक, शिक्षा विभाग के कार्यों की जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा, आज DM और SP के यहां लगा जनता दरबार, सुनी गई लोगों की फरियाद, दंगा नियंत्रण ड्रिल का पुलिस लाइन में हुआ आयोजन और हजारों मुर्गों के बीच में भारी मात्रा में शराब लेकर आ रहे 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी ने आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कई निर्देश दिए गए, जिसमें विद्यालय निर्माण कार्य को लेकर भी चर्चा हुई और इसमें जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता को आधारभूत संरचना विकास निगम गोपालगंज को निर्देश दिया कि निगम द्वारा कराए जा रहे सभी विद्यालय निर्माण कार्यों को विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करना सुनिश्चित करे। साथ ही सैनिक विद्यालय, कमला राय महाविद्यालय एवं गोपेश्वर महाविद्यालय में किए जा रहे असैनिक कार्यों की समीक्षा करते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य करने का सख्त निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में आगामी चेहल्लुम पर्व 2026 को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला मुख्यालय के सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इसमें जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय शांति समिति के सदस्यगण उपस्थित हुए। जिला पदाधिकारी ने जुलूसों और आयोजनों के लिए निर्धारित मार्ग सूची एवं समय सीमा का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने अनुमंडल स्तर एवं प्रखंड स्तर पर भी शांति समिति की बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सभी संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारी और पुलिस दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त सामाजिक माध्यमों पर भी पैनी निगरानी रखने के लिए पुलिस उपाधीक्षक साइबर को निर्देशित किया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को अवगत कराया गया कि समयबद्धता पोर्टल पर कुल 48 निजी विद्यालयों द्वारा प्रस्वीकृति के लिए आवेदन जमा किया गया है, जो प्रखंड स्तर पर लंबित है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर पोर्टल पर प्राप्त सभी आवेदनों को नियमानुसार जांच कर जिला प्रस्वीकृति समिति को अनुमोदन के लिए भेजने का निर्देश दिया गया। आज जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। पुलिस अधीक्षक ने भी अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर पुलिस केंद्र गोपालगंज में दंगा नियंत्रण टीम का मॉक ड्रिल कराया गया। इस दौरान पुलिस कार्यालय एवं पुलिस केंद्र में पुलिस पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। ड्रिल के दौरान दंगाइयों से प्रभावी ढंग से निपटने, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आपात स्थिति में त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। अभ्यास के क्रम में सभी कर्मियों द्वारा सघन एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, जिससे उनकी कार्यकुशलता, अनुशासन, तत्परता एवं टीम वर्क को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। साथ ही किसी भी विषम परिस्थिति में प्रभावी कानून व्यवस्था संधारण के लिए आवश्यक रणनीतियों एवं कार्य योजनाओं का भी अभ्यास कर सभी बलों को पूर्णतः तैयार रहने के निर्देश दिए गए। कटिहार थाना की पुलिस ने पंचदेवरी पुलिस पिकेट के पास एक ट्रक में मुर्गा के अंदर छुपाकर लाई जा रही भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन में भारी संख्या में मुर्गे रखकर उत्तर प्रदेश की तरफ से लाए जा रहे थे, ताकि किसी को भी लगे कि यह मुर्गा ढोने वाली गाड़ी है, परंतु इसी गाड़ी के अंदर तहखाना बनाकर भारी मात्रा में शराब रखी गई थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने इसे तेतरिया पुल के पास पकड़ लिया और इस गाड़ी में सवार 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों में राज किशोर कुमार, पिता शिव मंगल यादव, यह राजापुर का रहने वाला है, शेख आसिक, पिता शेख गुलाब, यह गढ़वा खजूरिया, ये दोनों कोटवा जिला पूर्वी चंपारण के निवासी हैं। तो वहीं मोहम्मद नबी, पिता मोहम्मद ननहक मियां, यह राजवाड़ा हलीमपुर थाना साहेबगंज जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। सरफुद्दीन आलम, पिता कुर्बान मियां, यह बेलवा माधव, तथा लड्डू यादव, पिता नंदू राय, यह राजापुर, ये दोनों कोटवा जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी के निवासी हैं। इन 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। साथ ही बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोग स्कॉर्पियो से मुर्गे की गाड़ी को पासिंग देने में लगे थे, उस स्कॉर्पियो गाड़ी को भी पकड़ लिया गया और मुर्गा वाली पिकअप गाड़ी को भी जब्त किया गया। तलाशी में स्कॉर्पियो वाहन से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुई, जबकि पिकअप और मुर्गों के बीच छुपाकर रखी गई 1212 लीटर से अधिक अवैध विदेशी शराब मिली है। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर इन्हें उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जादवपुर थाना की पुलिस ने बिरती टोला गांव में मादक पदार्थों की एक खेप को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस ने छापेमारी की और यहां बुलेट यादव के बथान के पास से पुलिस ने गांजा को जब्त किया है। साथ ही बुलेट यादव को गिरफ्तार किया गया है। यह जादवपुर के बिरती टोला का निवासी है। इनके पास से 5 ग्राम गांजा मिला। वही इस मामले में अलाउद्दीन मियां को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह जादवपुर के बगहा का निवासी है। इसके द्वारा गांजा की सप्लाई की जा रही थी। अलाउद्दीन अंसारी के बिछावन से भी 475 ग्राम गांजा जैसा मादक पदार्थ पुलिस ने जब्त किया है। अब दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। विजयपुर थाना क्षेत्र में 2023 में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसको आज कोर्ट ने 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 1.5 लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया। बताया जा रहा है कि विजयपुर पुलिस ने कांड संख्या 331 2023 मामले में पैरवी करते हुए आईटी एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त अमीरुल्लाह अंसारी उर्फ आलम, पिता दिल मोहम्मद अंसारी, साकिन रसूलपुर थाना विजयपुर को दोषी पाते हुए अदालत ने 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। इसमें पुलिस की तरफ से अपर लोक अभियोजक रमन चंद मिश्रा ने पैरवी की। हथुआ थाना की पुलिस ने विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अलाउद्दीन मंसूरी है, जो गुलाम रसूल का पुत्र है और मिर्जापुर थाना हथुआ का निवासी बताया जा रहा है। इसके पास से पुलिस ने विदेशी शराब पकड़ी है। अब इसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कटिहार थाना की पुलिस ने 51 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी दिनेश पासवान, पिता निरंजन पासवान, जो खास बनकटा थाना भोरे का निवासी है। इसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त के घर पर न्यायालय से निर्गत इश्तेहार का विधिवत तामिला किया। बताया जा रहा है कि यह आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहा है। कोर्ट ने इसके घर कुर्की की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए इश्तेहार का तामिला दिया है, जिसमें पुलिस ने प्राथमिकी अभियुक्त मनोज यादव, पिता मिर्जा यादव, साकिन मनियारा, दूसरा अशोक यादव, पिता स्वर्गीय सीताराम यादव, ये भी मनियारा का रहने वाला है, और तीसरा संदीप यादव, पिता रामदेव यादव, ये रामपुर माधो के रहने वाले हैं, और चौथा रवि यादव, पिता बाबूलाल यादव, ये बलुआ टोला बखरी का निवासी है, पांचवा रामदेव यादव, पिता स्वर्गीय चिरकुट यादव, यह रामपुर माधो का रहने वाला है, और छवा राकेश यादव, पिता रुदल यादव, और वीरेंद्र यादव, पिता कन्हैया यादव, ये साकिन खैरटवा थाना कुचायकोट के निवासी हैं। इनके घरों पर भी पुलिस ने इसी मामले में इश्तेहार का तामिला किया है। मोहम्मदपुर के कटिया टोला में एक मछली व्यवसायी पर बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला किया है, जिसके बाद मछली व्यवसायी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित ने बदमाशों पर 1 लाख रुपए लूटने का भी आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सावन महीने में कांवरियों की भारी भीड़ को देखते हुए सदर SDO डॉक्टर प्रेरणा सिंह ने खावे दुर्गा मंदिर परिसर में विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मंदिर परिसर का स्पॉट निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने को पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की, और मौके पर BDO प्रियांशी प्रिया, CO सुधीर कुमार ओंकारा और राकेश मिश्रा तथा TOP प्रभारी धीरज कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। शिक्षा विभाग के कार्यों की जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। आज DM और SP के यहाँ लगा जनता दरबार, सुनी गई लोगों की फरियाद। दंगा नियंत्रण ड्रिल का पुलिस लाइन में हुआ आयोजन। और हजारों मुर्गों के बीच में भारी मात्रा में शराब लेकर आ रहे 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
12: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
13: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
14: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-097-06-575। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
15: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, Glamour X 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
15: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
16: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी।
17: इस कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम के सहयोग से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं।
16: आज की कड़ी बहुत खास है, क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषयों पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और दूसरा है विश्व पोषण दिवस, यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
17: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी श्रोताओं को, आपने बिल्कुल सही कहा। मासिक धर्म और पोषण, ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उस प्रक्रिया की स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलतफहमियां और झिझक मौजूद हैं।
16: सच कहूं से अतिया भैया, आज भी कई घरों में पीरियड शब्द बोलना भी आसान नहीं होता, लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिलती, आखिर ऐसा क्यों है?
17: देखिए, ये एक सामाजिक सोच का मसला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जैसे ये कोई गंदगी हो या शर्म की बात हो, जबकि सच्चाई ये है कि यह हर लड़की और महिला के जीवन का एक सामान्य और जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो हमारे समाज की लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
16: मतलब ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
17: बिल्कुल, माँ, पिता, भाई, पति, शिक्षक, सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई, सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
16: तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
17: मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड, कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधन का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की सफाई रखना और इस्तेमाल किए गए सामग्री का सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
16: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम साधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती है क्या?
17: यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाते क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिल पाते। इससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय से मिलकर सुविधा सुनिश्चित करें।
16: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है। क्यों, अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
17: बिल्कुल सही समझा आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी, चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्या हो सकती है। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
16: तो एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
17: देखिए, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विविधता। आधी थाली में सब्जियां हो, साथ में दाल या अन्य प्रोटीन हो, अनाज जैसे कि रोटी या चावल हो, और अगर संभव हो तो दूध या दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड, ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए।
16: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
17: बिल्कुल, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है ना, वही सबसे अच्छा है। बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना है।
16: सेहतिया भैया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे किसी असली कहानी से न जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
17: हाँ हाँ, बिल्कुल है। देखिए सोनी जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे ही गाँव की एक लड़की रीना की ये कहानी है। रीना करीब 14 साल की थी। पढ़ने में तेज लेकिन बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की थी। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुआ तो घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी भी खुलकर बात नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया था और कहा था कि किसी को बताना मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए, ना ये कि उसे कितनी बार बदलना चाहिए। वो उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रही। धीरे धीरे उसे खुजली होने लगा, जलन होने लगा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद यह नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, रीना के साथ एक और समस्या थी। रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में अक्सर सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां, फल, ये सब बहुत कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, चक्कर आते थे उसे, और कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन की बात है, स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा था। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी आए थे। उन्होंने लड़कियों से खुले में बात की, पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतनी खुलकर बात करते हुए सुनी थी। दोस्तों, शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानियां बताई। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने रीना को समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। इसके अलावा रीना को सैनिटरी पैड दिए और ये भी बताया कि उसे आयरन की कमी है। उसे आयरन की गोलियां भी दी और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह दी। साथियों, रीना घर आ गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया, समय पर पैड बदलना शुरू कर दिया और अपने खाने पीने में सुधार कर लिया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। साथियों, आज रीना अपने गाँव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वह उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण से हम इसे आसानी से संभाल सकते हैं।
16: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
17: बिल्कुल, और यही स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिम जिम का प्रयास है और हमारे इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
16: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
17: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सोनी जी। अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों को भी पोषण की कभी कभी एक गंभीर समस्या हो जाती है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में या निर्माण कार्य में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता। कई बार वे सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं, और इसके वजह से इसका सीधा असर उनकी ताकत, काम करने की क्षमता और लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।
16: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझ लेते हैं, उसके पीछे भी पोषण की कमी हो सकती है।
17: बिल्कुल, और यही बात हमें विश्व पोषण दिवस के संदेशों से जोड़ती है। इस दिन का मकसद सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। और आज जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर ए पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, इसका मतलब यही है कि हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, और इसमें पोषण एक मजबूत कड़ी है जो दोनों विषयों को जोड़ती है।
16: सेहतिया भैया, आपने एनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था, ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है?
17: देखिए, एनीमिया भारत में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, खासकर किशोर लड़कियों और महिलाओं में इसकी दर काफी ज्यादा है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब है शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होता है। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा है, इसलिए है क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो यह कमी और बढ़ जाती है।
16: तो इसका सीधा मतलब है कि अगर हम पोषण पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
17: बिल्कुल सही समझा आपने। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक, मेथी, दालें और चने, गुड़, मूंगफली, तिल, अगर संभव हो तो दूध, दही, अंडा या अन्य प्रोटीन के स्रोत जैसे कि फल, केला, अमरूद, संतरा, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि खाने में विविधता होनी चाहिए। एक ही चीज रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
16: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी मजबूत होगी।
17: बिल्कुल सोनी जी, यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक बात और है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वह बीमारी का कारण भी बन सकता है।
16: साथियों, आज की बातचीत से तो एक बात साफ हो गई है कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है बल्कि ये हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती है। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
17: श्रोताओं याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
16: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। मैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में सेहत सही लाभ कई में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
18: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
19: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
18: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
19: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
20: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
21: सुनिए सुनिए सुनिए,
22: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
21: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
22: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
21: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
23: ठक ठक।
24: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
25: अच्छा मिला ही नहीं।
24: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
21: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
24: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
21: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल।

0: एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: गुला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
2: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम।

0: देश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
4: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल sec.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के बुक पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने के अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोकसत्ता में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
10: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
10: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
12: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
10: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM-Z पर।
13: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द, अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
14: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
15: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
14: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
16: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87-894-18744।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86-034-48-652 पे।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग

0: नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
5: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6252 61112 पे।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: किया और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। अब यह कानून बन गया है। यह विधेयक गुरुवार को संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत की स्थापना करके लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। ये विधेयक छात्रों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। कानून में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल किए गए हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय झा ने संसद से पारित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर खुशी व्यक्त करते हुए इसे छात्रों के लिए ऐतिहासिक बताया। श्री झा ने संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी।
1: प्रधानमंत्री जी डे वन से इस इशू को जब ये घटना हुई, चाहे एग्जाम कराना हो टाइम पर, चाहे कानून लाना हो, चाहे हाई पावर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना हो, अब इस फील्ड में जहां भी, और क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज क्राइम माना गया, सिर्फ जो पेपर लीक करते हैं नहीं, सारे जुड़े हुए हैं, कोई कॉपी करने के लिए बैठा हुआ है विद्यार्थी, सबको इसमें इंक्लूड कर लिया गया। अब इसमें बचेगा नहीं और हार्शेस्ट पनिशमेंट मिलेगा उसको।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। श्री मोदी ने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। योजना और विकास विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में पटना सहित राज्य के 54 शहरों के विकास के लिए 968 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। विभाग के स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण के तहत मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत तत्काल इन शहरों के लिए 320 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने किसानों को घोड़पड़ास और जंगली सुअर से फसलों को नुकसान से बचाने के लिए इनके शिकार की अनुमति दे दी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य के चयनित जिलों की चिन्हित ग्राम पंचायतों में स्थानीय मुखिया को घोड़पड़ास और जंगली सुअर के शिकार की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। घोड़पड़ास और जंगली सुअर मारने वाले व्यक्ति को प्रति शिकार 750 रुपए मिलेंगे। वहीं राज्य सरकार ने जंगली जानवरों के हमले से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा राशि में भी वृद्धि की है। अब जंगली जानवर के हमले में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता दी जाएगी। वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 1,44,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। राज्य में भूमि संबंधी पुराने दस्तावेजों के अनुवाद की सुविधा अब जिला स्तर पर उपलब्ध होगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों में कैथी लिपि विशेषज्ञों को सूचीबद्ध किया है। प्रत्येक जिले में एक विशेषज्ञ तैनात किया जाएगा, जबकि दो अतिरिक्त विशेषज्ञ विभागीय मुख्यालय में उपलब्ध रहेंगे। भूमि स्वामी जिला मुख्यालयों पर कैथी लिपि में लिखे पुराने दस्तावेजों का देवनागरी में अनुवाद करा सकेंगे। विभाग ने इस सेवा के लिए 220 रुपए प्रति पृष्ठ का शुल्क निर्धारित किया है। प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी को राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर त्रिपाठी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर राज्यपाल को परामर्श देंगे। तेल कंपनियों ने व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 192 रुपए की कमी की है। घटी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के अनुसार कमर्शियल सिलेंडर की कीमत पटना में 3,227 रुपए से घटकर 3,018 रुपए हो गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Pटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशव्यापी नशा मुक्ति संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत देश भर में 10,000 स्थानों पर नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में भी अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया जाएगा और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। कार्यक्रम में संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय चयन परिषद ने सिपाही चालक भर्ती परीक्षा के लिए तिथि की घोषणा कर दी है। 4,361 पदों के लिए 24 अगस्त से पटना स्थित वेटनरी कॉलेज मैदान में चालक दक्षता परीक्षा शुरू होगी। परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस परीक्षा की तिथि, स्थान और प्रवेश पत्र की सूचना 10 अगस्त से परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। गौरतलब है कि इससे पहले 11,847 अभ्यर्थियों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए चुना गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रोहतास के विक्रमगंज रेलवे स्टेशन परिसर स्थित सहायक मंडल अभियंता कार्यालय के सहायक अभियंता भोला शंकर कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियंता पर एक एजेंसी की बकाया जमा राशि जारी करने के एवज में इन्वर्टर सेट बैटरी और 7,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। इधर निगरानी विभाग ने औरंगाबाद जिले के रिसियप थाने के दारोगा उमेश कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दारोगा मारपीट के मामले में गलत रिपोर्ट बनाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सीवान, कटिहार, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 5 अगस्त तक राज्य के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भाग के अनेक स्थानों जबकि शेष भागों के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: नेपाल के सुनसरी में दो समुदायों के बीच तनाव को देखते हुए प्रशासन ने धनुषा और सिरहा जिला में कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू के कारण जयनगर से नेपाल के बिजलपुरा तक चलने वाली ट्रेन का परिचालन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इधर नेपाल के तराई क्षेत्र में हिंसक घटनाओं के बीच प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुपौल और अररिया जिले सहित सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस और SSB की टीम सघन गश्त और जांच अभियान चला रही है। भारत का ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में अपना पहला कांस्य पदक जीता और 10 भारतीय मुक्केबाजों ने अपनी अपनी कैटेगरी के फाइनल में जगह बना ली है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के अपने सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराज ने 89.75 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता जबकि भारत की यशवीर सिंह ने अपने आखिरी प्रयास में 85.41 मीटर के अपने बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक हासिल किया। भारत 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक समेत 23 पदकों के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है। भोजपुर जिले के बिलौटी पुनर्वास स्थल पर गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिला प्रशासन ने कहा है कि नियमित निगरानी भी की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हाल में पेयजल की गुणवत्ता के संबंध में प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए पुनर्वास स्थल पर स्थापित 6 चापाकल के पानी की जाँच की गयी। इनमें से वर्तमान में 5 चापाकल पूरी तरह कार्यशील हैं और इनका पानी सही है। भागलपुर जिले में श्रावणी मेला के सफल, सुरक्षित एवं व्यवस्थित संचालन को लेकर जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहलगांव स्थित बटेश्वर स्थान गंगा घाट, तीन पहाड़ गंगा किनारा तथा घोघा एकचारी वेना पुल पर सुविधाओं का निरीक्षण किया। नवादा के जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बैंकों और अधिकृत वेंडरों को लंबित ऋण आवेदनों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए हैं। अररिया जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त छापेमारी के दौरान 9 किलो गांजा बरामद किया गया। इधर बेगूसराय जिले के बरौनी रेलवे जंक्शन के दक्षिणी छोर के पास से राज्य की रेल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के संयुक्त जांच अभियान में 86 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में मानक से 65,413 शिक्षक अधिक। अखबार लिखता है, आंगनबाड़ी बाल वाटिका पर भी तैनात होंगे शिक्षक। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, सिपाही और जमादार वाहन जांच चालान नहीं कर सकेंगे, पकड़े गए तो होगी कानूनी कार्रवाई। प्रभात खबर ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, भाजपा एमएलसी देवेश की जगह विधान परिषद में मनोनीत होंगे मंत्री दीपक प्रकाश। दैनिक भास्कर ने भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में गिरफ्तारी को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, हत्या के केस में एसटीएफ सिपाही अक्षय गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। राज्य सरकार ने फसलों को जंगली सुअर और घुड़पड़ास से बचाने के लिए किसानों को इनके शिकार की अनुमति दी। और मौसम विभाग ने आज गोपालगंज, सीवान, कटिहार, अररिया और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
10: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
11: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
10: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
11: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
10: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
11: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
12: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
13: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने संतोष फर्नीचर के नीचे कॉलेज रोड गोपालगंज।
14: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
15: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
14: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
15: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
14: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
13: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
16: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
13: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
16: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
13: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
16: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
17: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
18: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
19: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
17: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
19: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
17: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
19: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
17: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
19: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
17: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
20: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029-94-91 8029-94-91 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना ले और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
21: हेलो
22: हेलो
21: हेलो
22: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
21: रंजन बोल रहे हैं, आज वक्त से
22: जी। कैसे हैं रंजन जी?
21: ठीक है।
22: तो क्या कर रहे थे अभी?
21: कुछ नहीं, इधर पढ़ाई थोड़ा है तो बैठे हुए
22: जी। पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी?
21: BA कम्प्लीट हो गया।
22: सही है, उसके आगे अभी कुछ तैयारी नहीं चल रही है?
21: करते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए।
22: अच्छा, चलिए बढ़िया है। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
21: मम्मी का नाम है लाल।
22: ठीक लिया जाए, आज का पहला प्रश्न आपसे।

0: आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए गया, बी औरंगाबाद, सी नवादा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: गया को पूछ के दीजिएगा।
0: चोर है?
1: चोर तो नहीं है।
0: तो लॉक करो।
1: हाँ कर दीजिए।
0: चलिए तो रंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गया को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका समय शुरू है अब।
1: ऑप्शन सी को
0: स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए श्योर है? लॉक कर दें।
1: हाँ कर दीजिए।
0: तो रंजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए? आज से आपका तीसरा प्रश्न ये है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंग, बी जॉन व्हीलर और सी एडविन हबल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी को फिक्स कीजिएगा, कन्फर्म नहीं है।
0: जॉन व्हीलर? कन्फर्म नहीं है लेकिन लॉक करो।
1: हाँ कर दीजिए।
0: चलिए रंजन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी जॉन व्हीलर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए? आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी के एम मुंशी और ऑप्शन सी अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी क्या है?
0: ऑप्शन
1: सी क्या है? ये
0: ऑप्शन ए की बी
1: मुझे ऑप्शन सी क्या है, नाम क्या है इनका?
0: ऑप्शन का नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया है बी एन राव, बी है के एम मुंशी और सी है अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर।
1: इन्हीं को फिक्स कीजिएगा।
0: ऑप्शन सी?
1: हाँ।
0: श्योर है? लॉक कर दो। आपकी आवाज काफी धीरे आ रही है,
1: कर दीजिए इसी को, ऑप्शन सी को।
0: चलिए तो रंजन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा
1: बी एन राव।
0: हाँ जी
1: ठीक है।
0: ओके हेलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।
2: हाँ अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी मैम।
0: जी नाम बता दीजिए अपना।
2: नाम मेरा गुलाबशाह खातून है।
0: जी कहाँ से बात कर रही हैं गुलाबशाह जी?
2: गोपालगंज से।
0: गोपालगंज में कहाँ से?
2: सदुल्लापुर से।
0: सदुल्लापुर से।
2: हाँ
0: जी। क्या करती हैं आप?
2: घर पर आते हैं, सिलाई करते हैं।
0: चलिए सिर्फ अपना या फिर कस्टमर का भी?
2: अपना भी करते हैं, कस्टमर का भी करते हैं।
0: चलिए बढ़िया है। पढ़ाई कहाँ तक हुआ है आपका?
2: मेरा इंटर फाइनल था, उसके बाद पढ़ाई ही हम नहीं किए।
0: अच्छा, इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी है।
2: जी,
0: तो आप लोग क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले कॉल किए हैं?
2: नहीं, पहले भी किए थे।
0: अच्छा, तो आज के पहले प्रश्न के लिए तैयार हैं आप?
2: जी बिल्कुल। किए।
0: ओके, अम्मी अबू का नाम बता दीजिए अपने।
2: अबू का नाम है साबिर हुसैन और अम्मी का नाम है नूरजहां।
0: चलिए, लिया जाए पहला प्रश्न।
2: जी मैम।
0: जी,

0: सबसे पहला प्रश्न ये है, रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन ए मैम।
0: श्योर है?
1: हाँ, लॉक के सहारे।
0: लॉक के सहारे तो लॉक कर दो।
1: जी कीजिए।
0: चलिए तो चलिए गुलास जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर विटामिन ए लॉक कर दिए। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर सही है।
1: सही है
0: जी।
1: मैं पहले ही डरवा रही
0: हूँ। नहीं कहीं ना। चलिए जय, आपसे दूसरा प्रश्न।
1: जी मैम।
0: जी, और आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सुभाष चंद्र बोस।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक करूं?
1: जी मैम।
0: तो गुलासा जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सुभाष चंद्र बोस को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री।
1: जी मैम।
0: जी, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348452 पे।
7: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
8: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
7: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
12: जी नमस्ते मैम।
13: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
12: जी
13: जी, नाम बता दीजिए अपना।
12: निरंजन कुमार बोल रहे हैं
13: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं निरंजन जी?
12: बतरदे से
13: जी। क्या करते हैं आप?
12: जी बाहर आते हैं
13: जी।
12: सूरत में।
13: पढ़ाई कहाँ तक हुई
12: है? काम करते हैं।
13: पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी?
12: इंटर तक हुई है।
13: इंटर तक हुई है। तो आज चलो कुछ कॉन्टेस्ट में कॉल किया, तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
12: जी तैयार है
13: जी। तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
12: हमारा माता जी का नाम है श्रीमती चन्मती देवी और पिता जी का श्री सुमन माझी।
13: जी, लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
12: जी
13: जी,

0: आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी विजयी विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: राष्ट्रीय गीत की गान,
0: राष्ट्रीय गीत
1: वंदे मातरम।
0: श्योर है?
1: जी
0: जी। तो चलिए दिनेश रंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है?
1: विटामिन ए।
0: विटामिन
1: जी करण जी।
0: विटामिन ए
1: जी।
0: श्योर है?
1: जी श्योर है।
0: लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए निरंजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर विटामिन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: और आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, हड्डियों का कमजोर होना किस पोषक तत्व की निशानी है? ऑप्शन ए आयोडीन, बी कैल्शियम, सी लौह अयस्क। आपका समय शुरू होता है अब।
1: कैल्शियम।
0: श्योर है?
1: जी।
0: तो लॉक कर दें?
1: जी।
0: तो चलिए निरंजन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कैल्शियम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए गया, बी औरंगाबाद, सी नवादा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मगध का
0: जी
1: ऑप्शन
0: ऑप्शन ए गया, बी औरंगाबाद, सी नवादा।
1: गया होगा।
0: प्योर है?
1: प्योर तो नहीं है लेकिन लग रहा है।
0: लॉक कर दें?
1: जी
0: जी। तो चलिए निरंजन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गया को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है?
1: है 28 फरवरी।
0: श्योर है?
1: जी श्योर है।
0: लॉक कर दूं?
1: जी।
0: ऑप्शन सुनिएगा कि लॉक कर दें?
1: तो राष्ट्रीय है कि अंतर्राष्ट्रीय?
0: नहीं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस।
1: ऑप्शन 28 फरवरी होगा।
0: चलिए तो लॉक करो।
1: लॉक कीजिए। जी
0: जी। तो निरंजन जी, आपके पांचों प्रश्न का उत्तर 28 फरवरी लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न लिया जाए आपसे?
1: जी।
0: आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए लेक नासेर, बी लेक करीबा, सी लेक वोल्टा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन
0: ए लेक नासेर, बिले करीबा तिले को वोल्टा
1: बी को लॉक कीजिए कंफर्म नहीं है
0: बी को
1: जी
0: ओके तो चलिए निरंजन जी आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी लेक करीबा को लॉक करते हैं ऑप्शन बी और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर गलत है सही उत्तर होगा लेक वोल्टा 8500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से ये बड़ा है हेलो फ्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के कार्यक्रम हेलो फ्यूज कॉन्टेस्ट में
1: नमस्कार मैम
0: जी नमस्कार नाम बता दीजिए
1: रुपेश कुमार
0: रुपेश कहाँ से बात कर रहे हैं रुपेश जी
1: जादवपुर से
0: जादवपुर से क्या करते हैं आप
1: पढ़ाई पढ़ते हैं
0: किस क्लास में पढ़ते हैं आप
1: ट्वेल्थ
0: में पढ़ते हैं पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी
1: ठीक चल रहा है
0: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में इससे पहले भी कॉल किए हैं आप जी तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न ओके

0: अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: मेरे माता जी का नाम श्रीमती सुमिता देवी और पिताजी का नाम श्री संजय प्रसाद चौरसिया है।
0: जी तो रूपेश जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, हड्डियों का कमजोर होना किस पोषक तत्व की निशानी है? हड्डियों का कमजोर होना किस पोषक तत्व की निशानी है? ऑप्शन ए आयोडीन, बी कैल्शियम, सी विटामिन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: कैल्शियम।
0: श्योर है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दूँ?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए रुपेश जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कैल्शियम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? मगध

0: कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा गया। हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
10: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 आमजेड पर।
11: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
11: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
1: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80029-94921, 80029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो जी, बहुत बहुत आपका रेडियो जिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
13: नमस्ते। क्या हाल है?
0: बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
13: मेरे भी बढ़िया है।
0: आप अपना नाम बता दीजिए।
13: मेरा नाम गणेश कुमार।
0: गणेश कुमार, कहाँ से बात कर रहे हैं गणेश जी?
13: उत्तर नारायण से।
0: पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
13: पढ़ाई तो 7th क्लास तक हुआ है।
0: तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया तैयार

0: रहे हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
1: पापा का नाम श्री सुदर्शन पंडित, मम्मी का नाम श्री परमिला देवी।
0: जी, तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
1: जी
0: जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी विजय विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: तीसरा का लॉक करिए।
0: विजय विश्व तिरंगा
1: जी।
0: चोर है?
1: चोर तो नहीं है।
0: ओके, तो चलिए गणेश जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विजय विश्व तिरंगा लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा वंदे मातरम। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना।
2: रोहित कुमार।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं रोहित जी?
2: जी मैम गौसियाता से।
0: गौसियाता
2: जी।
0: जी क्या करते हैं आप?
2: मैम पढ़ते हैं।
0: किस क्लास की पढ़ाई करते हैं आप?
2: बीए में।
0: बीए फर्स्ट ईयर चल रहा है कि लास्ट ईयर?
2: मैम सेकंड ईयर में।
0: सेकंड ईयर में है। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी?
2: ठीक चल रही है मैम।
0: चलिए बढ़िया है। तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं इससे पहले?
2: एक बार किए थे मैम।
0: अच्छा, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: जी मैम।
0: जी मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
2: जी पिताजी का नाम श्री राम रतन शाह
0: जी
2: और माताजी का नाम श्रीमती सीमा देवी
0: जी। पापा जी क्या करते हैं आपके?
2: मैम अभी तो कुछ नहीं करते थे, मतलब पहले फॉरेन कंट्री में रहते थे, अभी घर पे ही हैं।
0: ओके, और आपका क्या लक्ष्य है, आगे क्या करने का इरादा है?
2: अभी तो मैम सिविल एआई सर्विस का तैयारी करते हैं।
0: चलिए बढ़िया है। तो लिया जाए पहला प्रश्न?
2: जी मैम।
0: जी

0: आपसे आपका पहला प्रश्न ये है।
1: यस मैम।
0: भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है?
1: जी मैम।
0: ऑप्शन ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी विजयी विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी मैम।
0: बी वंदे मातरम।
1: जी मैम।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दो?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वंदे मातरम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाई जाती है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 11 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 13 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी नंबर।
0: 12 फरवरी।
1: जी।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक करो?
1: लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए रोहित जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 12 फरवरी को लॉक करते हैं।
1: जी,
0: और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा 13 फरवरी।
1: अच्छा।
0: जी
1: जी मैम।
0: हेलो फ्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई संतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
12: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
12: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
13: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029994921 8029994921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
14: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
14: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
14: निरंजन कुमार बोल रहे हैं, बता दीजिए।
0: ठीक, कैसे हैं निरंजन जी।
14: ठीक है,
0: हम भी बढ़िया है। जी पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी निरंजन जी।
14: इंटर तक हुई है।
0: उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी है।
14: पढ़ाई छोड़ दी।
0: चलिए, मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
14: माता जी का नाम है श्रीमती चंद्रमती देवी और पिताजी का श्री सुमन माझी।
0: जी, तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए, तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए।
14: जी तैयार है।
0: जी

0: तो निरंजन जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? ऑप्शन ए सिरियस, बी सूर्य, सी प्रोक्सिमा सेंटोरी। आपका समय शुरू है अब।
1: ऑप्शन और से मिलिएगा।
0: ऑप्शन ए सिरियस, बी सूर्य, सी प्रोक्सिमा सेंटोरी।
1: सी होगा
0: प्रोक्सिमा सेंटोरी।
1: कंफर्म तो नहीं है
0: तो लॉक करूं?
1: बी को कीजिए, सूर्य।
0: सूर्य को करें? हेलो,
1: सूर्य को करिए। जी
0: जी, पक्का श्योर है ना? सूर्य को करें?
1: हाँ करिए, कंफर्म तो नहीं है लग रहा है।
0: चलिए तो निरंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सूर्य को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है,
1: जी
0: ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, बी क्रांति, सी सिंचाई परियोजना। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए होगा,
0: दुग्ध उत्पादन।
1: जी।
0: श्योर है?
1: जी श्योर है।
0: चलिए तो लॉक कर दें?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए निरंजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? आपका ऑप्शन ए है 73वां संशोधन, बी है 74वां संशोधन।
1: 73वां होगा।
0: श्योर है?
1: जी श्योर है।
0: लॉक कर दें?
1: जी लॉक कर दें।
0: ओके, तो चलिए निरंजन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 73वां संशोधन लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु?
1: हीलियम।
0: हीलियम
1: जी।
0: ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन में तो हीलियम है ही नहीं।
1: ऑप्शन हीलियम नहीं है, बोलिए तो।
0: सोडियम ऑप्शन ए, बी है लिथियम, सी है मैग्नीशियम। बस समय चौथा है आप।
1: लिथियम होगा।
0: लिथियम होगा
1: जी।
0: चोर है?
1: जी चोर है।
0: तो लॉक करें?
1: हीलियम हम पढ़े थे। हीलियम।
0: हीलियम
1: जी।
0: तो लिथियम को लॉक करें?
1: जी।
0: चलिए तो निरंजन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी लिथियम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। तो आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिक्टेस, बी एस्कर्वी, सी बेरीबेरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन डी की कमी से?
0: जी
1: बेरीबेरी हो।
0: श्योर है?
1: जी श्योर है।
0: लॉक करें?
1: जी
0: जी। तो निरंजन जी आपके पांचों प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बेरी बेरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रिक्टर। ठीक, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
2: नाम सालू कुमारी शेरशाह टोला से।
0: जी कैसे हैं सालू जी।
2: अच्छा आप बताइए।
0: हम भी बढ़िया है। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है सालू जी आपकी।
2: अभी नाइन्थ क्लास में आप पढ़ रहे हैं।
0: अभी नाइन्थ में आई है।
2: हाँ
0: जी, पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी।
2: अच्छी चल रही है।
0: चलिए अच्छी बात है, कैसे चल रही है। तो कुछ सोचा है आपने आगे क्या करना है आपको।
2: हाँ सिविल सर्विस में जाना है।
0: सिविल सर्विस में जाना है। जी तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए सालू जी आप।
2: मम्मी का नाम श्रीमती निर्मला देवी, पापा का नाम बलिंद कुमार प्रसाद।
0: जी तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए, तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए।
2: यस मैम।
0: ओके

0: तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल, सी क्लोरोफिल। आपका समय स्रोत है अब।
1: हम ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड।
0: श्योर है?
1: श्योर, लेकिन लॉक कीजिए।
0: ओके, तो चलिए शालू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर है जल।
1: जल
0: जी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके मैम, थैंक यू,
0: वेलकम।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
8: बोलबम, हर

0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके डूरिमजिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: नमस्ते मैम।
2: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
1: प्रियांशु गुप्ता खारे से।
2: पूरा नाम बताइए अपना।
1: प्रियांशु गुप्ता खारे से।
2: अच्छा, प्रियांशु गुप्ता
1: जी।
2: आपकी आवाज़ धीरे आ रही है। तो क्या करते हैं प्रियांशु जी आप?
1: अभी स्कूल पढ़ते हैं।
2: स्कूल में पढ़ते हैं। किस क्लास की पढ़ाई चल रही है आपकी? सेवेंथ में। तो आपने सोचा है आगे पढ़ के क्या करना है आपको?
1: अभी तो नहीं।
2: अभी नहीं सोचे हैं। अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप।
1: पापा जी का नाम सुप्रीत रुपया और मम्मी का नाम सुप्रीत।
2: और पापा जी क्या करते हैं आपके?
1: वो विदेश में रहते हैं, दुबई।
2: अच्छा अच्छा। और आपको क्या करना है आगे, कुछ सोचा है आपने? अच्छा अच्छा। आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि नेटवर्क वाले एरिया में जाइए।
1: बोलिए
2: जी। तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो तैयार हैं आप पहले प्रश्न के लिए? इससे पहले आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
1: एक बार किए थे।
2: अच्छा अच्छा, चलिए तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न। चलिए,

0: तो प्रियांशु जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? ऑप्शन ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम। आपका समय शुरू होता है अब। अरुणाचल प्रदेश। श्योर है? लॉक कर दें? चलिए, तो प्रियांशु जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, बी 22 जून, सी 22 मार्च। आपका समय शुरू होता है अब।
1: 22 अप्रैल।
0: श्योर है? लॉक कर। चलिए, तो प्रियांशु जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 22 अप्रैल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए? आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन ए 2 और ऑप्शन सी 4। आपका समय शुरू होता है अब।
1: 1000 क्वेश्चन बोलिएगा।
0: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4। सी। ऑप्शन 4, मतलब ऑप्शन सी 4।
1: नहीं, 3 आंसर होगा।
0: 3 आंसर होगा।
1: ऑप्शन बी 3।
0: श्योर है? आप कहीं सर्च कर रहे हैं?
1: नहीं।
0: तो मुझे अगर थोड़ा सा भी अगर ऐसे भनक लगता है तो मैं कॉल कट कर दूंगी कि आप कहीं सर्च कर रहे हैं। जी, चलिए, तो आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यानी 3 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए? चलिए, आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोमती, बी घाघरा, सी यमुना। आपका समय शुरू होता है अब।
1: यमुना।
0: श्योर है? लॉक करो। लॉक कर दो।
1: हाँ, लॉक कर दीजिए।
0: कोई है आपके पास में?
1: नहीं।
0: तो चलिए, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी यमुना को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। और तैयार है आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: तैयार है।
0: और आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए स्टेप, बी फीमर, सी रेडियस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एक बार और ऑप्शन बोलिएगा।
0: स्टेप, बी फीमर, सी रेडियस।
1: स्टेप। ऑप्शन ए।
0: प्योर है? लॉक कर दूं? चलिए, तो चलिए प्रियांशु जी, आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार हैं आप छठे प्रश्न के लिए? आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सी सुब्रमण्यम, बी वर्गीज कुरियन और सी एम एस स्वामीनाथ। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी।
0: श्योर है? ओके, ऑप्शन सी बोले हैं, एम एस स्वामीनाथ। ओके, तो चलिए प्रियांशु जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथ को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए? आज से आपका सातवां प्रश्न ये है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? आपका ऑप्शन ए है प्रकाश की कमी के कारण, बी है मध्यम के अभाव के कारण और सी है गुरुत्वाकर्षण के कारण। माध्यम के अभाव के कारण। श्योर है? प्रकाश की कमी या गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं हो सकता है?
1: नहीं।
0: चलिए तो आपके सातवें प्रश्न का उत्तर माध्यम के अभाव के कारण लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप आठवें प्रश्न के लिए? आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1945, बी 1947, सी 1950। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन
0: ए 1945, बी 1947, सी 1950।
1: ऑप्शन ए 1945।
0: श्योर है? लॉक कर दूं?
1: कर दीजिए।
0: ओके, तो प्रियांशु जी, आपके आठवें प्रश्न का उत्तर 1945 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके आठवें प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप नौवे प्रश्न के लिए? चलिए, तो कैसा लग रहा है आपको नौवे प्रश्न तक आके?
1: बहुत अच्छा।
0: चलिए तो प्रियांशु जी, आपसे आपका नौवा प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में हार्मोन की तरह भी कार्य करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी और ऑप्शन सी विटामिन के। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी और ऑप्शन सी है विटामिन के।
1: अच्छा, क्वेश्चन यही ना था, ये कौन सा विटामिन हार्मोन,
0: हाँ, हार्मोन की तरह शरीर में कार्य करता है? हेलो,
1: विटामिन डी, ऑप्शन बी।
0: आप कहीं सर्च कर रहे हैं? किट किट की आवाज आ रही है?
1: नहीं तो हम अकेले हैं रूम में, पंखा चल रहा है।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
10: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
11: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
12: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
13: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
11: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
10: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
11: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
3: कॉल करे 87-894-18744।
5: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
14: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
15: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
16: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03, 62042434-03।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: बिमल कुमारी लाइन बजाते
1: हैं। जी कैसे हैं बिमल जी?
2: ठीक है।
1: तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी बता दीजिए?
2: ग्रेजुएशन फाइनल है।
1: अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम श्रीमती प्रभाती देवी है, पापा जी का नाम रामाजी प्रसाद है।
1: जी तो तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: जी मैम।
1: तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल और सी क्लोरोफिल। आपका समय स्रोत है अब।
1: जल।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: जी।
0: चलिए तो विमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी जल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए मैम,
0: अनुच्छेद 352।
1: जी।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक करो?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, रक्त का थक्का बनने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? रक्त का थक्का बनने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए लाल रक्त कणिका, ऑप्शन बी प्लेटलेट और ऑप्शन सी प्लाज्मा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: प्लेटलेट होना चाहिए मैम।
0: होना चाहिए, तो लॉक किसे करूं?
1: प्लेटलेट कीजिए।
0: यही करें, प्लेटलेट।
1: जी
0: जी। तो चलिए विमल जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी प्लेटलेट को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? ऑप्शन ए सिरियस, बी सूर्य, सी प्रोक्सिमा सिटारी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एक बार और मैं बोलिएगा।
0: क्वेश्चन या ऑप्शन?
1: क्वेश्चन।
0: पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? ऑप्शन ए सिरियस, बी सूर्य, सी
1: बी ऑप्शन बी सूर्य।
0: श्योर है?
1: जी।
0: ओके, लॉक कर दूं?
1: जी मैम।
0: तो चलिए विमल जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सूर्य को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: आज से आपका पांचवा प्रश्न ये है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी कजिंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
1: ऑप्शन ए मैम,
0: कान्हा राष्ट्रीय उद्यान।
1: जी।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है, लॉक कर
0: दिए। ओके, तो चलिए विमल जी, आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
1: कोई बात नहीं
0: जी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके मैम, बाय
0: बाय।
2: तो ये रहा हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर, और हमें दीजिए अब जाने की इजाजत। और रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए रेडियो रिंझुन 90.4 FM। नमस्कार।
3: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
12: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 8570-32042 पे।
13: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
14: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
15: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
14: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
15: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
14: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
15: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
14: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
15: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
14: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
15: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51-51 पे।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रेमझिम 94.4 FM पे समय 9:30 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 7277 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप लोगों को पुराने गाने का फरमाइश करना है। ये बातें हर रोज आप सभी के बीच हम सभी साझा करते हैं। चाहे जो भी कार्यक्रम चले उस कार्यक्रम का नियमावली आप सभी के बीच प्रस्तुत की जाती है कि ऐसे कार्यक्रम में जुड़ना है। तो इस कार्यक्रम में पुराने गाने के साथ जुड़ना है तो आप पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और अपने पसंद के गाने सुने। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें 7277 16 65 96 पे। यहाँ पे आगे पहला मैसेज मेरे पास पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि मधुसरिया से राजू कुमार सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में राजू जी। कल हमें लगता है कि आपकी फरमाइश पूरी किए सो आज तो नहीं पूरा करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरी नज़र में तेरा इंतजार है, ये गाना सुनाए। और हम लखन पांडे गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मुझे तो ना कोई आसमान चाहिए, मुझे तो ना कोई जहान चाहिए। तू तो सितारों की एक महफिल है, बस उस पूरी महफिल में से बस एक तू चाहिए। सोनो भाई नमस्कार, और आपको सावन महीने की शुरुआती आपकी कृपा बने रहे। समीर भाई की गाना सुपर, और मैसेज कल के पहुँचे हुए और आज भी इस डिवाइस में रिसीव हो रहे हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ, लिखा गया है कि कुछ नशा तो आपकी बात है, कुछ नशा तो ये धीमी बरसात का है। आप यूं ही हमें शराब ना कहिए, क्योंकि कुछ नशा तो आपकी मुलाकात का है। सोनू भाई नमस्कार, और मुझे गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे बढ़ते हैं, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि मैसेज पहुंचा हुआ है, मोहब्बत के खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। और यह मैसेज कल भी पहुंचा हुआ था। जो भी मैसेज हमारे पास कल के रिसीव हो रहे हैं, ये ऑनलाइन टेक्स्ट मैसेज वाले रिसीव हो रहे हैं, तो हम उसको भी शामिल कर रहे हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मोहब्बतों के खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी फिल्म दिखानी है तो कभी शॉपिंग करानी है। मास्टर रोज कहते हैं कहाँ है फीस के पैसे, उसे मैं कैसे समझाऊं कि अपनी माँ की बहू भी लानी है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सर, मैं प्रिंस यादव चनावे गोपालगंज से बोल रहा हूँ और मुझे गाना सुनना है। गाने हैं तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि काकड़कुंड से हमको भी गाना सुनना है, सिकंदर राज बोलबम का, पवन सिंह का पुराना वाला। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने का नाम बताए, कौन से गाने सुनना है, तभी तो फरमाइश पूरी की जाएगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाँ भैया मुझको भी गाना सुनना है। बुलेट चौधरी तीन फिड़िया से जुड़े हुए हैं, खेसारी लाल की आवाज़ में कोई भी सावन का। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कोई भी नहीं, आप गाने का नाम बताएं और यह समय आपके लिए निर्धारित की गई है कि आप अपने पसंद के गाने फरमाएं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और अपना आगे मैसेज सेंड करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय हेलो सनम भैया, MD नौसाद दरभंगा भाजीतपुर से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है नौसाद जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, कैसे हैं आप आज, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा फरमाइश ज़रूर सुनाएंगे। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को करते हैं अजय कुमार मिश्रा जी,
ग्राम गणेश स्थान माझा जिला गोपालगंज से। तो बिल्कुल बने रहे हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। आगे मैसेज तो आते जा रहे हैं, तो मैसेज को रोकते हैं, गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज करते हैं और पहले गाने की फरमाइश करते हैं पूरी लखन पांडे जी की, और इनके तरफ से गाने का बोल दिया गया है, मेरी नज़र में तेरा इंतजार है। तो सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो MCM 90.4 FM पे।

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है काफ़ी प्यारा। और इस शो से आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम और कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 7277-1665 पे। आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और गाने के फरमाइश वाला मैसेज हम बता दें, आगे गाने की फरमाइश पूरी करेंगे। अजय कुमार मिश्रा जी की ग्राम गणेश स्थान माझा जिला गोपालगंज से मैसेज किए हुए हैं और कहते हैं कि मुझे फूल और कांटे फिल्म का गाना सुनना है, आप कल भी मेरा फरमाइश नहीं सुनाई। तो आज आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, आप सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। यदि सुन रहे होंगे तो एक मैसेज भी ज़रूर करेंगे ताकि हमें भी एहसास हो कि हाँ, हमने आपकी फरमाइश पूरी की है तो आप सुन चुके हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सोना भाई जी, मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में रोहित जी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, और मैसेज करती हैं रोशनी। उससे पहले मैसेज लिखी है कि हेलो नमस्ते भैया, आप कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा, और मुझे भी आज सॉन्ग सुनना है तो बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय भैया जी, श्याम कुमार मोतिहारी से, और हमको गाना सुनना है दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरती है तो गा लेते हैं। बिल्कुल सुनाएंगे चाहत मूवी से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और हेलो सर, मैं दीपांशु गोपालगंज से बोल रहा हूं और मेरा एक गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज प्लीज़ आप चेक करके बजा दीजिए, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और लिंक भेजे हुए तो थोड़ा सा आप उस गाने का नाम बता दीजिए सिकंदर जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, मैं उषा कुमारी, मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाना सुनना है तो बिल्कुल सुनाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनो भैया प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिए। बिल्कुल लेके करके ही तो गाने की फरमाइश हम पूरी करेंगे, अभी तो एक ही गाने हम सभी सुने हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सुनो जी, मैं रेखा पांडे गोपालगंज सरेवाड़ नंबर 5 से, सर मेरा गाना भी प्ले कर दीजिए। मैं मंगलवार से आपका अपने गाने का इंतज़ार कर रही हूँ, वह गाना तो नहीं बताऊंगी, आज दूसरा गाना बजा दीजिए। बिल्कुल बजाने की कोशिश रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
4: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझेम 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, लेकिन मैसेज को शामिल करने से पहले आज फिर से हम आप सभी के बीच एक छोटा सा सुझाव साझा करेंगे सेहत से लाभ कई के अंतर्गत। आज हम सभी जानेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया फेफड़ों का एक गंभीर संक्रामक इन्फेक्शन है जिसमें फेफड़ों की वायु थैलिया में सूजन आ जाती है, इनमें पानी या मवाद भर जाता है, इससे सांस लेने में कठिनाई होती है और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। निमोनिया के कई कारण हो सकते हैं जैसे बैक्टीरियल, वायरस, फंगस, धूल धुआं या भोजन तरल पदार्थ फेफड़ों में चले जाना। जोखिम किन लोगों के लिए अधिक हो सकता है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति, मधुमेह, अस्थमा, हृदय रोग वाले लोग और कमजोर प्रतीक्षा वाले व्यक्ति, इन लोगों के लिए निमोनिया अधिक खतरनाक साबित होता है। निमोनिया के प्रमुख लक्षण है तेज बुखार और ठंडा लगना, खांसी बलगम के साथ या बिना बलगम के साथ दोनों हो सकते हैं, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द खासकर खांसते समय और तेज सांस चलना, कमजोरी और थकान महसूस करना, बच्चों में दूध न पीना, सुस्ती या तेज सांस लेना, ये सारे लक्षण हैं। जांचें इनके डॉक्टर द्वारा शारीरिक जांच, छाती का एक्सरे, रक्त जांच, बलगम की जांच, ऑक्सीजन स्तर की जांच। उपचार हैं, उपचार कारण पर निर्भर करता है जैसे कौन सी निमोनिया आपको है। तो बैक्टीरियल निमोनिया में डॉक्टर द्वारा दी गई एंटीबायोटिक दवाएं लें, वायरल निमोनिया में आराम तरल पदार्थ और आवश्यकता अनुसार दवाएं लें, बुखार के लिए पैरासीटामोल डॉक्टर की सलाह के द्वारा ही लें और पर्याप्त पानी और पौष्टिक भोजन लें। गंभीर परिस्थिति में अस्पताल में भर्ती, ऑक्सीजन या अन्य उपचार की आवश्यकता हो सकती है। बचाव है इनके निमोनिया और फ्लू के टीके समय पर लगवाएं, हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोएं, धूम्रपान से बचें, पौष्टिक भोजन करें और पर्याप्त नींद लें, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढकें। ये सारे इनके लक्षण हैं और कुछ बचाव हैं। तो ऐसी जानकारी हर रोज़ आप सभी के बीच दी जा रही है सेहत से लाभ के अंतर्गत, तो इसका उपयोग आप सब अपने जीवन में थोड़ा अपनाएं और करें। यदि संभव हो तो दूसरों को इस जानकारी को साझा करें और उस व्यक्ति को अपने सूझबूझ के अनुसार सलाह दें और हो सके तो उसके साथ आप अपना समय भी देना चाहे तो दे सकते हैं ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख सके। और आगे हम सभी जानेंगे कि कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि इनमें से कोई लक्षण हो तो तुरंत अस्पताल जाने की कोशिश करें। सांस लेने में बहुत अधिक परेशानी हो या नाखून नीले पड़ना, लगातार तेज बुखार, भ्रम, अत्यधिक सुस्ती या बेहोशी, बच्चा बहुत तेज सांस ले रहा हो, दूध ना पी रहा हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए और इसका इलाज कराए। ये सारी इनकी गंभीर अवस्था है। तो ऐसी अवस्था आप सभी के बीच आती है तो इसमें थोड़ा सा भी कोताही ना बरतें, इसको आप गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर के पास जाएं और अपनी सूझबूझ के अनुसार अपने को और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। तो फिलहाल आज हम इतना ही चर्चा करेंगे, आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करेंगे और जो भी चर्चा हुई इस पे आप लोग अपना सूझबूझ के अनुसार उपयोग करेंगे अपने जीवन शैली में। तो फिलहाल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग और मैसेज करते हैं मनीष यादव। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा सॉन्ग बजवा दीजिए, तो बिल्कुल आपका भी सॉन्ग बजेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि का हाल बा सोनम बाबू, हमू जुड़ गई बानी, तो कल के एगो हमरो गीतवा सुना दी, तो बिल्कुल सुनाएं और एक ही करके फरमाइश पूरा करते ही बने। फिलहाल रावर भी स्वागत बे कार्यक्रम में और मैसेज के करतानी लवली गुप्ता के खरिया रक्सोल नेपाल बॉर्डर से आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने के फरमाइश हम पूरी करते हैं।
इस मिसेस को पहुंचाती हैं रोशनी और मिसेस करती हैं वाओ सुपर सॉन्ग। और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, दिल लोए लोए आजा आजा माही, डेडिकेट आपको एंड मेरी सिस्टर हैं सब प्रियांशी पूजा, कुछ रेडियो फ्रेंड्स हैं रानी रजनी संतरा कुशवाहा सविता चौहान आशा चौहान निशा सिंह निशा भारती सबीना अपी और शिल्पी सिस्टर इरफान भैया कमरान भैया हरकेश भैया गुलाम भैया समीर भैया दिलीप भैया वीरेंद्र भैया लवली भाभी एंड ऑल रेडियो फ्रेंड्स को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं रोशनी, आप भी अपने गानों के साथ इंजॉय करें रेडियो एम छम 94.4 FM।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।

0: टोलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
2: MGM 94 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे गाने की फरमाइश ले करेंगे और इस मैसेज को पहुंचाते हैं लीना उस्ताद दरभंगा भजीत पुरुषे, और गाने का बोल देते हैं शहंशाह फिल्म से, गाने का बोल। जाने दो मुझे, जाना है आज किसी से मुलाकात है मेरी, कौन है वो। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे कुछ मैसेज पहुंचा, लिखा गया है कि थैंक्स सॉन्ग प्ले करने के लिए, आपको धन्यवाद रेडियो एमजीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सर मेरा गाना बजा दीजिए। बिल्कुल आपके गाने बजाएंगे और फिलहाल आगे गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं।

कमल के शॉन्ग रेडियो एमसीएम 94.4 FM पे सुन रहे हैं। सोशल लिसनर्स फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँच रहे हैं, तो मैसेज को भी शामिल करना है, तो हम आगे बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं रेखा जी की। और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। लेकिन रेखा जी, आपसे पिछले सप्ताह गाने सुनाने के बाद कुछ हम बोले थे कि आप रेखा जी हैं, तो रेखा जी वाली ही गाने की फरमाइश करेंगे तो बेहतर रहेगा, अच्छा लगेगा, तो आप तो दूसरे गाने की फरमाइश कर दें। खैर, चलिए मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ में हम गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं।

फ्रीडम एमसीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं और समय जो है समाप्ति का हो ही चुका है, और समाप्ति से कुछ आगे हम बढ़ गए हैं। तो अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, काफ़ी प्यारा सॉन्ग मिसेज करती हैं रोशनी, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और मिसेज किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे गाना मेरा सुनाने के लिए, MD नौसार दरभंगा भजीतपुर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सर मेरा नाम उषा कुमारी, तो आज तो पूरी नहीं कर पा रहे, और श्याम कुमार जी आपकी भी फरमाइश पूरी नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे कई लोग हैं जो मैसेज किए हुए हैं और अपने गाने के इंतज़ार में जी, समय के अभाव के कारण हम फरमाइश को पूरा नहीं कर पा रहे। आगे हम गाने को प्ले करेंगे और इस गाने के फरमाइश करने वाले हैं खेसारी लाल की आवाज़ में। कोई भी गाना सुनना चाहते हैं सावन का, तो इन्हीं के फरमाइश पूरा करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बुलेट चौधरी तीन फेड़िया से जुड़े हुए हैं, तो आप इंजॉय करेंगे, साथ ही साथ हम सभी हैं, और कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होगी। तो जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, समय होते तो बिल्कुल हम फरमाइश पूरा करते हैं आप सभी की, हमें जितना आदेश है उतना ही तक रुक सकते हैं, आगे नहीं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें आप सब रेडियो रमछेम 90.4 FM, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लाकी ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955-97644।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527888291। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72776665। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे पास यहाँ मैसेज तो पहुँचे हुए हैं। इससे पहले मैं आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूँगी। तब तक आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं, तब तक ये सुनिए मेरी तरफ से प्यारा सा सॉन्ग।

अभी आप लोगों ने सुना मेरी तरफ से जालिमा सॉन्ग, और ज़रूर बताइएगा गाना आपको कैसा लगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि जी भारती मैम नमस्ते जी, उत्तम सोनी हरपुर से आ गए नहीं हम हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी नमस्ते, हम साधु राय छपरा से, मुझे भी एक गाना सुनना है, भोजपुरी गाना है राधे श्याम रसिया का आवाज़ में, खुलल केसिया के हवा दे दो। और लिख रहे हैं प्लीज़ गाना सुना दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम जी, मुकेश खरवार हिमाचल प्रदेश से, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और लिख रहे हैं कि मैंने कब तुमसे जमाने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब पे हंसी मांगी है, सामने तुझको बिठाकर तेरा दीदार करूं, जी में आता है जी भर के तुझे प्यार करूं। तो बहुत बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग मुकेश यादव ब्लेस्ड, एंड अभी अहमदाबाद गुजरात गुजरात से हैं, और उत्तम भाई को नमस्कार बोल दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ फरमाइश जो कि पहुँचा हुआ है राधे श्याम रसिया की आवाज़ में, और गाने के बोल हैं खुलल केसिया के हवा दे दो। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं राधे श्याम का ये सॉन्ग।

0: दूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

छोटे से ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप रेडियो रिमझिम के यूट्यूब फेसबुक ट्विटर पर गोपालगंज का हाल चाल सुन सकते हैं। और इसी के साथ बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और मैसेज करने वाले हैं जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं दिलीप शर्मा अबू धाबी से और लिख रहे हैं हाय, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय भारती दीदी, मैं श्याम सुंदर संग्रामपुर से, मुझे भी गाना सुनना है और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपका भी गाना प्ले किया जाएगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम, सरफरोज अली गोपालगंज से जुड़ चुके हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि वेरी गुड आफ्टरनून आपको और इन सभी दोस्तों को बोलिएगा, मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से अभी दुबई से सुन रहा हूं और नाइस सॉन्ग ओपनिंग गुड पहले। और लिख रहे हैं कि पहले दोस्त यार बात बता, आई एम गोइंग टू टॉयलेट का क्या मतलब है। और दूसरा दोस्त, मैं शौचालय जा रहा हूँ। पहला दोस्त, ऐसे कैसे जाएगा पहले इसका मतलब बता कर जा, जिससे भी पूछता हूँ सबको शौचालय लग जाता है। और बहुत ही खूबसूरत चुटकुले के साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहा है मैम ये जोक शामिल कीजिए प्लीज़, तो आपका जोक शामिल कर दिए हैं। और इसी के साथ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गाना चलाने के लिए धन्यवाद भारती जी, थैंक यू। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और इन्जॉय किए, ये मुझे अच्छा लगा। और इसी के साथ हमारे पास अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मिस, मैं भी आ गया हूं। और मैसेज करने वाले हैं विशाल जी जो कि देवरिया के रहने वाले हैं और लिख रहे हैं कि सॉन्ग नेम दिल का टेलीफोन फ्रॉम ड्रीम गर्ल। और लिख रहे हैं मेरा गाना नहीं बजेगा क्या, तो नहीं आपका भी गाना बजेगा। और चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग, तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

तो अभी हम लोग ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग जो कि मैसेज करने वाले थे विशाल जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि वाह सुपर गाना जालिमा, और नमस्ते भारती जी, मैं साकिब जम्मू कश्मीर से और बिहार का रहने वाला हूँ, और मेरा गाना है फिल्म नदिया के पार से कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हर हर महादेव, भारती जी आप कैसी हैं, और हमें उम्मीद है कि आप अच्छी होंगी, और हम भी शो से जुड़ चुकी हूँ, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा और हमें भी गाना सुनना है, हमारा भी गाना बजा दीजिएगा, गाने के बोल हैं जाने दो मुझे जाना है, और आज किसी से मुलाकात है मेरी, कौन है वो, हम बसंती देवी लामी चौर चौबरिया टोला से गाना बजा दीजिएगा, और ये गाना हम सभी को सुनाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो नमस्ते नमस्कार, क्या हाल चाल है भारती मैडम जी। तो मेरा हाल तो ठीक है, आप सब बताइए आप सब कैसे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि वेरी वेरी गुड आफ्टरनून और मोस्ट वेलकम भारती जी, आप आई बाहर आई, और मनीष शर्मा गोपालगंज से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि है, लिख रहे हैं कि मैं अभिषेक सिंह शशांक पुस्तक सदन तीन फेरिया बाजार कुशीनगर से जुड़ गया हूँ, और गाना सुनना है लॉलीपॉप लागे लू, प्लीज़ सॉन्ग बजा दीजिएगा और पवन सिंह का गाना बजाएं प्लीज़ मैम। और चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं पवन सिंह की आवाज़ में ये सॉन्ग लॉलीपॉप लागे लू।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए

बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हमारा भी मैसेज शामिल हो सकता है। और मैसेज करने वाले हैं श्रीकांत गाजीपुर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं, हेलो मैम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग जी, जिला भागलपुर कदवा मिलन चौक से। और मैसेज करने वाले हैं संतोष कुमार रॉय, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, गुड आफ्टरनून, मैं राकेश भारती बक्सर और हरेंद्र जी साथ में बैठे हैं और सॉन्ग सुन रहे हैं और अच्छा अच्छा सॉन्ग बजाइएगा। तो जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय सोनी बहन जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाहिया खास से सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोलिएगा, हम भी लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं शमशेर मुंबई से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून भारती दी का हालबा, गुड आफ्टरनून सोनी दी का हालबा, मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से हूँ और सोनी दी कब और सब बताइए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जो कि कुवैत से जौहर आलम जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कच्चे धागे मूवी प्यार नहीं करते जहान, प्यार नहीं करता जहान सारा कहता है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोग ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है। और बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल है मैम और नाइस सॉन्ग मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मेरा हाल तो ठीक है, आप सब अपना बताइए, आप सब कैसे हैं। और यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू भारती मैम गाना बजाने के लिए, थैंक यू, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है इस रॉयल अंसारी जो कि लिख रहे हैं, हेलो, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते मैम जी, दिलीप शर्मा अबू धाबी से, और अबू धाबी से सुन रहा बानी, हमारे राजेश भाई के तरफ से नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुकेश भैया नमस्ते, कैसे हैं आप। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि आपकी एक हंसी से हर दिल मुस्कुराता है, रेडियो पर आपका अंदाज सबको भाता है, आरजे भारती की आवाज़ का असर तो देखिए, अनजाने लोगों को भी अपना बना जाता है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं मनी शर्मा जी। और यहाँ एक और लाइन पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि गमों को भुलाकर थोड़ा मुस्कुरा लिया जाए और आरजे भारती का शो रेडियो पर लगा लिया जाए, दिन भर की थकान पर पल में मिट जाएंगी और चलो आज फिर बातों का मज़ा लिया जाए। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ एक गाने की लिंक पहुँची हुई है इनकी तरफ से और लिख रहे हैं कि मस्त झकास लाजवाब शो चल रहा है और गाने के बोल हैं याद सतावेला। और चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए आगे की तरफ बढ़ेंगे और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्दी आप गाना बजा दिए, दिल से धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत है और इन्जॉय किए गाने को, अच्छा लगा। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना सुना दीजिए भारती जी। तो वेट कीजिए थोड़ा, आपका भी गाना बजेगा। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय भारती जी, और मैसेज करने वाली हैं बसंती देवी जी, और लिख रही हैं कि जख्म जब मेरे सीने के भर जाएंगे, आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएंगे, ये मत पूछना कि किसने दर्द दिया है, वरना कुछ अपनों के चेहरे के रंग उतर जाएंगे। और इसी के साथ लिख रही है नाइस सॉन्ग तू का, जन्मे रे पगली तोर याद कितना सतायला, सुनना चाहती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ी हुई हैं। और इसी के साथ हमारे पास अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि इसराइल अंसारी 3 फेरिया बाजार के रहने वाले हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने के बोल हैं राजा जी के दिलवा, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग इसराइल अंसारी जी की तरफ से, हमारे राजा जी के दिलवा टूट जाए। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती जी, मैं मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं गोविंदा कुमार, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, गुड आफ्टरनून, मैम राकेश भारती बक्सर से, और मेरा भी फरमाइश चला सकती हैं क्या? तो बहुत बहुत स्वागत है। और आपके फरमाइश का टाइम अभी नहीं हुआ है, तो थोड़ा अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए करिश्मा कुमारी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है कि आप रेडियो की सुपरस्टार आरजे हैं और आपकी आवाज़ बहुत ही मस्त लाजवाब है, इसके लिए धन्यवाद। तो और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं, हेलो हाय भारती दी, मैं श्याम सुंदर संग्रामपुर से, मुझे भी गाना सुनना है और प्लीज़ भारती दी गाना बजा दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, आपका भी गाना बजाया जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला फरमाइश जो कि पहुँचा हुआ है श्री कृष्णा जी की तरफ से, तो लिख रहे हैं कि मैसेज शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक गाना सुना दीजिएगा, नज़रों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया है। तो चलिए बिना देरी किए ये खूबसूरत सा गाना प्ले करते हैं और सभी के साथ एंजॉय करते हैं इस गाने को।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रुपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज
6: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो नमस्ते मैम, मेरा नाम बिट्टू प्रजापति पिपरा सिवान से है और मैं गाना सुनना चाहता हूँ, और गाना गाना सुनना है पवन सिंह की आवाज़ में, तो लिख रहे हैं भेज दी मैम। तो जी बिल्कुल भेज दीजिए, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो भारती जी कैसी हैं आप, और मैं हूँ मैं भी शो से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं भी कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, और मैं सागर आलम अंसारी फ्रॉम तेजपुर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी के रहने वाले हैं और लिख रहे हैं कि जीते हैं तेरा नाम लेकर, मरने के बाद क्या अंजाम होगा, कफन उठा के देख लेना मेरा, होठों पे तेरा नाम होगा। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं मेरा भी सॉन्ग प्ले हो सकता है क्या भारती जी, तो आपके गाने का टाइम अभी नहीं हुआ है, शायद कल ही आपका गाना प्ले किए थे। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि मौसम का क्या हाल है, आपके तबीयत ठीक है ना। तो जी मौसम का तो हाल यहाँ अभी ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है कि और यहाँ उत्तम सोनी जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है जो लिख रहे हैं सुकून चाहिए तो अनजान बने रहो, और सच जानने की कोशिश करोगे तो मानसिक शांति गवा दोगे, और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है इंस्टाग्राम की तरफ से, और इंस्टाग्राम पे मैसेज करने वाले हैं जो लिख रहे हैं हेलो भारती मैडम जी, मुझे गाना सुनना है, और गाने के बोल हैं प्यार में लोगवा बीमार कहे होला, और गाना सुना दीजिएगा प्लीज़, और मैं वेट कर रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं यह खूबसूरत सा सॉन्ग सभी के साथ।

0: अभी हम लोग ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, प्यार में लोग बीमार काहे होला। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: थैंक यू मैम।
0: नाम बता दीजिएगा अपना।
1: नूर बात कर रही हूँ हसना से।
0: जी क्या हाल चाल है आपका?
1: मेरा बढ़िया है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। और कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: एक सॉन्ग है, मैं एन इजी टू
0: पूरा। हेलो,
1: एक सॉन्ग है ना, मैं एन इजी टू पूरा सोच रही हूँ, मैं सीन इजी टू तेरी नींद उठ जाए।
0: एक बार और बता दीजिए, साफ सुनाई नहीं दिया मुझे।
1: मैं एन लिखूं तू सोच मुझे, मैं सीन लिखूं तेरी नींद उड़ जाए।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: हाँ, रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को और आपको भी।
0: और चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, एंजॉय कीजिए सभी के साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: थैंक यू,
0: वेलकम।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403। नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो गुड आफ्टरनून भारती जी, राजसो लाल सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज कुछ लाइन शामिल किए हैं जो कि लिख रहे हैं कि जन्नत इश्क में हर बात अजीब होती है, और किसी को आशिकी तो किसी को शायरी नसीब होती है। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मोतिहारी से एमडी मीनू एक गाना सुना दीजिएगा मैडम जी, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। और मोतिहारी से एमडी मैसेज करने वाले, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि हमारा भी गाना बजा दीजिएगा, और गाने के बोल हैं जाने दो मुझे, जाना है वादा किया है वो निभाना है। और मैसेज करने वाले हैं कि

0: अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, जाने दो जाने दो मुझे जाना है। और बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी गाना बजाने के लिए। मैं गाना सुन रही हूँ तो गाना आपने एंजॉय किया और ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ हमारे पास अगली फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुँची हुई है, तो चलिए बिना देरी किए कॉल लेते हैं और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम,
1: कैसी हैं मैम आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: हम भी ठीक है।
0: नाम बता।
1: खाना हो गया?
0: हाँ हाँ खाना हो गया है।
1: रिश्मा
0: जी जी, और गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: गाना आज आपने पसंद का गाना कोई सुनवा दीजिए कौन सिंह के।
0: नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि रोज़ तो मैं अपने पसंद से हमेशा गाना सुनाती हूँ। आप लोग कॉल किए हैं तो इसका तो फ़ायदा उठाना चाहिए ना। आपको बताइए, आप बताइए कौन सा गाना सुनेंगी?
1: आप नहीं बजाइएगा?
0: नहीं नहीं, मैं अपने पसंद से तो डेली बजाती ही हूँ, सुनती ही हैं, फर्स्ट सॉन्ग मेरा ही होता है।
1: हाँ, लेकिन बजाते हैं आप गाना
0: जी, इसके लिए शुक्रिया। आप बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगी? और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: आप सुन लीजिएगा, जितना लोग मैसेज कर रहे हैं सब सुन लेगा, मैसेज बताइएगा सब कोई पैसा लाया जाना।
0: जी जी बिल्कुल, चलिए फिर गाना प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपाल।

0: रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 714 86 164।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98587 88291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72776 65 96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि

और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय, हम भी जुड़ गए हैं, कैसे हैं आप, और सॉन्ग सुनने का मौका मिलेगा क्या। और यहाँ लिख रहे हैं कि एक जानकारी तो अपने के ही बा, काहे से अपने यहाँ सब हम ये सब के फेर में ना रहने और जानकारी देना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो क्लिक रहे हैं साजिद आलम बेंगलोर से, कर्नाटक से जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मोतिहारी से एमडी मीनू, मैडम जी मेरे से गुस्सा है क्या, और आप मैसेज पढ़ लेती हैं और गाना नहीं चलाती हैं। तो ऐसा नहीं है, मैसेज तो देखे हैं और आपके गाने की टाइमिंग अभी नहीं हुई है, इसीलिए मैं नहीं बजा रही हूं। और यहां एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि मेरा गाना सुना दीजिएगा भारती जी, और अभी थोड़ा वेट कीजिए, अभी आपको नहीं सुना सकती। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मोतिहारी से पुट्टू भाई, मैडम जी मेरा बेटी का शादी का सालगिरह है मंडे को, और आपको आपके बढ़िया से और आपके माध्यम से शुभकामना देना है, और रुखसार बेटी के लिए है, और गाना सुनना है कि जल्दी जल्दी चलो रे कहाँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी बेटी को रेडियो रिमझिम के परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और इंजॉय करेंगे ये प्यारा सा सॉन्ग सभी के साथ।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और गाने के बोल थे जल्दी जल्दी चल रही कहाँ। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि सिस्टर मैं दीनानाथ, मैं दही भत्ता से हूँ और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, मुझे भी सॉन्ग सुनना है। और गाने के बोल है रब ने भी मुझ पर सितम क्या किया है और प्लीज़ सुना दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 29 94 921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AM पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजम 90.4 FM में।
6: थैंक यू दी।
5: नाम बता दीजिएगा अपना।
6: नेहा कुमारी।
5: और कहाँ से हैं आप?
6: से।
5: अच्छा जी, और गाना कौन सा सुनना है आपको?
6: अरिया की कुड़िया लगाना है ना, वो ना सुनना है। आप कैसी हैं?
5: मैं ठीक हूँ।
6: खाना हो गया?
5: हाँ, अभी तो नहीं हुआ है, बस दोपहर ब्रेक, दोपहर न्यूज और ब्रेक के बाद।
6: अच्छा, आप ठीक है ना?
5: गाना कौन सा बोली थी? हरिहर टिकुलिया। और गाना किसी को डेडिकेट है?
6: सबसे पहले आपको और सुनल सभी श्रोताओं को।
5: चलिए फिर, गाना आपका प्ले कर दिए हैं, सुनते रहिए रेडियो रमजम 90.4 FM।
6: थैंक यू,
5: वेलकम।

तो अभी हम लोगों ने गाना सुना हरिहर टिकुलिया, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अकाल मौत वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल भी उसका क्या करे बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। तो बात तो सही है। और इसी के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिलीप राम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मेरा नाम बिट्टू प्रजापति पिपरा सिवान से हूं और मुझे गाना सुनना है। और गाने की लिंक यहां पहुंची हुई है जो कि गाने के बोल हैं चल पिपरवा के तरवा, और गाना सुनना चाहते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। तो चलिए प्ले करते हैं गाने को और इंजॉय करते हैं सभी के साथ।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे।
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रमजिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए हम बढ़ेंगे मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि शामिल कर दीजिएगा मैसेज, मेरा भी तो आपका मैसेज शामिल किए थे और आपने सुना नहीं, चलिए फिर से एक बार कर देते हैं। मैं भी जुड़ गया हूँ मैम, साउथ अफ्रीका से सुन रहा हूँ। और आप कैसी हो? सोनू कुमार चौरसिया रामपुर खरैया कुचायकोट गोपालगंज से। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो चलिए फिर एक बार आपकी हाजिरी लग चुकी है, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुँची है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। जी क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक
0: हाँ, राउर आवाज कट कट के आवा था। कौन सा गाना सुने बता दें?
1: लाली लाली उठा से लालैया हो मेरा सा चले ला।
0: और गाना क्यों के सुना हूं के बा? हेलो
1: दादी,
0: गाना क्यों के सुना हूं के बा? जी जी चली रहा, और गाना प्ले कर दे, सुनत रही रेडियो रमजिम 90.4 FM।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

तो अभी हम लोगों ने सुना रामा जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, लाल लाल होठवा से लाल लाल होठवा ललैया। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दिनेश जी, हरिहर टिकुली रहल हा। और दीपक चौहान मऊ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि प्यार क्या होता है हम नहीं जानते, अपनी ही जिंदगी को हम अपना नहीं मानते, गम इतना मिला है कि अब एहसास नहीं होता है, प्यार कोई करे हमसे तो हमें विश्वास नहीं होता है। और खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, भारती जी नमस्कार, चला ना पिपरवा के तरवा, ये गाना सही था, बाकी आपके साथ जुड़ा हूँ दिल प्रांत दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि दिलीप शर्मा की मेरा सॉन्ग बजा दीजिएगा, और गाने के बोल हैं सिकवा नहीं किसी से। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेक स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतुहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से 1 से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
5: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंदुझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना गोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक दो दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9939365923।
11: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
11: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
13: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
14: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
15: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
16: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403, 6200424403।
17: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
18: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
17: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
18: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
17: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
19: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमरजैट पर।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
4: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या।

0: गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। ऑलराइट।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978855 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा, मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
0: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करे 87-894-18-744।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
13: All right.

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
5: हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
8: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
10: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
10: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97,714,86,164।
10: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
9: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
10: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
9: अभी कॉल कीजिए 90,066,7,231।
10: कॉल कीजिए 90,066,7,231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878291। जी हाँ, 9852788291। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी कैसी हैं आप, दुर्गेश आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं, और नमस्ते मैम जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना कब बजेगा दी। तो आपका गाना बज चुका है, तो इसीलिए मैं आपके गाने को नहीं बजा सकती। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला फरमाइश पहुँचा हुआ है निजामुद्दीन जी की तरफ से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं मेरा सॉन्ग बस बज सकता है क्या, तो जी बिल्कुल आपके गाने की टाइमिंग हो चुकी है और आपका गाना बज सकता है। और गाने के बोल हैं, तेरे शादी पे निकला जनाजा। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ ये गाना।

तो अभी हम लोगों ने सुना प्यारा सा सॉन्ग तेरी शादी पे निकला जनाजा देख ले, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो आपकी भी हाजिरी लगा रही हूँ, पर आपका नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है। और अपना नाम मैं बार बार कहती हूँ कि ज़रूर मेंशन करें ताकि मुझे पता चले कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं डॉक्टर अमोद कुशवाहा, ग्राम जय छपरा, जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और मुझे गाना सुनना है और सुनवा दीजिएगा। और गाने के बोल हैं चन्ना मेरेया, और ये दिल है मुश्किल मूवी का गाना है जो कि सुनना है, और लिख रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ गाना सुनवा दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ गाने को।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852781 जी हाँ 9852781291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696 जी हाँ 7277166596। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि हाँ जी यूपी 54 से मुझे लगा सोनी मैम है और कोई नहीं मैम अब से आदत पड़ जाएगी नाम बताने की। तो चलिए कोई बात नहीं बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय नमस्ते दिव्या जी संजय कुमार प्रजापति पूर्वी चंपारण से गाना सुनना है परदेशियों से पूछ पूछ रोऊं मेरा माही नहीं आया रे। तो बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम मेरा गाना बजाने के लिए। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और संजय कुमार जी की फरमाइश जो कि परदेशियों से पूछ पूछ रो मेरा माही नहीं आया रे। तो गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: तो अभी हम लोग ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, सॉरी जी आपका नाम याद नहीं था जी। तो मेरा नाम भारती है, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि नमस्कार सोनी मैडम जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, प्रोग्राम सुनकर हमने भी मैसेज कर दिया है। और मैसेज करने वाले हैं गुरु नानक पूरा बठिंडा पंजाब से, किशोर सबलिनिया, सावित्री सबलिनिया, सुमन सबलिनिया बेटी अंशु रानी के साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मैडम जी हमारा भी हाजिर लगा देना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्ते
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: मैम गाना सुनना।
0: नाम बता दीजिए अपना। और कहाँ से हैं आप? अच्छा जी, और गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: भरत तिवारी का दूसरा सॉन्ग बजाइएगा।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: आपको और पूरे रेडियो रिमझिम परिवार।
0: तो चलिए गाना आपका प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए सभी के साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पूरा करना पड़ेगा।

0: उसके बाद
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो? गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-651 या 97-097-06-575।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि आप रेडियो रिमझिम के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल सुन सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो के लिए कॉल के माध्यम से पहुँचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 FM में।

नाम बता दीजिएगा अपना। और कौन सा गाना सुनना है आपको? गाने के बोल बता दीजिए। आप कॉल की हैं तो गाना बता देती तो और अच्छा होता। अभी तो बजा था। आप दूसरा सॉन्ग बता दीजिए, फिर कभी सुन लीजिएगा। तो चलिए पवन सॉन्ग जी का गाना प्ले कर रहे हैं रेडियो रंजीत 90.4 FM पे, एंजॉय कीजिए।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग पवन सिंह की आवाज़ में अखिया में नशाबा, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती मैम, मैं भी जुड़ गया हूँ और मेरा नाम सोनालाल सा अरे राज श्रीनी मलाही, और मेरा भी एक गाना बजा दीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, शायद मैंने आपका गाना कल ही बजाया था तो आज मैं नहीं बजा सकती, और आप अपनी बारी का इंतज़ार कीजिएगा, एक हफ्ते के बाद फिर से बजेगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती जी, मैं साकिब जम्मू एंड कश्मीर से, और मैं रहने वाला हूँ बिहार का, और प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिएगा। और गाने के बोल हैं नदिया के पार कौन, और मूवी है नदिया के पार, और गाने के बोल हैं कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही है कि मेरा नाम रागनी है और मुझे गाना सुनना है, और नीलकमल जी की आवाज़ में बेवफाई सॉन्ग है। गाना प्ले करने से पहले हमारे पास यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल के माध्यम से। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: बहुत दिन से कॉल लगा रहा, नहीं उठा रही है।
0: अच्छा जी, नाम बता दीजिएगा अपना।
1: मोहम्मद भुट्टू।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: बथुआ बाजार से।
0: अच्छा जी, और कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, आप सुनाइए।
0: हम भी ठीक हैं। और गाना कौन सा सुनना है आपको? हाँ हाँ
1: जी, गाना सुनना था एक।
0: बता दीजिए।
1: कोई पसंद करना मरे मेरे दीवानी को।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: सबसे पहले आपको, बाद में सबको।
0: ओके, चलिए आपका गाने को प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए सभी के साथ अपने गानों का रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। वेलकम।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। और इसी के साथ हमारे पास रागिनी जी की फरमाइश पहुंची हुई है, जो कि नीलकमल जी की आवाज़ में गाना सुनना चाहती है और लिख रहे हैं कि गाना सुनना है और गाने के बोल है बदनाम भैनी तोरे नाम से। तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527888291 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277165696। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे पास बाय बाय के सारे मैसेजेज पहुँच चुके हैं, और आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी से विदा लूंगी। और सुनते रहिए प्यारा सा सॉन्ग रागनी जी की तरफ से।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403, 6200424403।
8: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
9: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
8: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
9: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
8: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

दुनिया माया के बाजार बा, यहाँ केहू के केहू नहीं खे। भाई बहन बाप माई सगे संबंधी झूठों के एगो रिश्ता नाता बा कहे खातिर, सभे आइल अकेले बा और जाई अकेले।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। अगर आपको हो रहा है घुटने हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम,
6: सुनो दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम।
5: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड, बस स्टैंड के साथ।

0: में गोपालगंज
1: संपर्क करें 9939365923।
2: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211-87952। नियम और शर्तें लागू।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03, 6200-42-34-03।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।
10: रेडियो रिमझिम,
9: सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
0: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
6: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम।
6: सुनो दिल से।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम, हर हर महादेव।
3: Pick it up, pick it up.
4: Hello.
3: Now pick your phone up.
4: Hello.
3: Pick it up, pick it up.
4: Hello.
3: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया है हेलो माय चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी फरमाइश। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: कौन बोल रहा है?
1: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
2: मैं, आप कैसे हो?
1: जी मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए।
2: मैं भी बढ़िया हूँ। मैं एक गाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ।
1: जी सारी
2: गाना रिक्वेस्ट है जीना सिर्फ मेरे लिए टाइटल सॉन्ग।
1: ओके,
2: तो मैंने पूछना था ये रिकॉर्डिंग कब होती है, ये रिकॉर्डिंग कब मैं सुन सकता हूँ?
1: ये आपका कल बजेगा?
2: कल सुन सकता हूँ, क्या टाइम?
1: आज भी बज सकता है।
2: आज 5 से 7 बजे प्रोग्राम लगते हैं? कितने दिन लगते हैं ये प्रोग्राम?
1: 5 से 7 बजे।
2: ठीक है, एक दफा रिपीट लगा ये रिकॉर्डिंग रिपीट।
1: हाँ हाँ
2: ठीक है, तो प्लीज मुझे वो गाना लगा लेना।
1: जी वैसे आपका नाम?
2: मेरा नाम है मोहम्मद वकार।
1: और कहाँ से?
2: क्या
1: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: गाना बोला है जीना सिर्फ मेरे लिए।
1: ठीक है, और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मेरा नाम है मोहम्मद वकार।
1: जी, और मतलब किस जगह से बोल रहे हैं आप?
2: मैं इधर से बोल रहा हूँ, स्कॉटलैंड ग्लासगो सिटी से बोल रहा हूँ।
1: ओके,
2: तो मैं आपका प्रोग्राम बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, तो प्लीज गाना लगा लेना मेरे लिए। ठीक है
1: जी।
2: ओके, नमस्ते।
1: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: आप कौन बोल रही? भारती का कौन बोल रही?
1: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
0: मनोरमा
1: जी
0: बढ़िया है, कैसी हो आप?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। नाम बता दीजिए अपना।
0: मेरा नाम है गोपाल ओझा, ग्राम ककवासा, जिला गुना से।
1: कहाँ से?
0: जिला गुना ककवासा।
1: ये कहाँ पड़ता है?
0: जी अपने गुना पड़ता है भोपाल के पास में। और आपसे पहली बार बात हो रही?
1: जी जी।
0: और
1: वैसे अपना नाम क्या बताया है?
0: नाम बताया गोपाल ओझा जी। हमारा गाना नहीं आता है, हमने कई बार फोन लगा लिया, सोमवार को लगाया था, बुधवार को लगाया, गाना नहीं आता है हमारा।
1: नहीं नहीं, जब आप इसमें हेलो मैच वैस में जब कॉल रिकॉर्ड कराते हैं तो जरूर बजता होगा।
0: पता नहीं, हमने तो सुन लिया, आता नहीं है 5 बजे से 7 बजे तक शाम के।
1: अच्छा तो क्या ना, बहुत सारे कॉल्स रहते हैं तो मतलब पहले उसे बजा जाता है, कहीं आपका आज बजे?
0: पता नहीं है, अरे जी ऐसा कर दीजिए आप तो, मतलब उस दिन कॉल लगती है तो उस दिन शाम को 5 बजे आता है कॉल, वो वाली पहला।
1: अच्छा तो भारती जी रिकॉर्डिंग कर रही थी उस टाइम?
0: भारती जी बुधवार को थी, भारती जी जब लगाया था मैंने।
1: अच्छा तो मतलब बज चुका होगा जब आप फरमाइश किए होंगे।
0: नहीं आया, हमारे दोस्तों को आया था, मेरा नहीं आया।
1: अच्छा
0: कल आना होती, कल तो सुना था, कल नहीं निकला।
1: अच्छा तो कहीं आज बजेगा, बहुत सारे कॉल्स रहते हैं तो दिक्कत होता है, एक साथ तो सब नहीं बज सकता।
0: तो इसीलिए लगाया गाने सुनने के लिए, तो मैं सोमवार को लगा दूंगा, बुधवार को लगाया था, सोमवार को लगाया और आज शुक्रवार को लगा दिया।
1: तो मतलब दोनों दिन नहीं बजा आपका?
0: नहीं आया दोनों दिन। नहीं,
1: उन्हीं से मिस्टेकिंग हुई होगी। मतलब फरमाइश बता दीजिए, हम प्ले कर देंगे।
0: फरमाइश वो राजा फिल्म को सुनवा दीजिए, फूल मांगू ना बाहर मांगू मैं तो सनम तेरा प्यार।
1: और गाना डेडिकेट भी है?
0: डेडिकेट है ना गाना, हमारे सुनील साहु जी है, ज्योति साहु जी है, जीतेंद्र धाकड़ जी है, और आपके लिए भी है डेडिकेट गाना।
1: ओके तो गाना प्ले करते हैं आपका।
0: कर दीजिए,
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
3: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
8: Jab phone pe hindi banti hai to kehte hain hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
9: Break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो मैम
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: सलाम अलैकुम।
9: वालेकुम अस्सलाम।
10: हम स्कूटर बोल रहे हैं सिकंदरपुर
9: जी, क्या हालचाल है आपका?
10: अच्छा है मैम, आपने सुनाइए कैसे हैं?
9: जी मेरा भी बढ़िया। सब क्या हो रहा है?
10: यही सब, दुकान अपन चलाते हैं।
9: किस चीज का दुकान है आपका?
10: छोटा मोटा किराना है।
9: चलिए बढ़िया।
10: मैम गाना सुना है हमको
9: जी, बता दीजिए।
10: मेरे साथी जीवन साथी, कोई गाना सुना दीजिए।
9: किस मूवी का सॉन्ग है ये?
10: पुराना गाना है, मेरे साथी मेरे जीवन साथी, मेरे साथ निभाना, ऐसा ही है।
9: ओके, और गाना डेडिकेट भी है?
10: जी मैम, सबसे पहले आपको और जितने रेडियो रिमझिम सुन रहे थे।
9: वालेकुम अस्सलाम, रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार भारतीय।
1: नमस्कार,
0: कैसे हैं
1: जी? बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, कौन बोल रहा हूँ समझ गए ना?
1: नहीं
0: जी, मैं सुरेश बोल रहा हूँ, पंजाब जिला देवघर, झारखंड से।
1: कहाँ से?
0: झारखंड से।
1: झारखंड से, अच्छा। और वैसे आपका नाम?
0: जी आज सुना दीजिए मैम, राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गाना।
1: कोई भी?
0: नहीं कोई भी नहीं, जिसके बोल में बता रहा हूँ, उसने पहाड़ों का और साहिबा, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में।
1: और गाना किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: सबसे पहले मैम आपको, आपके रेडियो रिमझिम को, पूरे टीम को, जितने भी रेडियो रिमझिम के लिसनर है सबको, और हमारे साथी सर को भी सुनाना चाहता हूँ। उसमें मदन कौल, पूरन कौल, किष्णु कौल, जुगल कौल, कमली कौल, राजकुमारी, रोहित कुमार सिंह, राजीव रोशन, विष्णु प्रसाद यादव, सुष्मिता प्रसाद यादव, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: ओके, वैसे क्या करते हैं आप?
0: जी मैं टीचिंग का काम करता हूँ। मैं
1: किस चीज का?
0: पढ़ाता हूँ मैं।
1: अच्छा।
0: टीचिंग का काम करता
1: हूँ। अभी जहाँ आप हैं वहीं पे?
0: जी जी ठीक है मैम, सब गाना सुना दीजिएगा।
1: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: जी मैम,
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ओके मैम।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादा पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर X दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
10: पिक इट अप, पिक इट अप,
11: हेलो,
10: नाउ पिक योर फोन अप,
11: हेलो,
10: पिक इट अप, पिक इट अप,
11: हेलो,
10: नाउ पिक योर फोन अप,
11: हेलो।
12: जब फोन
13: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
14: हाँ जी, भक्ति जी।
15: नहीं, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
14: अच्छा मनोरमा जी, हम राकेश भारती बोल रहे हैं।
15: कहाँ से?
14: बक्सर।
15: अच्छा, और अपना नाम क्या बताएं?
14: राकेश भारती।
15: ओके, अब क्या हाल चाल है आपका?
14: सब बढ़िया है, हमारा तो 14 साल हो गया ना रेडियो रिमझिम में, 14 साल हो गया सुनते हुए।
15: अच्छा जी, बढ़िया।
14: सब स्टाफ पहचानते हैं, हमको नाम नहीं बताना पड़ता।
15: मैं ना मतलब बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उतना लोगों को नहीं पहचान रही हूँ मैं।
14: हाँ सोनी जी भी पहचान गई है, नया आई है वो भी पहचान गई है, भाभी जी का सोनी जी का आना ही नहीं है।
15: सोनी जी आएंगी अभी छुट्टी पे हैं वो।
14: दिव्या जी भी थी तो भी पहचानते थे। और तो बताइए अपना
15: सब बढ़िया।
14: चलिए आप भी देर देर सीख जाइएगा।
15: जी
14: जी व्हाट्सएप मैसेज वाला में रखे है, आप भी एक आध दिन से कर रहे हैं थोड़ा बहुत
15: कोशिश तो।
14: हाँ नहीं कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा, कहीं नहीं होगा। और सोनी जी का बताओ, वही हाल खा ठीक हो गए हैं?
15: तो सोनी जी बहुत दिन से रह रही है ना, तो उनको सुनियन से इन सब के बारे में
14: उनको सिखाई दिव्या जी। अब सोनी जी सिखा रही है भाषी जी को और आपको ना। हाँ जो आएगा भाई वही ना सिखाएगा।
15: धीरे धीरे सीख जाएंगे ना।
14: आप लोग का तो नाश्ता पानी हो गया होगा?
15: जी जी। और आपका?
14: हमको भी हो गया अभी 10 मिनट पहले, अभी नाश्ता किया, फोन लगा रहे थे।
15: अच्छा
14: फोन एक आध बार नहीं लगा लेकिन अभी लग गया।
15: क्या है ना बहुत सारे कॉल आते रहते हैं तो।
14: हाँ हाँ वही मैंने लिस्टनर को ज्यादा हो गया है ना।
15: हाँ इसीलिए
14: सोनी जी आज भोजपुरी एक्सप्रेस कौन चलाएगा? भारती जी गया
15: चलिए
14: तो हमको गाना सुना दीजिएगा, दिल का रिश्ता का। दिल का रिश्ता का गाना है ना जो दैया दैया दैया है वही।
15: ओके और ये गाना किसी को सुनाना भी है?
14: जी हाँ मैं हरिंदर जी है, आप है पूरा रेडियो रिंगिंग कार्ड फैमिली है। हाँ वही तो अभी रहना वाला फुल रिकॉर्डिंग चल रहा है रिपीट।
15: हाँ अभी तो वही चल रहा है।
14: आज 5 बजे बजेगा ना रिकॉल हो जाएगा?
15: आज भी बजेगा और कॉल भी बजेगा। ओके आना बहुत सारे कॉल्स हैं तो
14: एक दिन में तो पूरा होगा नहीं
15: तो इसीलिए कल भी और बजेगा।
14: मैं कॉल का है
15: नहीं अभी तो जो हो रहा है वो पूरा कोशिश रहेगा कि और आज ही चले। तो गाना प्ले करते हैं।
14: बहुत बहुत धन्यवाद
15: आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रेंज 90.4 FM कॉल करने के लिए।

0: हेलो मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी आज हमको गाना सुनना है, ये दुनिया महफिल मेरे काम के नहीं। मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरा से।
1: अच्छा, क्या हाल चाल है आपका?
0: हाल चाल तो ठीक है ठाक है, थोड़ा टेंशन है।
1: क्या हो गया?
0: हो गया इसीलिए मैं गाना सुनना चाहता हूँ, ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं।
1: अच्छा,
0: इसीलिए गाना सुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए गाना का रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। 11:30 बजे तक तो आपका कॉल जो है नहीं लग रहा था, इतने कॉलर थे कि हमारा मोबाइल का नंबर घुस ही नहीं रहा था।
1: अब क्या करिएगा, मतलब कॉल अभी बात ही होता है, जैसे करते है वैसे आ जाता है।
0: तो अब सोचते हैं कि तो अभी थोड़ा ट्राई करें, तो अभी 2 बार ट्राई किए हैं, पटक लग गया।
1: चलिए लग गया ना,
0: 15 मिनट बाद लग गया है। तो मैडम यही गाना सुना दीजिएगा।
1: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: अरे जितने रेडियो सुनने वाले हैं रिमझिम के लिए खासकर, आते जो को ये सुनवाएंगे, सोनी जी को भी सुनवाएंगे, सोनू जी को भी सुनवाएंगे, सोनू जी इतने लोग हैं सुनने वाले, किसी को सुनाइए मैडम। और सब खैरियत है ना आपका?
1: जी जी सब बढ़िया,
0: घर में परिवार और सब ठीक है? चलिए ऊपर वाला का लाख लाख शुक्र है, सब बढ़िया तो हो रहा है। तो ये सुनवा दीजिएगा मैडम, ये दुनिया महफिल मेरे काम के नहीं गाना।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
0: जी जी मैडम,
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: जी थैंक यू।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.
7: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: नमस्ते मैम।
9: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: जी मैडम, कैसी है मैम?
9: जी बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
8: हम लोग भी ठीक है
9: जी। तब क्या हो रहा है?
8: कॉल लगा रहे हैं के लगवा नहीं करेगा।
9: अच्छा जी, अब लग गया ना?
8: लग गया।
9: नाम बता दीजिए अपना।
8: सोहिला देवी।
9: कहाँ से बोल रही हैं?
8: 4910 से।
9: कहाँ से?
8: 4910 से।
9: अच्छा, तो बताइए क्या हो रहा है?
8: आपकी कथा नंबर बढ़ा रहे हैं, कभी कुछ लग जाए नहीं कर रहे, क्या लगवा नहीं करेगा, लग गया।
9: अच्छा चलिए, लग गया, बढ़िया। तो बता दीजिए फरमाइश।
8: फरमाइश सावन आया, बादल छाए, नहीं गाना है। इनको दबा दीजिए।
9: बिल्कुल।
8: खाना उन्हें खाए की नहीं खाए?
9: जी जी खाली है। और आप?
8: हम लोग तो खाई लिए हैं, बैठे हैं आपको फोन के इंतजार में।
9: अच्छा जी, चलिए आपका फोन लग गया ना, और कैसा है?
8: जी मैडम लग गया।
9: तब मौसम कैसा है उधर का?
8: मौसम इधर का ठीक है, बड़ा गाजू पूजा हुआ है, कभी दिखता है कभी बादल छाता है, सावन का मौसम है इसलिए। चलिए ठीक है।
9: ठीक है, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
8: ब्यादिन है, जीभा, लड़की है संजना।
9: अच्छा
8: ठीक है,
9: चलिए बढ़िया। तो आपका गाना प्ले करें?
8: जी सर।
9: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
8: नमस्ते मैडम।
9: नमस्ते।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजीम 90.4 FM में। नमस्ते जी, बढ़िया है। आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
1: मैं अच्छा भी लगे।
0: चलिए, आप लग गया ना।
1: आप कौन बोल रहे हैं? मैं दरबीर
0: जी, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
1: समाचार बताइए, कैसा है?
0: सब बढ़िया है। आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
1: अच्छा है मेरा भी।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया, अच्छे की बात है। वैसे आपका नाम?
1: जी,
0: आपका नाम?
1: मेरा नाम नेहा, भोरे से बोल रही हूँ।
0: कहाँ से बोल रही हैं?
1: भोरे से।
0: भोरे
1: जी।
0: अच्छा, तब क्या हो रहा है?
1: पापा फोन लगा रहे हैं, इंतजार करते करते 12 बजे
0: हो गया ना। बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं तो मुश्किल हो जाता है।
1: बोलबम के जाना चलेगा?
0: बिल्कुल,
1: बजा दीजिए, चल देता हूँ। अचीव कर रहा हूँ।
0: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
1: गाना सबसे पहले आप जितना रेडियो रेडियो में आप सब सुनता है, जितना सोता दोस्त सुनता है उसके साथ।
0: ओके, वैसे खाना वाना हो गया?
1: जी मैडम जी, नाश्ता हो गया, खाना हुआ।
0: तो मौसम कैसा है उधर का?
1: मौसम नहीं है, धूप है, कभी छाव है, छावा बहुत है।
0: बारिश वरिश तो नहीं हो रहा है ना?
1: नहीं, बारिश फुहारा ठीक हो जाता है, कभी जाता है पूरा जम के बारिश नहीं होता।
0: अब सावन आ गया है, कहीं शायद होगा।
1: हाँ सावन होगा। तीन आने मैडम जी ज्वाइन करे, सोनी मैडम तो कभी आती है कभी नहीं आती है।
0: सोनी मैम अभी छुट्टी पे है ना, इसीलिए
1: आप दोनों में चला रहे हैं। चलाइए लोग, हम लोग गाना सुनना है। देखा
0: आप लोग के दुआ प्यार से हम लोग भी करते हैं लोग।
1: नहीं एक अंदर रहता है तो कल बंद हो जाता है ना, कितना कितना दिन बंद हो जाता है, तो नहीं चलता है।
0: नहीं अब तो बंद नहीं होता है क्योंकि अब
1: नहीं बंद, एक महीना पहले 15-20 दिन बंद हो गया।
0: अच्छा जी।
1: दूसरा शो खाली चलता है।
0: अच्छा,
1: 12 बजे से शो चलता है वही भी बंद हो गया, वो नहीं चलता।
0: कौन सा?
1: जो 12 बजे से चलता है
0: वो भी चल रहा है अभी।
1: अभी तो चलता है, तो गाना हम सुनते हैं 5 बजे भोर से लेकर 10 बजे रात तक मेरा चलता है, हम सुनते रहते हैं।
0: अच्छा, रेडियो रेडियम कैसे सुनती हैं आप?
1: रेडियो से।
0: अच्छा, रेडियो से सुनती हैं
1: जी।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया।
1: सारा प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो।
0: कैसा लगता है आपको?
1: अच्छा लगता है।
0: चलिए बढ़िया।
1: बहुत ही ढेर दिन से सुनते हैं।
0: फिर भी मतलब कितना दिन से?
1: पहले सुनती मैडम रही तब से सुनती।
0: अच्छा जी।
1: तो रिकॉर्डिंग नहीं उतना करते हैं, तो दिव्या मैडम आए तब से रिकॉर्डिंग कर रहे।
0: अच्छा, चलिए आप शो से जुड़ती हैं ना आप?
1: जी अब शो से बराबर जुड़ती हूँ।
0: चलिए बढ़िया, ठीक है तो गाना प्ले करते हैं।
1: जी मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते। रेडियो रेंजिंग 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
6: नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 91555485507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
7: बोलबम हर हर महादेव।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: Your phone ring, ring, ring, ring, ring. Don't get the hello.
12: Hello. Hello.
13: Break के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: जी नमस्कार।
15: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजर 90.4 FM।
14: जी सर, मास्टर ग्राम धनाव से।
15: जी
14: सर, मास्टर ग्राम धनाव से।
15: ओके,
14: मनोरमा जी बोल रहे हैं।
15: जी जी,
14: और तो बताइए।
15: और तो बढ़िया, क्या हो रहा है?
14: अरे क्या होगा, हम लोग का सिलाई है ना, टेलर का काम है, रोशन टेलर में। आप रोज सुननी करती है, मैसेज आता है।
15: जी जी,
14: और खेती बाड़ी का काम हो रहा है इधर भी। बारिश हो रहा है कि नहीं आपके तरफ?
15: बारिश तो नहीं हो रहा है,
14: धूप निकला हुआ है।
15: नहीं, सुहाना मौसम है।
14: और चलिए गाना सुना दीजिएगा। तो मूवी का नाम है आई मिलन की रात, गाने मूवी का नाम है आई मिलन की रात, गाने का बोल सावन का महीना।
15: एक बार और गाने के बोल।

0: समझ में आ गया ना?
1: जी जी, आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं
0: जी। और सुनने वाले हैं सभी हमारे पोता है आजम अंसारी, अयान अंसारी, मुल्तान अंसारी और अलीशान अंसारी, सब हमारे घर के लोग हैं। और हम लोग जितने रेडियो और जितने रेडियो सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं के लिए सुनवाना चाहता हूँ। कब बजेगा मैडम?
1: नहीं आज ही बजेगा।
0: आज तो 9 बजे, हम तो रोज सुनते हैं ना कार्यक्रम
1: जी, तो आज ही मतलब कोशिश रहेगा कि आज ही बजे
0: जी। और सोनी जी आएंगे कि नहीं?
1: आएंगी, अभी तो छुट्टी पे है तो।
0: अभी छुट्टी पे है, भारती जी से कल इधर बस में जुड़े थे, हम तक गाना
1: जब तक सोनी जी नहीं आ जाएंगे तब तक भारती जी शो करेंगे
0: जी जी जी।
1: तो गाना प्ले करते हैं
0: जी,
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिन 90.4 FM।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: सलाम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: रेशमा बोल रहे हैं पठानपुर।
0: क्या हाल है रेशमा जी?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: जी मेरा भी बढ़िया है।
1: नाश्ता तो हो गया मैम?
0: हो गया। और आपका?
1: हमारा भी हो गया। कॉल लगा रहे थे तो लग रहे थे अब नहीं लगेगा। लास्ट कॉल लग गया।
0: जी जी लग गया ना?
1: हाँ लग गया। हम तो सोचे कि अब बात नहीं होगा।
0: नहीं बात तो हो गया ना, देखिए।
1: हाँ बात हो गया। आप नहीं मैम?
0: सब बढ़िया है।
1: सब कोई मैम है?
0: हाँ सब कोई ठीक है।
1: मैम नहीं आई है? सॉरी मैम
0: नहीं, अभी तो नहीं आई है, छुट्टी पे है।
1: ठीक है, आज गाना सुना दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: बहुत दर्द दर प्यारे ने हो दिलवा टोले पे जननी।
0: ओके, और किसी को सुनवाना भी है ये सॉन्ग?
1: हाँ सुन लीजिएगा, और मैम सुनेगी, भारती मैम सुनी मैम, और जितना लोग सुनते हैं रेडियो सब कोई सुनेगा।
0: ओके, गाना प्ले करें?
1: जी मैम कर दीजिए।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी मैम नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
6: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
10: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
9: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
10: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
9: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है क्या रेडियो रिमझिम 90.4 FM में?
12: प्रणाम।
13: प्रणाम,
12: क्या हाल है?
13: जी बढ़िया बा, नाम बता दिया अपन और कहाँ से?
12: गणेश कुमार मिश्रा, दिल्ली।
13: ओके,
12: आप कौन हो?
13: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
12: अरे मनोरमा जी, आज पहली बार आपसे बात हो रही है।
13: इसीलिए ना, नहीं
12: आज आपसे पहली बार बात हो रही है। और बात जी कहाँ है? और सब सुनाइए।
13: और सब बढ़िया, आप अपना बताइए।
12: सर फोन लगाते लगाते लग तो गया, वही बोला कि आज भी आज ही लगाइए दे। करना भी नहीं था, आज किए तो आज मिल गए आप, नहीं करते तो आप मिलते नहीं। पूरे रिकॉर्डिंग आ चुका है
13: जी जी।
12: तो मुझे एक गाना सुना दीजिए, खेसारी लाल का है, कहीं और अब बोले मूवी का है। तुहरा बिना खाना पीना सब बेकार बा, जान तीनों तुहार बा। हाँ यही सुना दीजिएगा।
13: और गाना किसी को सुनाना भी है?
12: भारती जी को, मनोरमा मैम को, सोनी जी को और जितने नाम सुधारने वाले हैं सबको।
13: तो बताइए मौसम कैसा है उधर का?
12: बस मौसम में तो 2 दिन पहले बारिश हुआ है बहुत में, जैसे वहाँ है वैसे ही यहाँ है, वहाँ भी तो बारिश नहीं हो रही है।
13: नहीं नहीं, लेकिन ऐसा मतलब लग रहा है जैसे कि बारिश होगा।
12: हाँ वैसे यहाँ भी कभी बादल हो जा रहा है, कभी धूप निकल जा रहा है। अब हम भी तो वहीं के है ना, राजापति स्टेशन के पास है, तो हमें ये पता है कि कैसे मौसम हो रहा है उधर। भारती जी को, सोनी जी को पता है, आपसे पहली बार हो रही है बात।
13: और रेडियो रिजिम आप कितने समय से सुन रहे हैं?
12: जी हम तो 4-5 साल से सुन रहे हैं, लेकिन जुड़ते नहीं थे। जुड़ रहे हैं, ये सोनी जी आई है, जब से जुड़ रहा हूँ 1.5 साल हो गया, 2 साल करीब हो गया। मैं अजूरा नहीं हूँ लगातार। पहले मैं लिसनर हूँ, ऐसा कि 4 घंटे शो चलता है तो 4 घंटे इधर उधर कुछ नहीं, पूरे रेगुलर रहा हूँ।
13: चलिए
12: आपका गाँव कहाँ पड़ेगा? वही प्रॉपर गोपालगंज से। चलिए ठीक है,
13: ठीक है। तो
12: आपसे हो ही जाएगा बात विचार पड़ेगा तो। ऐसे रोनी जी से भारतीय जी से तो सब बात होती है, सब जानकारी है हमारे बारे में।
13: वो क्या है रिकॉर्डिंग?
12: हाँ एक दिन आप किए हैं, उस दिन हम इंतजार किए, सुने तो हम सोचे कि मनोरमा जी कब चढ़ी है, हमारे से मिली नहीं है। मैं बराबर फोन करता हूँ, लेकिन आज मिली गए। चलिए बात करके बहुत अच्छा लगा
13: जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर।
1: क्या हाल चाल है सुनील जी?
0: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम।
1: अच्छा
0: जी जी जी मैम
1: जी।
0: अब मैम वहाँ का मौसम की क्या हाल चाल है मैम?
1: मौसम सुहाना हुआ है, कभी धूप हो रहा है।
0: जी जी,
1: हवा चल रहा है।
0: जी जी जी मैम, बारिश नहीं है मैम?
1: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है।
0: हमारे यहाँ तो बारिश चालू मैम, हल्का फुल्का बारिश चालू, बहुत अच्छा है यहाँ का मौसम है मैम।
1: अभी बारिश हो रही है?
0: जी जी, अभी बारिश चालू। जी जी जी मैम, आज एक फरमाइश है गाने की, बोले पार्की में होके आवाज और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों। ठीक है मैम, गाना भजवाइए। धन्यवाद मैम, थैंक यू।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: जब फोन भी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-9-11। जी हाँ, 8009-94-9-11। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
15: नमस्कार मैडम।
16: नमस्कार,
15: हम गाना सुनना चाहते हैं मैडम।
16: जी गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए आप अपना।
15: धर्मा से बोल रहा हूँ, मेरा नाम श्यामदेव माझी हुआ।
16: अच्छा,
15: गाना सुना है? गाना है भोजपुरी में है मैडम।
16: बताएंगे।
15: मारो में बैठल बाड़े गौर के दूल्हा हो, मारो में बैठल बाड़े गौर के दूल्हा हो, मांगे ले भर थरिया भांग ए सखी, मांगे ले भर थरिया भांग ए सखी।
16: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
15: साथी लोग सुन रहे हैं, सबको सुनवाना है मैडम।
16: वैसे क्या हो रहा है अभी?
15: हाँ, पेशे से मैं शिक्षक हूँ, छुट्टी पर हूँ आज, और मैं आपका रिमझिम रोज सुनता हूँ, बराबर सुनता हूँ मोबाइल से।
16: अच्छा,
15: है कि थोड़ा आज सोचे थे कि आज गाना कॉल करेंगे या सुने गाना।
16: आप रेडियो रिमझिम कितने समय से सुनते हैं?
15: जब से शुरू है तब से सुनते हैं मैडम।
16: अच्छा जी, तो मतलब पूछ रहे थे कि रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम आपको कैसा लगता है?
15: बहुत अच्छा लगता है मैडम, बहुत शुरू सुनता है, सुनते हैं। आपके रेडियो रिमझिम के मालिक हैं शंकर बाबू, उनका जो है भाषण ऐसी ऐसी देते हैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है जी।
16: अच्छा, रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं आप?
15: जब से मैंने मैसी हुआ है, चालू हुआ, तब से मैं सुनता हूँ। मेरा घर बिथेर में हुआ, इसी पंचायत में मेरा रेडियो रिमझिम है।
16: अच्छा,
15: हमारी पंचायत में है।
16: अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये है कि रेडियो रेडियो रिमझिम मतलब कैसे सुनते हैं? मोबाइल, मतलब
15: मोबाइल से मैडम, मोबाइल से,
16: ऐप के माध्यम से।
15: जी जी, ऐप के माध्यम से।
16: अच्छा, चलिए बढ़िया,
15: बहुत अच्छा लगता है।
16: अच्छा, अब आप लोग का दुआ प्यार से लगा है?
15: बिल्कुल एकदम, बिल्कुल। देखिए, भगवान से दुआ करते हैं, पूरे रेडियो रिमझिम परिवार को मैं दुआ करते हैं कि सभी लोग खुश रहे और रेडियो रिमझिम चलाते रहे, सबको मनोरंजन कराते रहे।
16: अब आप लोग का आशीर्वाद से ये
15: भगवान की कृपा है सर। जी जी
16: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं?
15: जी मैडम, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
16: आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
15: थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम।

0: हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 एफएम में।
1: हम खादर राजन मार्केट से बोलते हैं, रामाजी प्रसाद। पहले कॉल लगा गया था नंबर पहचाना खाली का
0: ना ना एक पहले कॉल आ गई
1: यार सुने बोल बम के हाथी न घोड़ा पैदल सवारी हम बाबा तुहरे दुआरी।
0: और गाना के लिए सुनवावे के भी बात
1: जितना लोग सुन दो सब कुछ सुने और कौन ना होता जनवा साहब सुनाई नहीं लो
0: एक बार फिर से बता दें।
1: हाथी ना घोड़ा पैदल सवारी बाबा हम चलिए तुहरे दुआरी जितना रेडियो रिंगिंग सुन दो सब कोई हम रहुआ जितना लोग बाबा धाम जा फिर से उस नत हुई।
0: ठीक बताओ
1: हाथी जी बोले
0: गाना प्ले करी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, सुनत रही सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ। फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
8: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
10: कॉल करे 87-894-18744।
11: जब फोन बिन बेबसी है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: नमस्कार मैडम जी, कौन बोल रहे? भारती जी बोल रही, सोनी जी बोल रही है?
12: मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
13: अच्छा, आज मेरी पहली बार बात हो रही है मैडम जी आज।
12: जी,
13: खाना हो गया आपका?
12: और आपका?
13: मेरा भी हो गया।
12: चलिए बढ़िया, नाम बता दीजिए अपना।
13: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदन नगर, जिला गुना, मध्य प्रदेश से।
12: ओके, तब क्या हाल चाल है आपका?
13: बस रेडियो सुन रहे हैं आपका, और क्या है।
12: चलिए बढ़िया, तो बता दीजिए फरमाइश।
13: फरमाइश है, पिक्चर का नाम है घर की बेटी और गाने के बोल है समझी तेरी गोरी चने के खेत में।
12: एक बार फिर से बता दीजिए।
13: पिक्चर का नाम है बड़े घर की बेटी और गाने के बोल है समझी तेरी गोरी चने के खेत में।
12: ठीक है, और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
13: जी, ये सोनी जी मैम को है, भारती मैम को है, आपको है, और अपने गोपाल ओझा जी है, गजराज सिंह लोधी है और जीतन धाकड़ जी है। और जितने सभी रेडियो और रिमझिम सुन रहे हैं उनको सबके लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
12: ओके
13: जी
12: जी, तो आपका गाना प्ले करें।
13: कब बजेगा ये
12: गाना आपका? कल बजेगा।
13: ठीक है
12: जी, तो गाना प्ले करते हैं।
13: ठीक है मैडम, धन्यवाद।
12: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: मधु सर यहाँ से बोल रहे हैं, राजू वार।
1: अच्छा,
0: सॉन्ग सुनना है।
1: जी बता दीजिए।
0: बोलबम के खेसारी लाल के आवाज में कोई भी अच्छा सॉन्ग बजा दीजिएगा।
1: अच्छा, और सुनवाना भी है किसी को?
0: रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोताओं को।
1: तब क्या हो रहा है, खाना वाना हो गया?
0: हाँ, आज काम तो नहीं गए, छुट्टी में है।
1: वैसे क्या करते हैं आप?
0: गाड़ी उड़ी चलाते हैं खेत पर।
1: अच्छा, और रेडियो रिमझिम कैसे सुनते हैं?
0: यही मोबाइल में।
1: इंटरनेट के माध्यम से?
0: नहीं, रेडियो हेडफोन के माध्यम।
1: अच्छा अच्छा, ये बढ़िया। और ये रेडियो रिमझिम कितने समय से सुन रहे हैं आप?
0: हम तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी नहीं सुनते हैं।
1: अच्छा, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिमझिम?
0: अच्छा लगता है, कभी कार्यक्रम अच्छा लगता है।
1: ये बढ़िया,
0: ठीक है
1: जी। रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कैलाश धुआं धुआं है।
3: अरे का हो, काहे मन मार के बैठल बड़ू, कोनो प्रॉब्लम बा?
4: ए जी, एगो बात कही।
3: कहा?
4: बड़ा मन करता देवघर जाए के जी।
3: तब
4: देखी न बाबा, कई दिन से सपना में आओ तनी, अपना नगरी में बुलावा तनी।
3: सपना तो हम देखते हैं, लेकिन क्या करी, पैसे नहीं खेरे।
5: ए साल रहेगा पर साल चल जाये, ठीक बा? गाड़ियों खाली नहीं खिसा
4: तो हम अब की बार ना मानो, हम तो जेबे करोगे।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8009294911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939365923।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करे 6205262112 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714-86164।
13: प्रसाद क्लिनिक,
14: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
13: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
14: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
15: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: आइए हवा महल में आज सुनते हैं चौखट के बाहर। निर्देशिका है शकुंतला वर्मा।
1: इधर आना।
2: आया बहन जी, कहाँ जाना है?
3: महानगर। कितने पैसे?
2: आए 2.5 रुपए बहन जी।
1: और सुधार, ठहरो भाई, मैं भी आ रही हूँ।
3: अरे जी, तुम भी?
1: हाँ,
3: इसी गाड़ी से आई हूँ।
1: हाँ, मैं जब स्टेशन पहुँची तो गाड़ी खिसकने लगी थी, दौड़ कर बड़ी मुश्किल से पिछले डिब्बे में चढ़ी।
2: चलिए बहन जी, चलिए, पुलिस वाला यहाँ ज्यादा देर नहीं खड़ा होने देता।
3: चलो नीलू, बैठो।
2: चल भाई, चलो।
1: सुबह तुम ट्रेन भी नहीं मिले तो मैं समझी आज तुम नहीं आई हो।
3: मैं 10 बजे वाली गाड़ी से गई थी। आज क्या करूँ, सुबह खाना बनाते, बच्चों को तैयार करते, 9 बजे की गाड़ी पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: तो फिर सुधा, आज तुम्हें फिर देर हो गई होगी।
3: और क्या, हफ्ते में 3 दिन यही होता है, इतनी ढेर काम हो जाते हैं। सुबह खाना बनाने से लेकर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना और सबका लंच बॉक्स पैक करने का हम मुझको ही तो करना पड़ता है।
1: लेकिन सुधा, तुम्हारी सास भी तो तुम्हारे साथ रहती है ना?
3: हाँ, वो भी चलते चलते कोई न कोई काम बताती रहती है। बहू, जरा पूजा के बर्तन धोती जाना, मेरी साड़ी छत पर फैला देना।
1: अरे रिक्शे वाले, जरा धीरे चलो ना, इतनी भीड़ है।
3: नीलू, तुम कई दिन से लौटते समय इस गाड़ी से नहीं आ रही हो, क्या बात है? दफ्तर में काम ज्यादा है?
1: नहीं सुधा, दफ्तर में तो काम ज्यादा नहीं है, पर मोती झील से कानपुर स्टेशन तक रिक्शे से आने में भी तो काफी समय लग जाता है।
3: रिक्शे से क्यों? तो तुम्हारा कुलीग आलोक आजकल तुम्हें स्कूटर से नहीं छोड़ता? स्कूटर स्टेशन के पास ही रहता है ना?
1: हाँ, लेकिन मैं अपने आप ही कोई न कोई बहाना कर रिक्शे से चली आती हूँ।
3: पर ऐसा क्यों करती हो तुम? बेकार रिक्शे के पैसे भी खर्च होते हैं और गाड़ी भी छूट जाती है। आलोक तो इतना अच्छा लड़का है।
1: हाँ सुधा, वो बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उस पर कीचड़ उछाली जाए।
3: आखिर हुआ क्या?
1: होना क्या है सुधा, तो मुझे दफ्तर से स्टेशन तक पहुंचा देता था ना, बस दफ्तर के कुछ लोगों ने मुझे उसके स्कूटर पर आते देख लिया।
3: फिर
1: जानती हो तुम तो सुधा, क्या लोग मुझसे कितना झूठा है, और फिर वो तो शादीशुदा है, मैं तो उसे बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह समझती हूँ।
3: वो भी तो बड़ी बहन की तरह तुम्हारी इज्जत करता है।
1: हाँ, पर दफ्तर में ऐसी ऐसी अफवाहें मेरे और उसके बारे में उड़ाई जा रही हैं कि मुझे तो कहने में भी शर्म आती है।
3: स्त्रियों की तो हर तरह से मुसीबत है,
1: खास तौर पर सुधा मेरी जैसी अविवाहित और अकेली रहने वालियों की तो बहुत ही आफत है।
3: अरे नीलू, शादी के बाद तो और भी हजारों झंझट है, तुम कम से कम सुबह चैन से तैयार होकर दफ्तर से जा सकती हो, इस समय पहुँच कर एक तरह चाय आराम से तो पी सकती हो।
1: वो तो सब ठीक है सुधा, पर ये जो कदम कदम पर झूठी अफवाहें और लांछन सहने पड़ते हैं, ये सब बर्दाश्त नहीं होते हैं।
3: अरे रिक्शे वाले, जरा उधर उस सब्जी की दुकान के पास रोक देना, थोड़ी सब्जी ले।

0: गुड़िया, ओ गुड़िया, अरे संजू
1: जाने कहाँ चले गए दोनों। स्कूल से आते ही खेलने चल देते हैं, घर में तो किसी का जी ही नहीं लगता। जब देखो हर समय घर से बाहर, घर से बाहर।
0: कौन है? अभी आई,
1: चल कर देखूं, शायद विपिन आ गया है।
0: अरे हाँ, विपिन ही तो है।
2: माँ,
0: हाँ,
2: घर में कोई नहीं दिखाई दे रहा, ये बच्चे कहाँ चले गए?
0: होंगे कहाँ, खेलने गए होंगे, स्कूल से आते ही तो चल देते हैं।
1: घर में किसी का पैर टिकता ही कहाँ है, और वो बहुरानी भी तो नहीं आई है अभी तक।
2: अच्छा मैं, वो कोई टीवी ठीक करने वाला आया था तुम्हें?
0: हाँ हाँ आया था।
2: अच्छा अच्छा,
0: बड़ी देर तक ठीक ठाक करता रहा, पूरे समय बैठी रही। आज तो दोपहर में एक भी आराम करने को नहीं मिला।
2: अच्छा माँ, तुम आराम कर लो।
0: अरे बेटा, मेरे भाग में आराम कहाँ, सब चल देते हैं। दिन भर घर में अकेली पड़ी रहती हूँ, यहाँ चौकीदारी करो, कभी ये उठाओ, कभी वो धरो, कभी कोई आया, कभी कोई गया, परेशान हो गई हूँ मैं तो, जैसे मैं ही चौकीदार हूँ घर की।
2: अरे आ गई से था तुम?
3: आज ट्रेन कुछ लेट हो गई थी, और आज तो मैं सब्जी खरीदने लगी, इसी में कुछ देर हो गई।
0: आ गई बहू रानी
3: जी? माजी,
0: अरे विपिन दफ्तर से आकर ऐसे ही बैठा है, मैं चाय पर नहीं पीता। जल्दी से चाय बना लाओ बहू।
3: अभी बनाती हूँ चाय। माँ जी, बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं।
0: होंगे कहाँ, आते ही तो खेलने चले गए। इस घर में कोई टिकता भी है?
3: आते ही हुक्म मिल गया, चाय बनाओ। इनके बेटे ऑफिस से थक कर आए हैं, मैं तो जैसे थकती ही नहीं।
0: बहू रानी जी, माँ जी, अदरक डाल देना चाय में, और मटरी भी निकालती लाना, वहीं रखी है ऊपर डिब्बे में। ला रही हूँ।
3: गनीमत है मटरी रखी है, पर ना भी कुछ बनाने का भी आदेश दे दिया जाता। माँ जी, हाँ, आपकी चाय गिलास में आपके पलंग के पास रख दी।
0: अच्छा,
3: आप यहाँ मेज पर नहीं पीती ना?
0: बहू रानी, मेरी चाय में नमक भी डाल दिया है ना।
3: अरे वो तो भूल ही गई,
0: अभी लाई। मालूम है कि आजकल मुझे खांसी हो रही है, चाय में नमक डालकर पीती हूँ, पर मेरा काम किसे याद रहता है।
3: मैं अभी नमक डाल देती हूँ माँ जी।
0: बस बस रहने दो, मैं खुद डाल लूंगी। अरे अब खड़ी खड़ी मुझे क्या घूर रही हो, जाकर विपिन को चाय दो।
2: सुधा, आज कुछ ज्यादा थकी हुई लग रही हूँ।
3: आप देखते तो हैं, सुबह से लेकर रात तक मशीन की तरह से जुटी रहती हूँ। यहाँ से कानपुर नौकरी करने जाना कोई आसान है?
2: हाँ, काम तो बहुत पड़ जाता है तुम्हारे ऊपर, मेरे ख्याल से तुम नौकरी छोड़ दो।
3: अरे आप क्या कह रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, दिन ब दिन खर्चे बढ़ रहे हैं, उस पर मैं नौकरी छोड़ दूँ? 1000 रुपए महीने की आमदनी बंद हो जाए।
2: अच्छा, एक प्यारा चावल बनाना सुधा।
3: नौकरी छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती है।
2: फिर क्या किया जाए, तुम्हारी इतनी दौड़ थकान और मानसिक तनाव को देख कर ही।
3: और कुछ नहीं किया जा सकता, क्या ये नहीं हो सकता कि घर का काम सभी थोड़ा थोड़ा कर ले, हर काम के लिए मुझ पर ही निर्भर न किया जाए।
2: सुधा, इस घर का हमेशा यही फायदा रहा है कि बहुएं ही पूरा घर का काम संभालती रही।
3: पर उस समय बहुएं सिर्फ घर का ही काम करती थी, बाहर नौकरी नहीं। क्या बाहर से सिर्फ आदमी ही थक कर आता है, औरत नहीं?
2: शायद तुम ठीक कह रही हो सुधा, अगर औरत की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं तो आदमी की जिम्मेदारियाँ भी बढ़नी चाहिए।
3: बच्चे अभी तक नहीं है,
2: आ जाएंगे, कहीं खेल रहे होंगे।
3: अभी खाना भी बनाना है। अच्छा उठो, पहले सब्जी काट लूं।
2: आज खाना तुम अकेले नहीं बनाओगी, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा।
3: खाना बनाएंगे?
2: अरे देखिए तो हम कितने स्मार्ट हैं रसोई के काम में, मेरे हाथ का बना खाना खाएंगी तो पता चलेगा कि खाना बनता कैसे है। और हाँ, मैं बच्चों से भी कहूंगा कि अपने छोटे मोटे सारे काम वो खुद किया करें। अरे तुम आलू काट रही हो, हटो, लाओ इसको मुझे दो, और तुम जाके उधर आटा गूंदो, जब तक आलू मैं काट लेता हूँ।
0: बहू रानी, ओ बहू रानी।
1: जी माँ जी।
0: अरे विपिन, ये क्या तुम सब्जी काट रहे हो? अरे ऐसा तो आज तक हमारे घर में कभी नहीं हुआ है।
2: आज तक तो और भी बहुत कुछ नहीं हुआ है इस घर में।
0: क्या नहीं हुआ, जरा मैं भी तो सुनूं।
2: कभी तुम्हारे घर की कोई बहू 1000 रुपए महीना कमा कर लाई है? कभी रोज कानपुर आई गई है नौकरी करने?
0: मुझे क्या, अरे जैसा चाहो वैसा करो, मेरी तो कट गई, अब तुम दोनों को ही करना है जो कुछ करना है। पर हाँ, इतना बता देती हूँ, मुझसे चौकीदारी होने से रही।
4: सारा अरे सुधा, आज बड़ी जल्दी स्टेशन पहुंच गई। अभी तो गाड़ी चलने में 10 मिनट बाकी है।
3: हाँ, आज सुबह बच्चे खुद ही तैयार हो गए। इन्होंने काम में मेरी मदद की, अपना, मेरा और बच्चों का लंच बॉक्स भी पैक कर दिया। बस मैं झटपट तैयार होकर आ गई।
4: अच्छा, ये परिवर्तन कैसे आ गया सुधा?
3: नीलू, दरअसल वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर माँ जी सदियों से चली आ रही परंपरा तोड़ना नहीं चाहती। घर का हर काम बहू ही करे।
4: यही तो बात है सुधा, पुराने लोग आज भी वही अपेक्षा करते हैं जो वर्षों पहले स्त्रियों से की जाती थी।
3: दरअसल बात यह है नीलू कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन समाज ने भी इस चीज को पूरी तरह स्वीकार ही कहा किया है, इसलिए नारी से हर तरह की अपेक्षाएं की जाती हैं।
4: लेकिन सुधा, आज की नारी सदियों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई घूंघट निकाल कर पति की माँ से एक जीवित संपत्ति तो नहीं रह गई है।
3: ये तो ठीक है कि वो हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, पर समाज में अभी वैसा वातावरण बना ही कहाँ है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं।
4: कैसे हैं सुधा?
3: जो मानसिक रूप से स्त्री की बदलती हुई स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, उससे समझौता नहीं कर सके हैं।
4: चलो बैठा जाए सुधा, अब गाड़ी चलने ही वाली है।
3: देखो आज शाम को जल्दी स्टेशन पहुंच जाना।
4: सुधा कैसे इतनी दूर रिक्शे से?
3: रिक्शे से नहीं, आलोक तुम्हें छोड़ेगा। इन कहने वालों की परवाह करोगी ना तो जिंदगी दूभर हो जाएगी। जब अपना मन साफ तो कहने वालों की परवाह करो।
4: क्यों, तुम ठीक कह रही हो सुधा, जब मेरे मन में खोट नहीं तो कहने वालों की भी परवाह नहीं करूंगी।
3: ये हुई ना बात, हमें आगे बढ़ना है तो इन सब कठिनाइयों का हिम्मत से मुकाबला करना ही पड़ेगा।
4: जल्दी बैठो सुधा, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी।
3: चलो चलो,
4: चले।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3092 या 9765665750।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशव्यापी नशा मुक्ति संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। राज्य के सभी जिलों में भी होगा आयोजन। रेलवे ने दानापुर से फतुहा के बीच 976 करोड़ रुपए की लागत वाली मल्टी ट्रैक परियोजना को मंजूरी दी। भाजपा के विधान पार्षद देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के विधान पार्षद बनने का रास्ता हुआ साफ। राज्यपाल कोटे से जल्द हो सकता है मनोनयन। और प्रदेश के नगर निकाय के सफाई कर्मियों और वाहन चालकों की 3 दिनों से चल रही हड़ताल के चलते साफ सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशव्यापी नशा मुक्ति संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत देश भर में 10,000 स्थानों पर नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का आयोजन होगा। प्रदेश के सभी जिलों में भी अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया जाएगा और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अनुसार इस कार्यक्रम में संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। रेलवे ने पूर्व मध्य रेल के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतुहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत वाली मल्टी ट्रैक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इस खंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री तथा माल ढुलाई सेवाओं में बढ़ोतरी होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेगी। इससे प्रतिवर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। तेल कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 192 रुपए की कमी की है। घटी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। पटना में व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 3,227 रुपए से कम होकर 3,018 रुपए हो गई है। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए चलाए जा रहे सहयोग शिविर के तहत अब तक 5,83,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5,33,000 से अधिक मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा किया जा चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी।
1: राज्य में के सर्वांगीण विकास और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु सहयोग शिविर का आयोजन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 19 मई को यह कार्यक्रम लागू किया गया था प्रथम बार और अब तक में 5,83,886 आवेदन प्राप्त हुए हैं सहयोग शिविर में, जिसमें से 5,33,904 समस्या का निस्तार कर दिया गया है और शेष अभी लंबित है।
0: भाजपा के विधान पार्षद देवेश कुमार के पद से इस्तीफे के बाद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के विधान पार्षद बनने का रास्ता साफ हो गया है। देवेश कुमार ने कल अपना इस्तीफा विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंप दिया। राज्यपाल कोटे से मनोनीत देवेश कुमार का कार्यकाल मार्च 2027 तक था। हमारे संवाददाता ने बताया कि दीपक प्रकाश का राज्यपाल कोटे से जल्द मनोनयन होने की संभावना है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दीपक प्रकाश के बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए मंत्री के रूप में 6 महीने के कार्यकाल पूरा होने पर बिहार सरकार से जवाब मांगा था। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होनी है। प्रदेश के नगर निकाय के सफाई कर्मियों और वाहन चालकों की हड़ताल के कारण साफ सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। गली मोहल्लों में कचरे का अंबार दिखने लगा है। इससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। राजधानी पटना में साफ सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इस बीच पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा ने हड़ताली कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की है।
2: बेसिकली जो अभी का जो स्ट्राइक है उसमें जो 3 मांगे हैं, इसके आलोक में विभाग के जो सचिव सर हैं उनके साथ जो यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे बिहार भर के, उनके साथ भी विभाग स्तर पे भी बैठक की गई है। विभाग के स्तर पे भी जो उच्च पदाधिकारी हैं वो लोग भी उसमें मौजूद रहे। उसके बाद माननीय मंत्री जी के द्वारा भी सभी जो यूनियन को जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे बिहार को, उन लोगों के साथ भी उनकी समस्याओं को सुना गया, क्योंकि ये नीतिगत निर्णय है, किसी भी यूएलबी के स्तर से ये नहीं होना है, ये बेसिकली एक नीतिगत निर्णय लेने की इसमें बात आती।
0: मुंगेर से हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि कर्मियों ने मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का संकल्प दोहराया है।
3: 300 मांग है सरकारी का, चलो 7वां वेतन एनजीओ का दैनिक का सरकारी कर दे, एनजीओ को स्थायी करे, दैनिक का स्थायी करे, प्रशासन उनको बुला के अनुकंपा पर बहाल करे,
4: दैनिक एनजीओ का स्थायीकरण किया जाए, ठेकेदारी प्रथा बंद किया जाए, 7वां वेतन मान और अनुकंपा पर बहाल किया जाए। यह मांग लेकर पूरे बिहार में ये तीसरा दिन हड़ताल है। सभी हड़ताल यहाँ कर्मचारी, कार्यालय कर्मचारी और सफाई कर्मी, एनजीओ कर्मी, सभी कर्मी हड़ताल पर थे। आज अटेंडेंस नहराई पर आकर सभी स्टाफ को धमकी दिया कि अगर जो तुम नहीं काम करोगे तो आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा और बलपूर्वक उनको कार्यालय खुलवाया गया।
0: गौरतलब है कि सफाई कर्मी अपनी नौकरी स्थायी करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। बेगूसराय की एमपी एमएलए अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को 7-7 साल कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में उनके चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के श्रीपुर स्थित निजी आवास पर छापेमारी के दौरान 50 कारतूस बरामद हुए थे। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने जहानाबाद जिले के रत्नी फरीदपुर प्रखंड के पंडौल पंचायत के मुखिया नंद किशोर राम को 12,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुखिया शिकायतकर्ता से मनरेगा के तहत कराए गए कार्य के भुगतान के एवज में घूस ले रहा था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने सीतामढ़ी में आयोजित जन सुनवाई के दौरान फोन पर रिश्वत मांगने के आरोपित डेटा एंट्री ऑपरेटर को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है। मंत्री ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna

0: प्रभावशाली क्षण है। राज्य में मॉनसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से 43% कम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में 6 फुट बारिश हुई। इस अवधि में किशनगंज जिले के तैयबपुर में सबसे अधिक 74.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बीच मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल अररिया, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है।
1: राज्य के अररिया, किशनगंज, मधुबनी एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी एवं वैशाली जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: कटिहार में मखाना के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए अब मखाना से बिस्कुट, ठेकुआ, पेड़ा, बर्फी और जलेबी समेत विभिन्न मिठाइयां तैयार की जाएंगी। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि इसके लिए कृषि विभाग की आत्मा योजना के तहत किसानों और मिठाई व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
2: वैल्यू एडिशन भी मखाना के प्रोडक्ट्स का किया जाए, जिससे कि जो मखाना के उद्योग से जुड़े हुए किसान हैं या उस उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनको बेहतर रेम्यूनरेशन मिल सके। इसी क्रम में मखाना से मिठाई, जलेबी, बिस्किट, ठेकुआ, ये सारी चीजें बनाने काम शुरू किया गया। जो हमारे मखाना से लिंक्ड FPOs वो भी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए, और उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं।
0: मधुबनी जिले में केंद्रीय विद्यालय का संचालन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विद्यालय का संचालन फिलहाल वाटसन प्लस टू स्कूल के अस्थायी भवन से किया जाएगा। इधर शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय प्रखंड में केंद्रीय विद्यालय के अस्थायी भवन के लिए 5 एकड़ से अधिक भूमि की लीज प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मॉडल स्कूल निमी के पास उपलब्ध कराई गई इस भूमि पर विद्यालय भवन का निर्माण होगा। आज से विश्व स्तनपान सप्ताह शुरू हो गया है। प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अगस्त तक यह सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा माताओं को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर प्रदेश भर में स्वास्थ्य संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श शिविर और जन जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने कल से गया मधुपुर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन गया से मानपुर, तिलैया, नवादा, वारिसलीगंज, शेखपुरा, किउल, जमुई, झाझा और जसीडीह होते हुए मधुपुर पहुंचेगी। मुंगेर न्यायालय परिसर के नए भवन के प्रथम तल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अगलगी की घटना में कई महत्वपूर्ण कागजात जलकर नष्ट हो गए। अग्निशमन दस्ते की मदद से आग पर काबू पाया गया। कटिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ फोटो और वीडियो डालने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए। मधुबनी जिले के फूलपड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद जिले ने जुलाई महीने में राज्य में मेडी टेली कंसल्टेशन सेवाओं में पहला स्थान प्राप्त किया है। दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट केंद्र में आज 24वीं राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन बिहार का 33वां स्थापना दिवस पूरे सैन्य सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्र की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जहानाबाद जिला आज अपना 40वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रोहतास जिले के उचैला स्थित सरस्वती विद्या निकेतन और सारण के अवधपुर आंगनवाड़ी केंद्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं को महिला सुरक्षा और महिला स्वास्थ्य से लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारियां दी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशव्यापी नशा मुक्ति संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। राज्य

के सभी जिलों में भी होगा आयोजन। रेलवे ने दानापुर से फतुहा के बीच 976 करोड़ रुपए की लागत वाली मल्टी ट्रैक परियोजना को मंजूरी दी। भाजपा के विधान पार्षद देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के विधान पार्षद बनने का रास्ता हुआ साफ। राज्यपाल कोटे से जल्द हो सकता है मनोनयन। और प्रदेश के नगर निकाय के सफाई कर्मियों और वाहन चालकों की 3 दिनों से चल रही हड़ताल के कारण साफ सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
9: और

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
9: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
10: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
9: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6252

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
5: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
6: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
0: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
9: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारत सरकार का उपक्रम परमाणु ऊर्जा विभाग IREL इंडिया लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। मुख्य प्रबंधक तकनीकी मैकेनिकल, उप प्रबंधक तकनीकी मैकेनिकल, सहायक प्रबंधक तकनीकी मैकेनिकल, मुख्य प्रबंधक तकनीकी इलेक्ट्रिकल, उप प्रबंधक तकनीकी इलेक्ट्रिकल, सहायक प्रबंधक तकनीकी इलेक्ट्रिकल, उप प्रबंधक तकनीकी केमिकल, सहायक प्रबंधक तकनीकी केमिकल, उप प्रबंधक तकनीकी खनिज, उप प्रबंधक तकनीकी खनन, सहायक प्रबंधक तकनीकी खनन और उप प्रबंधक तकनीकी वाणिज्य और खरीद। इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से आरक्षण, आयु मानदंड, शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव अपेक्षाएं, छूट, पोस्टिंग का स्थान और अन्य संबंधित विवरण संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं IREL की वेबसाइट www.irel.co.in। IREL इंडिया लिमिटेड इन पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उप प्रबंधक तकनीकी औद्योगिक सुरक्षा, सहायक प्रबंधक तकनीकी औद्योगिक सुरक्षा, सहायक प्रबंधक तकनीकी इंस्ट्रूमेंटेशन, उप महाप्रबंधक तकनीकी IT, प्रबंधक तकनीकी IT, उप प्रबंधक तकनीकी IT तथा उप प्रबंधक तकनीकी जियोलॉजी। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए नियम, शर्तें, वेतनमान, आरक्षण और तैनाती के स्थान की जानकारी के लिए आप देख सकते हैं विभाग की वेबसाइट www.irel.co.in। IREL इंडिया लिमिटेड इन गैर तकनीकी पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित कर रहा है। वरिष्ठ प्रबंधक विधि, प्रबंधक विधि, वरिष्ठ प्रबंधक सुरक्षा और प्रबंधक सुरक्षा। इसी क्रम में कुछ अन्य पद हैं: वरिष्ठ प्रबंधक चिकित्सा, महाप्रबंधक वित्त, मुख्य प्रबंधक वित्त, वरिष्ठ प्रबंधक वित्त E4, उप प्रबंधक वित्त E2, सहायक प्रबंधक वित्त E1, उप महाप्रबंधक विपणन E6, उप प्रबंधक बिक्री E2, उप प्रबंधक विधि और HRM E2, उप प्रबंधक HRM प्रशासन, सहायक प्रबंधक HRM, सहायक प्रबंधक राजभाषा और सहायक प्रबंधक कंपनी सचिव। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आरक्षण, आयु मानदंड, शैक्षिक योग्यताओं, अनुभव अपेक्षाओं, छूट, पोस्टिंग के स्थान और अन्य संबंधित विवरण के लिए देख सकते हैं IREL की वेबसाइट www.irel.co.in। आवेदन 10 अगस्त 2026 शाम 6 बजे तक किए जा सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
10: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
11: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
12: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
13: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
14: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
13: सुनिए सुनिए सुनिए,
15: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
13: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
15: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
13: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: ST ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए ST ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
2: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
11: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9939365923।
12: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
13: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
12: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
13: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
12: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
14: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
15: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
14: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
15: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
14: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
15: जानकारी है तो कॉल करें 62052612 पे।
16: प्रसाद क्लिनिक, स्त्री रोग।

0: डोरिया यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
0: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे।
5: 4416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
7: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
7: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
7: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई है। 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
6: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
7: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
6: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
3: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 44 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किस्त के रूप में 379 करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 193 करोड़ 95 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
8: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
6: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
9: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
6: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
10: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
11: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन में से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले आऊंगा। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
10: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
6: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5,000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
13: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
14: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
15: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
16: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
13: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
17: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
18: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
17: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
18: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
17: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
18: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
17: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
18: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
19: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
20: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
17: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
18: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
17: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
18: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
17: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
18: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
17: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
18: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
21: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
22: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
21: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
22: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
23: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका। जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
0: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
1: ठक ठक
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
24: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
24: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
25: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, श्रावणी मेला की तैयारी का डीएम और एसपी ने लिया जायजा। नहर से मिला एक वृद्ध महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। एसपी ने माधोपुर थाने का किया वार्षिक निरीक्षण। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर की गई खास बैठक। सांसद के बेटा और बहू का हुआ शादी का निबंधन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। श्रावणी मेला 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी समीर सौरभ और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बैकुंठपुर प्रखंड के सिंहासनी ग्राम स्थित प्रसिद्ध बाबा दानेश्वर नाथ मंदिर परिसर एवं मेला क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर, श्रद्धालुओं के प्रवेश एवं विकास मार्ग, बैरिकेटिंग, साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, पार्किंग, नियंत्रण कक्ष एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने भी मेला में तैनात पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने माधोपुर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान लंबित कांडों के जल्द निष्पादन, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और शराबबंदी को लेकर दिए गए सख्त निर्देशों का पालन करने की चेतावनी दी। थाना के अभिलेख, हाजत, वारंट निष्पादन, वाहन जांच और साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। अपराध नियंत्रण और अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई करने के उन्होंने पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। नगर थाना क्षेत्र के सुंदर पट्टी टीओपी के पास गंडक नहर से एक वृद्ध महिला का शव मिला। सुबह जैसे ही लोगों ने शव को देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर नगर थाना की पुलिस ने एफएसएल की टीम के साथ पहुंचकर आवश्यक जांच पड़ताल किया। बताया जा रहा है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले में शव की पहचान स्थानीय लोगों के माध्यम से की गई। मृत महिला नगर थाना क्षेत्र के सुकुलवा खुर्द निवासी स्वर्गीय नूर आलम की पत्नी वानी बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार महिला पिछले 2 दिनों से लापता थी और वह मानसिक रूप से भी अस्वस्थ थी। इस घटना को लेकर परिजन भी स्तब्ध हैं। महिला आखिर यहां कैसे पहुंची, उसकी हत्या हुई या आत्महत्या है, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और एफएसएल की टीम भी घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य बरामद करते हुए मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आने वाले 15 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। इसमें समारोह के सफल, भव्य एवं गरिमामय आयोजन के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस अवसर पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह की पूरी गरिमा अनुशासन एवं राष्ट्रीय सम्मान के अनुरूप संपन्न होना चाहिए। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। जिलाधिकारी ने समारोह स्थल की साफ सफाई, मंच निर्माण, ध्वजारोहण की व्यवस्था, परेड की तैयारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अतिथियों के बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन व्यवस्था, सुरक्षा एवं अन्य विधि व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, पार्किंग तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाओं पर बिंदुवार समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के बड़े पुत्र अभिक सुमन और उनकी पुत्र वधु डॉक्टर सगोल सेम सिंडी को उनके विवाह के उपरांत आज सांसद ने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए निबंधन पदाधिकारी के पास पहुंचकर उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके बाद दोनों दंपति को मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस अवसर पर परिवारजनों और शुभचिंतकों ने नव विवाहित दंपति को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने भी देश और प्रदेशवासियों से अपील किया कि सभी लोग शादी का निबंधन अवश्य कराएं और शादी निबंधन कराने के कई फायदे भी हैं। उन्होंने कहा कि शादी का निबंधन कराने से निबंधन प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कानूनी प्रमाण के रूप में भी होता है, महिलाओं की सुरक्षा होती है, पासपोर्ट, वीजा और विदेश यात्रा में भी इसका जरूरत पड़ता है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, बच्चों के लिए भी जरूरी होता है, बैंक और बीमा पॉलिसी इत्यादि में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सभी लोग निश्चित रूप से अपने शादी का रजिस्ट्रेशन करवाएं। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त झुन्ना कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह कररिया का रहने वाला है और इस पर 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था, तभी से पुलिस इसे ढूंढ रही थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बरौली थाना की पुलिस ने अपहरण कांड के दो अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी शहाबुद्दीन पिता स्वर्गीय मोहम्मद उस्मान, जो रामपुर बघेजी थाना बरौली का निवासी है, इसके साथ एक महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर अपहरण का मामला दर्ज था, पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी, अभी इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भोरे थाना की पुलिस ने भी 79 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बखरिया मोड़ के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी से 66 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को पकड़ा। इस दौरान पिंटू चौहान पिता रामदेव चौहान, साकिन नदवा, मुन्ना कुमार पिता प्रकाश राम साकिन लक्षीचक, करण कुमार पिता राजेश राम साकिन लक्षीचक, कुणाल कुमार पिता रामेश्वर उपाध्याय साकिन सिसई एवं शंभु शाही पिता स्वर्गीय विष्णुदेव शाही साकिन सिसई टोला सिसवा, ये सभी थाना भोरे के रहने वाले हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनके शराब और गाड़ी को जब्त करते हुए पुलिस ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में भी फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक आरोपी सिंटू महतो है और दूसरा शिव भोला बताया जा रहा है। ये दोनों हरपुर रजोखर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर भोरे पुलिस ने शराब कांड के मामले में फरार चल रहे एक और प्राथमिकी अभियुक्त को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया प्राथमिकी अभियुक्त आदित्य कुमार उर्फ छबीला पंडित है, जो रानीपुर थाना विजयपुर का निवासी है। इस पर 2022 में शराब का मामला दर्ज किया गया था, तभी से यह फरार था। पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास समन्वय समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं और मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान स्वीकृत योजनाओं की प्रगतिवार विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने और लंबित योजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों से योजनाओं के वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने खेल मैदान निर्माण की समीक्षा की। अंचल अधिकारियों को शेष पंचायतों में भूमि उपलब्ध कराकर खेल निर्माण शुरू कराने का निर्देश दिया। आपदा प्रबंधन में मामलों की समीक्षा की गई। प्राकृतिक आपदा, मृत्यु अनुदान एवं अन्य राहत मामलों में लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान ऑनलाइन दाखिल खारिज अभियान बसेरा 2, भूमि विवादों और लंबित मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सभी अंचल अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन करने, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। वहीं बाईपास बरौली सरिया मोड़ सड़क, बैरिया बाईपास, मीरगंज बाईपास, हथुआ खजूरिया पथ सहित विभिन्न भू अर्जन परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने, लंबित तकनीकी एवं प्रशासनिक बाधाओं का शीघ्र समाधान करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के निर्देश पर गोपालगंज जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल ने संगठन के चुनाव संपन्न होने के उपरांत जिला कार्य समिति की सूची के साथ प्रखंड कमेटी, नगर पंचायत कमेटी के साथ पंचायत एवं वार्ड अध्यक्षों की भी सूची उन्हें सौंपी। कमेटी में पार्टी के पुराने और नए समर्पित कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है, कुछ को हटाया गया है तो कुछ नए लोगों को भी जगह दी गई है। सभी क्षेत्रों का सामंजस्य करते हुए जातीय करण को भी ध्यान में रखा गया है। वहीं बताया जा रहा है कि सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, मंत्री सह विधायक सुनील कुमार, पूर्व मंत्री सह राष्ट्रीय महासचिव रामसेवक सिंह, विधायक सह विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यान आकर्षण समिति के सभापति अमरेंद्र पांडे, विधायक सह उप मुख्य सचेतक मंजीत सिंह, विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव और पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू तथा पूर्व विधायक मोहम्मद नेमतुल्लाह सहित सभी पूर्व जिला अध्यक्षों एवं राज्य परिषद के सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया है। कटिया के सिधवनिया गांव के शेख गयासुद्दीन के पुत्र फैजल की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि मृतक नहाने गया था, इसी दौरान गहरे पानी में चला गया जिससे डूबकर इसकी मौत हो गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना का अपर सचिव डेयर एवं वित्तीय सलाहकार संदीप सरकार ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अनुसंधान गतिविधियों, प्रौद्योगिकी विकास एवं वित्तीय प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने श्री सरकार को संस्थान की उपलब्धियों और संचालित अनुसंधान गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने किसान केंद्रित, जलवायु अनुकूल और संसाधन कुशल कृषि प्रौद्योगिकियों पर प्रकाश डालते हुए संस्थान के प्रमुख कार्यक्रम धान प्रति भूमि प्रबंधन के साथ साथ सामेकित कृषि प्रणाली, स्मार्ट जल प्रबंधन पद्धतियां, पशुधन एवं मत्स्य आधारित मॉड्यूल, बागवानी आधारित भू उपयोग मॉडल तथा धान गेहूं प्रणाली के सतत सघनीकरण के माध्यम से पूर्वी भारत में भूमि एवं जल उत्पादकता बढ़ाने और लघु एवं सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार लाने की दिशा में चल रहे कार्यों की जानकारी दी। जादोपुर के मसान थाना में एक युवक 80 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह घटना शुक्रवार की देर शाम की बताई जा रही है। पुलिस ने पूरी रात मशक्कत के बाद लगभग 12-1 बजे रात को इस युवक को टावर से नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में टावर पर चढ़ गया था और लगातार अपने पत्नी और बच्चों को बुलाने की बात कह रहा था। कुछ दिन पहले उसके पारिवारिक विवाद से नाराज होकर पत्नी मायके चली गई थी। इसके बाद यह युवक शराब के नशे में टावर पर चढ़ गया, लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था और पत्नी तथा बच्चों को बुलाने की जिद कर रहा था। देर रात पुलिस ने इसके पत्नी और बच्चों को बुलाया और किसी तरह मशक्कत के बाद इसे नीचे उतारा गया, जिसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह युवक मसान थाना गांव का ही बिक्की कुमार है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। श्रावणी मेला की तैयारी का डीएम और एसपी ने लिया जायजा। नहर से मिला एक वृद्ध महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। एसपी ने माधोपुर थाने का किया वार्षिक निरीक्षण। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर की गई खास बैठक। सांसद के बेटा और बहू का हुआ शादी का निबंधन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे,
18: सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट खावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
18: तीसरा रूट खावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
18: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
18: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
18: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर महादेव।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
3: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
18: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
18: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
18: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
18: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
3: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
18: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
11: रियाज रेट्रो।
26: मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगुं हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। फैज अहमद फैज के लिखे सबसे मशहूर नगमों में से एक शायद। फैज साहब का जन्मदिन 13 फरवरी, वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी, जिसको तो पहली सी मोहब्बत का दिन करार दिया जाता है। और इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत के बीच में क्या, सिर्फ एक अदना सी जिंदगी और ढेर सारा इंतजार।

फैज अहमद फैज की नज़म पढ़कर जला दिया हसन कमाल का कलाम। स्ट्रेंज ना? अरे नूरजहां पक्का आएंगी, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि वो ना आए। पर जैसा कहा, थोड़ा इंतजार। फिल्म एतबार, संगीत बप्पीदा, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, आशा भोसले के साथ। यस, वो जिनका जन्मदिन 6 फरवरी, जो किसी दिन अदर वॉइसेस के किसी अगले एपिसोड में पक्का शामिल होंगे। पर फैज साहब की शायरी के साथ उनकी आवाज को भी मैंने आज के एपिसोड में जोड़ दिया, क्योंकि दोनों ही महीन हैं, मखमली हैं। जी हाँ, भूपेंद्र। रियाज रेट्रो। अक्षय करोलिया जी, तो देखिए, अगर ये किसी सुनने वाले को हिमाकत लगे तो इल्जाम अपने सर ले लेना फटाफट, क्योंकि याद तो आप ही ने दिलाया कि 6 फरवरी भूपेंद्र की सालगिरह है। अब 6 को तो हम इनर और आउटर सर्कल्स के बीच टापू खेल रहे थे ना, और हमें याद ही नहीं रहा कि मेल्टेड चॉकलेट वाली आवाज है जिनकी, उनका जन्मदिन आकर निकल गया। तो लीजिए, आज पेश है तलवार और रेशम एक साथ, फैज अहमद फैज और साथ में भूपेंद्र। यानी अगर गजलों और नज्मों में खास दिलचस्पी नहीं है आपकी, तो आज का एपिसोड शायद थोड़ा भारी लगे। मैं आपके साथ रिया, जहां आपसे बातचीत मुलाकात तो होती ही रहती है, और जब मैंने फोटो ट्वीट किया वहां फैज की किताब के कवर की और कहा पता नहीं मैं ये एपिसोड कर भी पाऊंगी या नहीं, तब कमाल की बात है कि आपने फैज की लिखी लाइन से ही जवाब दिया मुझे कन्विंस करने के लिए कि हाँ हो जाए, कर लो, तुमसे हो पाएगा। सच बताऊं तो उस ट्वीट के थ्रेड ने हौसला अफजाई की और आज मैं फैज गुथा में यहाँ आ गई। नरसिंघा ने सबसे पहले कहा यस प्लीज, बट माइंड, तेरे कॉल करार से पहले अपने कुछ और भी सहारे थे। और आस्था ने लिखा गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले।

0: फैज साहब के एन बाद गुलजार साहब, अब उन्होंने सुन लिया ना तो मारेंगे मुझे कि पूछ के किया करो ये सब काम। फैज के पास बिठाने से पहले इजाजत तो ले लो बिटिया। उनका लिखा एक अकेला इस शहर में, भूपिंदर की आवाज, जयदेव का संगीत, फिल्म घरौंदा और मेहदी हसन की आवाज में सुना आपने फैज का कलाम गुलों में रंग भरे। भूपिंदर की सालगिरह 6 फरवरी, फैज अहमद फैज की 13 फरवरी और इश्क वाले लव का दिन 14 फरवरी। वैलेंटाइंस डे जितना टिपिकल और क्लीशे है उतनी ही हटके है फैज की सोच और भूपिंदर की आवाज, पर घूम फिर के इस तरह नहीं तो उस तरह मोहब्बत पर ही आकर टिकते हैं सब।
1: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत।

0: रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
2: रियाज रेट्रो।
3: फैज को पढ़ते सुनते वक्त अक्सर वही होता है जो गालिब के साथ होता है कि ये शेर या नज़्म तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो फिर सुना सुना सा क्यों लगता है? क्योंकि एक तो हमारे सब कॉन्टिनेंट की आबो हवा में है ये शायर। कहाँ, कब, किसने कोट किया आपको याद भी ना होगा। रेडियो पर, टीवी पर, फिल्मों में, गीतों में, जैसा कि साजिद ने कहा मुझे ट्विटर पर, उनके कॉलेज के दिनों में अक्सर ये पूछा जाता था कि फैज साहब के अलावा कौन सा शायर पसंद है। और दूसरी बात, कई नस्लों को इंस्पायर किया है इन शायरों ने। फैज खुद मान चुके हैं कि वो कई बार गालिब की तरफ झुके हैं। उनके कई शेरों में गालिब की खुशबू आती है। मसलन, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चली बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। ये जो लास्ट दो लाइंस है ना, मुझे गालिब की याद आती है। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। इनफैक्ट गुलों में रंग भरे सुनते वक्त मुझे गुलजार जी का लिखा वो गाना भी याद आया, गुल मोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसम गुल को हंसाना भी हमारा काम होता। गुल, गुल मोहर, तो फिर अब चलते हैं गुलाब की तरफ। भूपिंदर की आवाज, बोल शहरयार, फिल्म का नाम अंजुमन, और इस साउंडट्रैक में मौसिकार खयाम ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जो हमारे दोस्त रवि को बिल्कुल पसंद नहीं। भूपिंदर का साथ दे रही हैं इस गीत में शबाना आजमी।

मुसलसल गजल है। हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं है यही कराम ही तो है। करते हैं जिस पे तान कोई जुर्म तो नहीं, शौके फजूल व उल्फत नाकाम ही तो है। दिल मुद्दई के हर्फ मलामत से शाद है, ऐ जाने जाँ ये हर्फ तेरा नाम ही तो है। दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, दस्ते फलक में गर्दिश तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिश तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिश अय्याम ही तो है। और आखिर तो एक रोज करेगी नजर वफा, आखिर तो एक रोज करेगी नजर वफा, वो यार खुश खिसाल सरे बाम ही तो है। भीगी है रात फैज गजल इब्तिदा करो, वक्त सरोद दर्द का हंगाम ही तो है।

0: इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो घूम ही रहे हैं हम आज, तो सोचा बांग्लादेश भी हो आए। राजे उल्फत का ये वर्जन फिरोजा बेगम की आवाज में, जो जहां तक मैं जानती हूँ बांग्लादेश की सिंगर थी। गुलाब जिस्म का यूं ही नहीं खिला होगा, ये सोच तो पहली सी मोहब्बत में आती है। वैलेंटाइंस डे की मासूमियत और एक्साइटमेंट और खुमारी का हिस्सा है, मगर राजे उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, ये थोड़ा और मच्योर ख्याल है मोहब्बत के धक्के खाने के बाद के। यानी समझ रहे हैं आप, भूपिंदर जी और फैज साहब के साथ हम मोहब्बत के सारे स्टेजेस को पार कर रहे हैं एक साथ, फ्रॉम इट्स फर्स्ट फ्लश टू इट्स लास्ट गैस्प।
1: प्रसाद क्लिनिक,
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
9: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
8: और लाइट बिल के,
9: अब 0 रुपए कैसे दूं?
8: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
9: पक्का।
10: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
0: रियाज रेट्रो। मैं रिया, और नो पन इंटेंडेड, पर शेर की सवारी है ये। पिछले 2 घंटे से अपने कंप्यूटर स्क्रीन को निहार रही हूँ और सोच रही हूँ ये कैसी जिम्मेदारी उठा ली मैंने। एक एपिसोड में क्या बताऊँ आपको फैज के बारे में, उनकी जिंदगी, उनके कलाम के बारे में, भूपेंद्र के कितने कम गीत चला पाऊंगी आफ्टर ऑल। ये क्या बीड़ा उठा लिया मैंने बिना सोचे समझे। फैज अहमद फैज के बारे में जितना पढ़ रही हूँ उतना ही बोलने का मन कम कर रहा है। वो एक ऐसी सदी में जी कर गए जब इतना कुछ हो रहा था, इतिहास अनमिट दाग छोड़ रहा था, अंग्रेज चले गए, मजहब के नाम पर एक देश पहले 2 हिस्सों में, फिर 3 हिस्सों में बट गया, पर पता है उनका दिल ना बट पाया। पाकिस्तान में पहले वो काफी सेंसर्ड रहे और इंडिया में एक्चुअली और खुलकर पब्लिश हुए शुरुआती दिनों में, बाद में तो खैर वो पाकिस्तान के स्कूल टेक्स्ट बुक्स तक में शामिल हो गए हैं। अंग्रेजों के इंपीरियलिज्म को देखकर बड़े हुए इस शायर को लेफ्टिस्ट तो होना ही था, ह्यूमनिस्ट सोशलिस्ट कहा जाता है इन्हें।
12: दस्ते सभा की एक इब्तदाई नज्म है सुबह आजादी, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार, के मिल जाएगी कहीं न कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ए गम दिल। जवान लहू की पुरसरार शाहराहों से चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े दियार हुस्न की बेसब्र ख्वाब गाहों से पुकारती रही बाहें बदन बुलाते रहे बहुत अजीज थी लेकिन रुखे सहर की लगन बहुत अजीज थी लेकिन रुखे सहर की लगन बहुत करी था हसीना ने नूर का दामन सुबुक सुबुक थी तमन्ना दबी दबी थी थकन सुना है हो भी चुका है फिराक जुल्मत व नूर सुना है हो भी चुका है विसाल मंजिल व गाम बदल चुका है बहुत पहले दर्द का दस्तूर निशात वसल हलालो अजाब हिजर आराम जिगर की आग नजर की उमंग दिल की जलन किसी पे चारा हिजरा का कुछ असर ही नहीं कहां से आई निगारे सबा किधर को गई अभी चराग सरे रह को कुछ खबर ही नहीं अभी गरानी शब में कमी नहीं आई निजात दीदा दिल की घड़ी नहीं आई चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई।

रेट्रो तो नहीं है पर पीरियड फिल्म तो है ना, नंदिता दास की मंटो, जिसमें फैज साहब के इस कलाम को संगीत दिया स्नेहा खनवलकर ने, आवाजें उस्ताद रशीद खान और साथ में मेरी दोस्त द ब्रिलियंटली टैलेंटेड विद्या शाह। कई बार यही तो होता है कि जो लोग तारीख के इतने अहम वक्त से गुजरते हैं वो इश्क मुश्क प्यार मोहब्बत से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तभी तो फैज से लेकर साहिर तक सभी ने ये कहा है किसी ना किसी तरीके से कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। शायद जब आप देश समाज अपने पराए दुनिया भर के गम तकलीफ परेशानियों को देखते हैं तो अपना छोटा सा दिल और उसके तूफान बड़े हल्के लगने लगते हैं। रियाज रेट्रो। मैं आपके साथ रिया और समाज और देश की परेशानियों से उभर कर भूपिंदर के पास वापस लौटेंगे अभी मोहब्बत को याद करने फिर से। पर उससे पहले फैज की ये शरीर सी नज़्म तो बनती है ना। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया।

0: भूपिंदर के दो बेहतरीन ड्यूएट सुने आपने फिल्म दूरियां से, जिंदगी में जब तुम्हारे गम नहीं थे, साथ उनके अनुराधा पौडवाल, संगीत जयदेव, शायरी सुदर्शन फाकिर, और उससे पहले फिल्म दहलीज से एक अधूरी सी मुलाकात, इसमें उनके साथ महेंद्र कपूर, गीतकार हसन कमाल, संगीत रवि जी।
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
0: रियाज रेट्रो। भूपिंदर की सालगिरह 6 फरवरी, फैज अहमद फैज की 13 फरवरी। मैं आपके साथ रिया, और आज के एपिसोड को मैं ना फैज स्पेशल कहूंगी और ना भूपिंदर स्पेशल, क्योंकि दोनों के साथ इंसाफ तो दूर दूर तक ना हुआ। आज तो सिर्फ उनको छूकर गुजरे हैं हम, कुछ नज़म पढ़े, कुछ कलाम सुने, कुछ गीत चला दिए बस। भूपिंदर को फिल्मों में पहला मौका दिया था मदन मोहन जी ने, एक डिनर पार्टी में उनका गाना सुनने के बाद। खयाम के साथ भी काम किया भूपिंदर ने, जयदेव जी के साथ भी, इत्तफाकन ऐसे सारे संगीतकार जो गजलें बहुत अच्छी कंपोज करते थे। और देखिए आखिर भूपिंदर जी का रुझान उसी तरफ निकला ना। बांग्लादेश की सिंगर मिताली से शादी करने के बाद वो ज्यादातर प्राइवेट गजल एल्बम्स ही रिलीज करते रहे। गुलजार जी के साथ बहुत खूबसूरत नॉन फिल्म एल्बम्स बनाए, इंक्लूडिंग वो जो शायर था। दोनों बहुत करीब भी हैं, पर्सनली दोस्त हैं। पर अभी आपको मैं क्या सुनाऊं? आप ही की फरमाइश है कई बार की, जब जब भूपिंदर गुलजार की बात उठी है, क्यों, चिट्ठी है या कविता? अभी तक तो कविता है। समझ गए, समझदार को इशारा काफी है, टीकू की बच्ची।

फिल्म किनारा संगीत और किसका हो सकता है इस हाफ स्पोकन हाफ संग हाफ रिसाइटेड मास्टरपीस में। जिस गीत को गुलजार इस मौसिकार के सबसे बेहतरीन काम में से एक मानते हैं, जी हाँ ऑफ कोर्स आरडी बर्मन। भूपिंदर के सुपरहिट गीत नहीं सुनाए मैंने आज आपको, क्योंकि वो तो यहाँ रियाज रेट्रो पर चलते ही हैं अमूमन। और जिनके लिए आज का एपिसोड ज्यादा भारी, ज्यादा पुराना, ज्यादा स्क्रैची या ज्यादा उर्दू हो गया, उनको रियली सॉरी। मेरे सेल्फ इंडल्जेंस को झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पक्का थोड़ा हल्का एपिसोड करूंगी अगली बार। आप यूं मेरे आढ़े टेढ़े रास्तों पर जब ऐसे साथ निभाते हैं, तब मेरा भी फर्ज बनता है कि गाड़ी को हाईवे की तरफ भी वापस मोड़ दूं उसके बाद, है ना। रही बात फैज अहमद फैज की, उनकी सालगिरह है सो इसलिए आज ये एपिसोड कर दिया। पर सच कहूं तो मेरा फैज का सफर अभी शुरू हुआ है। बहुत देर तक चलेगा, बहुत दूर तक चलेगा ये कारवां। आज तो बस हल्की सी पहल थी, धीरे धीरे वो भी घुल मिल जाएंगे आगे के एपिसोड्स में, पानी में गुलाल की तरह आते जाते रहेंगे अब तो वो, क्योंकि पहले भी उनको जानते थे, दिल में बहुत इज्जत थी पर दूर की पहचान थी उनसे, अब तो घर में दाखिल हो गए हैं। मैं थी आपके साथ रिया, आज तो और क्या ही बोलूं, मोहब्बत पहली हो या आखिरी, डेड ड्रीम डेड लव।

0: You were listening to Riya's Retro.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।
1: कहा आपका ये बजा ही सही के हम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई है। 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: रोती हुई आंखों में भी इंतजार होता है, रोती हुई आंखों में भी इंतजार होता है, न चाहते हुए भी किसी से प्यार होता है। क्यों देखते हैं हम बहुत सपने जिनके टूटने पर भी उनके सच होने का इंतजार।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया है हेलो माई चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी फरमाइश। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: कौन बोल रहा है?
1: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
2: मैं, आप कैसे हो?
1: जी मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए।
2: मैं भी बढ़िया हूँ। मैं एक गाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ।
1: जी सारी जी,
2: गाना रिक्वेस्ट है जीना सिर्फ मेरे लिए टाइटल सॉन्ग।
1: ओके,
2: तो मैंने पूछना था ये रिकॉर्डिंग कब होती है, ये रिकॉर्डिंग कब मैं सुन सकता?
1: ये आपका कल बजेगा?
2: कल सुन सकता हूँ, क्या टाइम?
1: आज भी बज सकता है।
2: आज 5 से 7 बजे प्रोग्राम लगता है? कितने दिन लगते हैं ये प्रोग्राम?
1: 5 से 7।
2: 5 से 7 बजे, ठीक है। एक दफा रिपीट लगा ये रिकॉर्ड भी रिपीट?
1: हाँ हाँ,
2: ठीक है। तो प्लीज मेरे वो गाना लगा लेना।
1: जी वैसे आपका नाम?
2: मेरा नाम है मोहम्मद वकार।
1: और कहाँ से?
2: क्या
1: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: गाना बोला है जीना सिर्फ मेरे लिए।
1: ठीक है, और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मेरा नाम है मोहम्मद वकार।
1: जी, और मतलब किस जगह से बोल रहे हैं आप?
2: मैं गिदर से बोल रहा हूँ, स्कॉटलैंड ग्लासगो सिटी से बोल रहा
1: हूँ। ओके,
2: तो मैं आपका प्रोग्राम पर एंजॉय कर रहा हूँ, तो प्लीज गाना लगा लेना मेरे लिए, ठीक है?
1: जी
2: ओके, नमस्ते।
1: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: आप कौन बोल रही? भारती का फोन बोल रही।
0: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
1: मनोरमा
0: जी
1: बढ़िया है, कैसी हो आप?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। नाम बता दीजिए अपना।
1: मेरा नाम है गोपाल ओझा, ग्राम ककवासा, जिला गुना से।
0: कहाँ से?
1: जिला गुना ककवासा।
0: ये कहाँ पड़ता है?
1: जी अपने गुना पड़ता है भोपाल के पास में। और आपसे पहली बार बात हो रही?
0: जी जी।
1: और
0: वैसे अपना नाम क्या?

0: नाम बताया गोपाल
1: okay.
0: जी हमारा गाना नहीं आता है, हमने कई बार फोन लगा लिया, सोमवार को लगाया था, बुधवार को लगाया, गाना नहीं आता है हमारा।
1: नहीं नहीं, जब आप इसमें हेलो मैच वैस में जब कॉल रिकॉर्ड कराते हैं तो जरूर बजता होगा।
0: पता नहीं, हमने तो सुन लिया, आता नहीं है 5 बजे से 7 बजे तक शाम के।
1: अच्छा, तो क्या ना बहुत सारे कॉल्स रहते हैं तो मतलब पहले उसे बजाया जाता है, कहीं आपका आज बजे
0: पता नहीं है। अरे जी ऐसा कर दीजिए आप, तो मतलब उस दिन कॉल लगती है तो उस दिन शाम को 5 बजे आता है कॉल, वो वाली पहला।
1: अच्छा, तो भारती जी रिकॉर्डिंग कर रही थी उस टाइम?
0: भारती जी बुधवार को थी, भारती जी जब लगाया था मैंने।
1: अच्छा, तो मतलब बज चुका होगा जब आप फरमाइश किए होंगे।
0: नहीं आया, हमारे दोस्तों को आया था, मेरा नहीं आया।
1: अच्छा,
0: कल आना होती, कल तो सुना था, कल नहीं निकला।
1: अच्छा, तो कहीं आज बजेगा, बहुत सारे कॉल्स रहते हैं तो बहुत दिक्कत होता है, एक साथ तो सब नहीं बज सकता।
0: तो इसीलिए लगाया गाने सुनने के लिए, नहीं गाने सुनने के लिए मैं सोमवार को लगा दूंगा, बुधवार को लगाया था, सोमवार को लगाया और आज शुक्रवार को लगा दिया।
1: तो मतलब दोनों दिन नहीं बजा आपका?
0: नहीं आया दोनों दिन नहीं।
1: उन्हीं से मिस्टेकिंग हुई होगी। अच्छा, फरमाइश बता दीजिए, हम प्ले कर देंगे।
0: फरमाइश वो राजा फिल्म को सुनवा दीजिए, फूल मांगू ना बाहर मांगू मैं तो सनम तेरा प्यार।
1: और गाना डेडिकेट भी है?
0: डेडिकेट है ना गाना, हमारे सुनील साहू जी है, ज्योति साहू जी है, जीते धाकड़ जी, और आपके लिए भी है डेडिकेट गाना।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं आपका,
0: कर दीजिए।
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो मैम
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: हम स्कूटर बोल रहे हैं सिकंदरपुर से।
3: जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: अच्छा है मैम, आपने सुनाइए कैसे हैं?
3: जी मेरा भी बढ़िया। अब क्या हो रहा है?
2: यही सब, दुकान अपन चलाते हैं।
3: किस चीज का दुकान है आपका?
2: छोटा मोटा किराना है।
3: चलिए बढ़िया।
2: मैम गाना सुना है हमको?
3: जी बता दीजिए।
2: मेरे साथी जीवन साथी, वही गाना सुना दीजिए।
3: किस मूवी का सॉन्ग है ये?
2: ये पुराना गाना है, मेरे साथी मेरे जीवन साथी मेरे साथ निभाना, ऐसा ही है।
3: ओके, और गाना डेडिकेट भी है?
2: जी मैम, सबसे पहले आपको और जितने रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं।
3: वालेकुम अस्सलाम। रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार भारती मैम।
1: नमस्कार,
0: कैसे हैं
1: जी? बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। कौन बोल रहा हूँ, समझ गए ना?
1: नहीं
0: जी, मैं सुधीर बोल रहा हूँ, पंजाब जिला देवघर, झारखण्ड से।
1: कहाँ से?
0: झारखण्ड से।
1: अच्छा, और वैसे अपना
0: जी आज सुना दीजिए मैम, राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गाना।
1: कोई भी
0: नहीं? कोई भी नहीं, जिसके बोल में बता रहा हूँ, उसने पहाड़ों का और साहिबा, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में।
1: और गाना किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: सबसे पहले मैं आपको, आपके रेडियो रिमझिम को, पूरे टीम को और जितने भी रेडियो रिमझिम के लिसनर हैं सबको और हमारे साथी सर को भी सुनाना चाहता हूँ। उसमें मदन कौल, पूरन कौल, किष्णु कौल, जुगल कौल, कमली कौल, राजकुमारी, रोहित कुमार सिंह, राजीव रोशन, विष्णु प्रसाद यादव, सुष्किधर प्रसाद यादव, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: ओके, वैसे क्या करते हैं आप?
0: जी मैं टीचिंग का काम करता हूँ। मैं
1: किस चीज का?
0: पढ़ाता हूँ मैं।
1: अच्छा।
0: टीचिंग का काम करता
1: हूँ। अभी जहाँ आप हैं वहीं पे?
0: जी जी। ठीक है मैम, सब गाना सुना दीजिएगा।
1: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं?
0: जी मैम।
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ओके मैम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: हाँ जी, भक्ति जी।
3: नहीं, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
2: अच्छा मनोरमा जी, हम राकेश भारती बोल रहे हैं।
3: कहाँ से?
2: बक्सर।
3: अच्छा, और अपना नाम क्या बताएं?
2: राकेश भारती।
3: ओके, अब क्या हाल चाल है आपका?
2: सब बढ़िया है, हमारा तो 14 साल हो गया ना रेडियो रिमझिम में, 14 साल हो गया सुनते हुए।
3: अच्छा जी, बढ़िया।
2: सब अच्छा पहचानते है, हमको नाम नहीं बताना पड़ता।
3: अरे मैं ना मतलब बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उतना लोगों को नहीं पहचान रही हूँ मैं।
2: हाँ, सोनी जी भी पहचान गई है, नया नया आई है वो भी पहचान गई है। भाभी जी का सोनी जी का आना ही नहीं है।
3: सोनी जी आएंगी, अभी छुट्टी पे हैं वो।
2: दिव्या जी भी थी तो भी पहचानते थे। और तो बताइए अपना।
3: सब बढ़िया।
2: चलिए, आप भी धीरे धीरे सीख जाइएगा।
3: जी जी,
2: ऐसे की व्हाट्सएप मैसेज वाला में रखे है, आप भी एक आध दिन से कर रहे हैं थोड़ा बहुत।
3: कोशिश तो
2: हाँ, नहीं कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा, तो नहीं होगा। पर सोनी जी का बच्चा वही हाल था, ठीक हो गई है।
3: तो सोनी जी बहुत दिन से रह रही है ना, तो उनको से इन सब के बारे में
2: उनको सिखाई दिव्या जी। अब यही सोनी जी सिखा रही है भारती जी को और आपको ना। हाँ, जो आएगा भाई वही ना सिखाएगा।
3: हाँ, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे ना।
2: तो आप लोग का तो नाश्ता पानी हो गया होगा?
3: जी जी, और आपका?
2: हमको भी हो गया, अभी 10 मिनट पहले अभी नाश्ता किया, फोन लगा रहे थे।
3: अच्छा,
2: फोन एक बार नहीं लगा लेकिन अभी लग गया।
3: क्या है ना, बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं तो।
2: हाँ हाँ, वही मैंने लिस्टनर को ज्यादा हो गया है ना।
3: हाँ,
2: इसीलिए तो नहीं आई ना। आज भोजपुरी एक्सप्रेस कौन चलाएगा? भारती जी गया,
3: भारती चलाएगा।
2: तो हमको गाना सुना दीजिएगा, दिल का रिश्ता का। दिल का रिश्ता का गाना है ना, जो दैया दैया दैया रे, वही।
3: ओके, और ये गाना किसी को सुनाना भी है?
2: जी हाँ, मैं हरिंदर जी है, आप है, पूरा रेडियो रिमझिम खास फैमिली है। हाँ, वही है। तो अभी जो पुराना वाला फोन रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिपीट।
3: हाँ, अभी तो वही चल रहा है।
2: तो 5 बजे बजेगा ना, रिकॉल हो जाएगा।
3: आज भी बजेगा और कॉल भी बजेगा। ओके, आना बहुत सारे कॉल्स हैं तो
2: एक दिन में तो पूरा होगा नहीं,
3: तो इसीलिए कल भी और बजेगा।
2: कॉले का है
3: नहीं, अभी तो जो हो रहा है वो पूरा कोशिश रहेगा कि और आज ही चले।
2: चलिए ठीक,
3: तो गाना प्ले करते हैं।
2: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद
3: आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रिमझिम 90.4 FM कॉल करने के लिए।

0: नमस्कार
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी आज हमको गाना सुनना है, ये दुनिया में महफिल मेरे काम के नहीं। मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरपुरा से।
1: अच्छा, क्या हाल चाल है आपका?
0: हाल चाल तो ठीक ठाक है, थोड़ा टेंशन है।
1: क्या हो गया है?
0: हो गया, इसीलिए मैं गाना सुनना चाहता हूँ, ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं।
1: अच्छा,
0: इसीलिए गाना सुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए गाना का रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके। 11:30 बजे तक तो आपका कॉल जो है नहीं लग रहा था, इतने कॉलर थे कि हमारा मोबाइल का नंबर घुस ही नहीं रहा था।
1: अब क्या करिए, मतलब कॉल अभी बात ही होता है, जैसे करते है वैसे आ जाता है।
0: तो अब सोचते हैं कि तो अभी थोड़ा ट्राई करें, तो अभी 2 बार ट्राई किए हैं, पटक लग गया।
1: चलिए लग गया ना,
0: 15 मिनट बाद लग गया है। तो मैडम यही गाना सुना दीजिएगा।
1: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: अरे जितने रेडियो सुनने वाले हैं रिमझिम के लिए खासकर, अब आते जो सुनवाएंगे सोनी जी को भी सुनवाएंगे, सोनू जी को भी सुनवाएंगे, सोनू जी कितने लोग हैं सुनने वाले, किसी को सुनाइए मैडम। और सब खैरियत है ना आपका?
1: जी जी सब बढ़िया,
0: घर में परिवार और सब ठीक है ना? चलिए ऊपर वाला का लाख लाख शुक्र है कि सब बढ़िया तो हो रहा है। तो ये सुनवा दीजिएगा मैडम, ये दुनिया है महफिल मेरे काम के नहीं गाना।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
0: जी जी मैडम,
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: जी थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन बजते है तो कहते हैं
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है।

0: हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैडम, कैसी है मैम?
2: जी बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
1: हम लोग भी ठीक है
2: जी। तब क्या हो रहा है?
1: कॉल लगा रहे हैं, इधर के बाद लगभग नहीं करेगा।
2: अच्छा जी, अब लग गया ना?
1: लग गया।
2: नाम बता दीजिए अपना।
1: सुनीला देवी।
2: कहाँ से बोल रही हैं?
1: 4910 से।
2: कहाँ से?
1: 4910 से।
2: अच्छा, तो बताइए क्या हो रहा है?
1: आपकी को तो नंबर दया रहा है, कभी से लगभग नहीं करेगा, लग गया।
2: अच्छा चलिए, लग गया, बढ़िया। तो बता दीजिए फरमाइश।
1: फरमाइश सावन आया, बादल छाए, नहीं गाना है। हमको दबा दीजिए।
2: बिल्कुल।
1: खाना उन्हें खाए कि नहीं खाए?
2: जी जी खा लिए हैं। और आप?
1: हम लोग तो खा ही लिए हैं, बैठे हैं आपको फोन के इंतजार में।
2: अच्छा जी, चलिए आपका फोन लग गया ना, और क्या चाहिए?
1: जी मैडम लग गया।
2: तब मौसम कैसा है उधर का?
1: मौसम इधर का ठीक है, बड़ा गाढ़ी पूजा हुआ है, कभी दिखता है कभी बदल जाता है, सावन का मौसम है इसलिए। चलिए ठीक है।
2: ठीक है, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
1: ब्यादिन है दीभा, मेरी लड़की है संजना।
2: अच्छा
1: ठीक है,
2: चलिए बढ़िया। तो आपका गाना प्ले करें?
1: जी सर।
2: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी नमस्ते मैडम।
2: नमस्ते।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। नमस्ते जी। बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
1: मैं अच्छा।
0: चलिए आप लग गया ना।
1: कौन बोल रहे हैं? मैं दरबू
0: जी, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
1: समाचार बताइए कैसा है?
0: सब बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
1: अच्छा है मेरा भी।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया, अच्छे की बात है। वैसे आपका नाम?
1: जी
0: आपका नाम?
1: मेरा नाम नेहा, भोरे से बोल रहे।
0: कहाँ से बोल रही हैं?
1: भोरे से।
0: भोरे?
1: जी
0: अच्छा, तब क्या हो रहा है?
1: फोन लगा रहा है, इंतजार करते करते 12 बज
0: हो गया ना, बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं तो मुश्किल हो जाता है।
1: बोलबम जाना चलेगा?
0: बिल्कुल।
1: बजा दीजिए, चल देता हूँ। अचीव कर रहा हूँ।
0: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
1: गाना सबसे पहले आप जितना रेडियो रेडियो में आप सब सुनता है, जितना सोता दोस्त सुनता है उससे।
0: ओके, वैसे खाना वाना हो गया?
1: जी मैडम जी, नाश्ता हो गया, खाना हुआ।
0: तो मौसम कैसा उधर का?
1: मौसम नहीं है, धूप है, कभी छाव है, छावा बहुत है।
0: बारिश वरिश तो नहीं हो रहा है ना?
1: नहीं, बारिश फुहारा कभी पगवाता है कभी जाता है, पूरा जम के बारिश नहीं होता।
0: अब सावन आ गया है, कहीं शायद होगा।
1: हाँ सावन होगा। तीन आने मैडम जी ज्वाइन करे, सोनी मैडम तो कभी आती है कभी नहीं आती है मैडम।
0: सोनी मैम अभी छुट्टी पे है ना, इसीलिए।
1: आप दोनों में चला रहे हैं? ठीक है, चलाइए लोग, हम लोग गाना सुनना है। देखा
0: आप लोग के दुआ प्यार से हम लोग ही भी करते हैं लोग।
1: नहीं, एक अंदर रहता है तो कल बंद हो जाता है ना, कितना कितना दिन बंद हो जाता है, तो नहीं चलता है।
0: नहीं, अब तो बंद नहीं होता है क्योंकि अब।
1: नहीं बंद हो, 1 महीना पहले 15-20 दिन बंद हो गया।
0: अच्छा जी।
1: दूसरा शो खाली चलता है,
0: अच्छा,
1: 12 बजे से शो चलता है, वही भी बंद हो गया, वो नहीं चलता है।
0: कौन सा?
1: जो 12 बजे से चलता है
0: वो भी चल रहा है अभी।
1: तो अभी तो चलता है, तो गाना हम लोग सुनते हैं 5 बजे भोर से लेकर 10 बजे रात तक मेरा चलता है, हम सुनते रहते हैं
0: अच्छा।
1: प्रोग्राम।
0: रेडियो रिन्यू कैसे सुनती हैं आप?
1: रेडियो से?
0: अच्छा, रेडियो से सुनती हैं।
1: जी
0: अच्छा, चलिए बढ़िया।
1: सारा प्रोग्राम सुनते रहती।
0: कैसा लगता है आपको?
1: अच्छा लगता है,
0: चलिए बढ़िया।
1: बहुत ही ढेर दिन से सुनते हैं।
0: फिर भी मतलब कितना दिन से?
1: पहले सुनती मैडम रही तब से सुनती।
0: अच्छा जी।
1: तो रिकॉर्डिंग नहीं उतना करते हैं, जो दिव्या मैडम आए तब से रिकॉर्डिंग करेंगे।
0: अच्छा, चलिए आप शो से जुड़ती हैं ना आप।
1: जी अब शो के बराबर जुड़ती हूँ।
0: चलिए बढ़िया, ठीक है, तो गाना प्ले करते हैं।
1: जी मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते। रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009494911। जी हाँ, 8009494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग 90.4 FM।
2: जी सर, मास्टर ग्राम धनाव से।
3: जी
2: सर, मास्टर ग्राम धनाव से।
3: ओके,
2: मनोरमा जी बोल रहे हैं।
3: जी जी,
2: और सब बताइए।
3: और सब बढ़िया, क्या हो रहा है?
2: अरे क्या होगा, हम लोग का सिलाई ना टेलर का काम है, रोशन टेलर में। आप रोज सुन नहीं करती है, मैसेज आता है।
3: जी जी,
2: और खेती बाड़ी का काम हो रहा है इधर भी। बारिश हो रहा है कि नहीं आपके तरफ?
3: बारिश तो नहीं हो रहा है,
2: धूप निकला हुआ है।
3: नहीं, सुहाना मौसम है।
2: और चलिए गाना सुना दीजिएगा। तो मूवी का नाम है आई मिलन की रात। गाने मूवी का नाम है आई मिलन की रात। गाने का बोल सावन का महीना।
3: एक बार और गाने के बोल।

0: समझ में आ गया ना?
1: जी जी, आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं
0: जी। और सुनने वाले सभी हमारे पोता है आजम अंसारी, अयान अंसारी, मुल्तान अंसारी और अलीशान अंसारी, सब हमारे घर ही के लोग हैं। और हम लोग जितने रेडियो और जितने रेडियो सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं के लिए सुनवाना चाहता हूँ। कब बजेगा मैडम?
1: नहीं आज ही बजेगा।
0: आज तो ना ही बज पे, हम तो रोज सुनते हैं ना कार्यक्रम
1: जी। तो आज ही मतलब कोशिश रहेगा कि आज ही बजे
0: जी। और सोनी जी आएंगे कि नहीं?
1: आएंगी, अभी तो छुट्टी पे है। तो
0: अभी छुट्टी पे है, भारती जी से कल एयर बस में जुड़े थे, हम
1: जब तक सोनी जी नहीं आ जाएंगे तब तक भारती जी शो करेंगे
0: जी। जी जी,
1: तो गाना प्ले करते हैं
0: जी।
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिन 90.4 FM।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: सलाम अलैकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: रेशमा बोल रहे हैं पठानपुर।
0: क्या हाल है रेशमा जी?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: जी मेरा भी बढ़िया है।
1: नाश्ता तो हो गया मैम?
0: हो गया। और आपका?
1: हमारा भी हो गया। कॉल लगा रहे थे तो लग रहे थे अब नहीं लगेगा।
0: नहीं,
1: लास्ट कॉल लग गया।
0: जी जी, लग गया ना?
1: हाँ लग गया। हम तो सोचे कि अब बात नहीं होगा।
0: नहीं, बात तो हो गया ना, देखिए।
1: हाँ बात हो गया। आप नहीं है मैम?
0: सब बढ़िया है।
1: सबको मैम
0: है? हाँ सब कोई ठीक है।
1: मैम नहीं आई है? सॉरी मैम,
0: नहीं अभी तो नहीं आई है, छुट्टी पे है।
1: हाँ ठीक है, आज गाना सुनवा दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: बहुत दर्द दर प्यारे ने हो दिलवा टोले पे जननी।
0: ओके, और किसी को सुनवाना भी है ये सॉन्ग?
1: हाँ सुन लीजिएगा, और मैम सुनेगी, भारती मैम, सोनी मैम, और जितना लोग सुनते हैं रेडियो सब कोई सुनेगा।
0: ओके, गाना प्ले करें?
1: जी मैम कर दीजिए।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी मैम नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है क्या रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: प्रणाम।
3: प्रणाम,
2: क्या हाल
3: है? जी बढ़िया बा, नाम बता दिया अपन और कहाँ से?
2: गणेश कुमार मिश्रा, दिल्ली।
3: ओके,
2: आप कौन हो?
3: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
2: अरे मनोरमा जी, आज पहली बार आपसे बात हो रही है।
3: अरे इसीलिए ना, नहीं
2: आज आपसे पहली बार बात हो रही है। और बात भी कहाँ है? और सब सुनाइए।
3: और सब बढ़िया, आप अपना बताइए।
2: सर फोन लगाते लगाते लग तो गया, वही बोला कि आज भी हाजिर पे लगाइए। दे करना भी नहीं था, आज किए तो आज मिल गए आप, नहीं करते तो आप मिलते नहीं। पूरे रिकॉर्डिंग आ चुका है
3: जी जी।
2: तो मुझे एक गाना सुना दीजिए, खेसारी लाल का है, सही और अब बोले मूवी का है। तुहरा बिना खाना पीना सब बेकार बा, जान तीनों तुहार बा। हाँ यही सुना दीजिएगा।
3: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: भारती जी को, मनोरमा मैम को, सोनी जी को और जितने हमारे नाम सुनाने वाले हैं सबको।
3: तो बताइए मौसम कैसा है उधर का?
2: बस मौसम में तो दो दिन पहले बारिश हुआ है, बहुत में है। जैसे वहाँ है वैसे ही यहाँ है, वहाँ भी तो बारिश नहीं हो रही है।
3: नहीं नहीं, लेकिन ऐसा मतलब लग रहा है जैसे कि बारिश होगा।
2: हाँ वैसे यहाँ भी कभी बादल हो जा रहा है, कभी धूप निकल जा रहा है। अब हम भी तो वहीं के है ना, राजापति स्टेशन के पास है, तो हमें भी पता है कि कैसे मौसम हो रहा है उधर। भारती जी को, सोनी जी को पता है, आपसे पहली बार हो रही है बात।
3: रेडियो रिजिम आप कितने समय से सुन रहे हैं?
2: जी हम तो 4-5 साल से सुन रहे हैं, लेकिन जुड़ते नहीं थे। जुड़ रहे हैं, ये सोनी जी आई है, जो तो जुड़ रहा हूँ 1.5 साल हो गया, 2 साल करीब हो गया। मैं जुड़ा नहीं हूँ लगातार। पहले मैं लिसनर हूँ, ऐसा कि 4 घंटे शो चलता है तो 4 घंटे इधर उधर कुछ नहीं, पूरे रेगुलर रहा हूँ।
3: चलिए
2: आपका गाँव कहाँ पड़ेगा? वही प्रॉपर गोपालगंज से। चलिए ठीक है,
3: ठीक है। तो
2: आपसे हो ही जाएगा बात, विचार पड़ेगा तो ऐसे सोनी जी से, भारती जी से तो सब बात होती है, सब जानकारी है हमारे बारे में।
3: वो क्या है रिकॉर्डिंग?
2: हाँ एक दिन आप किए हैं, उस दिन हम इंतजार किए, सुने तो हम सोचे कि मनोरमा जी कब चढ़ी है, हमारे से मिली ही नहीं है। मैं बराबर फोन करता हूँ, लेकिन आज मिली गए। चलिए बात करके बहुत अच्छा लगा
3: जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर।
1: क्या हाल चाल है सुनील जी?
0: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम।
1: अच्छा
0: जी जी जी मैम
1: जी।
0: अब मैम वहाँ का मौसम तो क्या हाल चाल है मैम?
1: मौसम सुहाना हुआ है, कभी धूप हो रहा है
0: जी जी,
1: हवा चल रहा है
0: जी जी जी मैम। बारिश नहीं है मैम?
1: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है
0: हमारे यहाँ। तो बारिश चालू मैम, हल्का फुल्का बारिश चालू, बहुत अच्छा है यहाँ का मौसम है मैम।
1: अभी भी बारिश हो रही है?
0: जी जी, अभी बारिश चालू जी जी जी मैम। आज एक फरमाइश है गाने की, बोले पार्किंग में होके आवाज और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों। ठीक है मैम, गाना भजवाइए। धन्यवाद मैम, थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494 11। जी हाँ, 80029494 11। तो चलिए बढ़ते हैं आगे

0: और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार,
1: हम गाना सुनना चाहते हैं मैडम।
2: जी गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए आप अपना।
1: धर्मा से बोल रहा हूँ, मेरा नाम श्यामदेव माझी हुआ।
2: अच्छा,
1: गाना सुना है? गाना है भोजपुरी में है मैडम।
2: बताइए।
1: मारो

0: कर थरिया धान ए सखी, मांग ले भर थरिया धान ए सखी।
1: ओके, और गाना किसी को सुनवाना भी
0: है? साथी लोग सुन रहे हैं, सबको सुनवाना है मैडम।
1: वैसे क्या हो रहा है अभी?
0: हाँ, पेशे से मैं शिक्षक हूँ, छुट्टी पर हूँ आज, और मैं आपका रिमझिम रोज सुनता हूँ, बराबर सुनता हूँ मोबाइल से।
1: अच्छा,
0: है कि थोड़ा आज सोचे थे कि आज गाना कॉल करेंगे या सुनेंगे गाना।
1: आप रेडियो रिमझिम कितने समय से सुनते हैं?
0: जब से शुरू है तब से सुनते हैं मैडम।
1: अच्छा जी, तो मतलब पूछ रहे थे कि रेडियो रिमझिम कार्यक्रम आपको कैसा लगता है?
0: बहुत अच्छा लगता है मैडम, बहुत शुरू सुनते हैं आपके रेडियो रिमझिम के मालिक हैं एक शंकर बाबू, उनका जो है भाषण ऐसी ऐसी देते हैं, सब बता रहे हैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है जी।
1: अच्छा, रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं आप?
0: जब से मैंने हुआ है, चालू हुआ, तब से मैं सुनता हूँ। मेरा घर बिटगर में हुआ, इसी पंचायत में मेरा रेडियो रिमझिम है।
1: अच्छा,
0: हमारे पंचायत में है।
1: अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रेडियो रिमझिम मतलब कैसे सुनते हैं? मोबाइल
0: से मैडम, मोबाइल से।
1: अच्छा, ऐप के माध्यम से?
0: जी जी, ऐप के माध्यम से।
1: अच्छा, चलिए बढ़िया,
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा, अब आप लोग का दुआ प्यार से लगा?
0: बिल्कुल एकदम, बिल्कुल, देखिए भगवान से दुआ करते हैं, पूरे रेडियो को रिमझिम परिवार को मैं दुआ करते हैं कि सभी लोग खुश रहें और रेडियो रिमझिम चलाते रहें, सबको मनोरंजन कराते रहें।
1: अब आप लोग का आशीर्वाद चाहिए?
0: भगवान की कृपा है सर। जी जी
1: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं?
0: जी मैडम, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम।

0: हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
1: हम खादर राजन मार्केट से बोलते हैं, रामा जी प्रसाद। आज पहले कॉल में आज वाला का नंबर पहचान में खा लिए का
0: ना ना एक पहले कॉल आ गई बा हाथ से कर
1: यार सुने बा बोल बम के हाथी ना घोड़ा पैदल सवारी हम तो है बाबा तोरे दुआरी।
0: अच्छा, और गाना खेल के सुनवावे के भी बात
1: जितना लोग सुन दो सब कुछ सुने और कौन आवाज है
0: एक बार फिर से बता दें।
1: हाथी ना घोड़ा पैदल सवारी बाबा हम चलिए तोरे दुआरी, जितना रेडियो रिमझिम सुन दो सब कोई हम रोला जितना लोग बाबा धाम जा फिर से उस नत हुई।
0: ठीक बताओ
1: हाथी जी बोलो
0: गाना प्ले करी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone din din bajti hai to kehte hain hello,
5: hello, hello.
6: Break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009394911। जी हाँ, 8009394911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: नमस्कार मैडम जी, कौन बोल रहे हैं? भारती जी बोल रही है, सोनी जी बोल रही है?
6: मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
7: अच्छा, आज मेरी पहली बार बात हो रही है मैडम जी आज।
6: जी,
7: खाना हो गया आपका?
6: और आपका?
7: मेरा भी हो गया।
6: चलिए बढ़िया, नाम बता दीजिए अपना।
7: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला, गुना, मध्य प्रदेश से।
6: ओके, तब क्या हाल चाल है आपका?
7: बस रेडियो सुन रहे हैं आपका, और क्या है।
6: चलिए बढ़िया, तो बता दीजिए फरमाइश।
7: फरमाइश है, पिक्चर का नाम है बड़े घर की बेटी और गाने के बोल है समझी तेरी गोरी चने के तेत में।
6: एक बार फिर से बताइए।
7: पिक्चर का नाम है बड़े घर की बेटी और गाने के बोल है समझी तेरी गोरी चने के तेत में।
6: ठीक है, और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
7: जी, ये सोनी जी मैम को है, भारती मैम को है, आपको है और अपने गोपाल ओझा जी है, गजराज सिंह लोधी है और जितेंद्र धाकड़ जी है।
6: तो
7: और जितने सभी रेडियो और रिमझिम सुन रहे हैं उनको सबके लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
6: ओके
7: जी
6: जी, तो आपका गाना प्ले करें।
7: कब बजेगा ये?
6: ये गाना आपका कल बजेगा।
7: ठीक है
6: जी, तो गाना प्ले करते हैं।
7: ठीक है मैडम, धन्यवाद।
6: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।
0: मधु सरिया से बोल रहे हैं, राजकुमार।
1: अच्छा,
0: सॉन्ग सुनना है
1: जी, बता दीजिए।
0: बोलबम के खेसारी लाल के आवाज में कोई भी अच्छा सॉन्ग बजा दीजिएगा।
1: अच्छा, और सुनवाना भी है किसी को?
0: रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोताओं को।
1: तब क्या हो रहा है, खाना वाना हो गया?
0: हाँ, एग्जाम तो नहीं गए, छुट्टी में है।
1: वैसे क्या करते हैं आप?
0: गाड़ी उड़ी चलाते हैं खेत पर।
1: अच्छा, और रेडियो रिमझिम कैसे सुनते हैं?
0: यही मोबाइल में।
1: इंटरनेट के माध्यम से?
0: नहीं, रेडियो हेडफोन के माध्यम।
1: अच्छा अच्छा, ये बढ़िया। और ये रेडियो रिमझिम कितने समय से सुन रहे हैं आप?
0: हम तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी नहीं सुनते हैं।
1: अच्छा, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिमझिम?
0: अच्छा लगता है, सभी कार्यक्रम अच्छा लगता है।
1: ये बढ़िया,
0: ठीक है
1: जी। रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कैलाश से धुआं धुआं है।
3: अरे का हो, काहे मन मार के बैठल बड़ू, कोनो प्रॉब्लम बा?
4: ए जी, एगो बात कही।
3: कहा?
4: बड़ा मन करता देवघर जाए के जी।
3: तब
4: देखी न बाबा, कई दिन से सपना में आओ तनी, अपना नगरी में बुलावा तनी।
3: सपना तो हम देखते, लेकिन क्या करी, पैसे नहीं खेरे।
5: ए साल रहे दा, पर साल चले जाए, ठीक बा? गाड़ियों खाली नहीं खिसा
4: तो हम अब की बार ना मानो, हम तो जेबे करब।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello. Your phone.
2: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8009294911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

हाँ भाई भैया कि तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाने कुतो मनुष्यः। इतना कुछ तिरिया छछंद सुने के बाद आजकल के कुछ पति काव कहते सुने।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान,
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।